नमस्कार। मीडिया वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 27 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम रिले करने जा रहे हैं हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। नेपाल में कल आए भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और एक दर्जन जल विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण हिमखंड फट जाने से ये आपदा आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं के 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस चुनौती के सामने नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 9779851316807 और 9779701705000। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने लापता लोगों की खोज और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पीपल्स आर्म्ड पुलिस की शिगाजे टुकड़ी के कुल 145 अधिकारियों और सैनिकों को आपातकालीन प्रतिक्रिया अभियानों में सहायता के लिए प्रभावित सीमा बंदरगाह पर भेजा गया है। नेपाल की यात्रा पर गए कोलकाता के 32 लोग अचानक आई बाढ़ में लापता हो गए हैं। वे मानसरोवर यात्रा के लिए एक ट्रैवल एजेंसी द्वारा आयोजित समूह में गए थे। इस समूह को कल नेपाल तिब्बत सीमा पार करनी थी, लेकिन अचानक आई बाढ़ से उनसे संपर्क टूट गया और अभी तक किसी का कोई पता नहीं चला है। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है, वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
1: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देशभर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। सरकार ने आगामी महीनों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। वीर चोटरानी और विलविन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ये दोनों भारतीय खिलाड़ी आज सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: इस समय आप है हमारे साथ।
4: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
5: लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

यह भूमि केवल मिट्टी का विस्तार नहीं, असंख्य बलिदानों, संस्कृतियों और सपनों का पावन आलोक है। इसकी वायु में स्वतंत्रता का स्वाभिमान है, इसकी नदियों में सभ्यता का प्रवाह है और इसकी धड़कनों में करोड़ों जनों की आशाएं स्पंदित होती है। आइए इस पुण्य धरा को श्रद्धा पूर्वक नमन करें और राष्ट्र प्रेम की उसी निर्मल भावना के साथ आज की इस भक्ति संगीत वंदना का शुभारंभ करें।

सारे गम पा जब मगरी सा मगरी सा मगरी सा सारे सा सारे सा सारे सा गम पा जब मगरी सा निजरे गम निजरे गम निजरे गम

शांत होता है तब भीतर एक ऐसा मौन जन्म लेता है जो शब्दों से नहीं अनुभूति से संवाद करता है। वही अनंत अखंड और सर्वव्यापी सत्ता समस्त सृष्टि के कणकण में स्पंदित है। वह दिखाई नहीं देती किंतु उसके बिना कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता। आइए भक्ति रचना का श्रवण करें।

सत्य किसी दिशा में नहीं, वह प्रत्येक दिशा का आधार है। जो स्वयं को पहचानने की यात्रा पर निकलता है, वह अंततः उसी परम प्रकाश का साक्षात्कार करता है, जहां भेद समाप्त हो जाते हैं और केवल शांति, करुणा तथा प्रेम शेष रह जाते हैं। आइए अपने अंतर्मन को उसी दिव्य अनुभूति के प्रति समर्पित कर अगली भक्तिमय प्रस्तुति का रसास्वादन करें।

सृष्टि का प्रत्येक स्वर, प्रत्येक श्वास और प्रत्येक स्पंदन उसी अनादि सत्ता की मौन अभिव्यक्ति है। हम उसी के हैं और उसी की ओर निरंतर अग्रसर हैं। जब अहंकार का आवरण हटता है तब आत्मा उसी असीम प्रकाश में विलीन होकर अपना वास्तविक स्वरूप पहचान लेती है। इसी आत्मिक भाव के साथ प्रस्तुत है एक और मधुर भक्ति रचना जो अंतर्मन को शांति और श्रद्धा से आलोकित कर देगी।

0: ये था भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना और लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।
1: मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका व्यक्तित्व, सोच और आचरण बहुत हद तक उसकी संगति पर निर्भर करता है। संगति का मतलब होता है हम किन लोगों के साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं और किन की बातों को रोज सुनते हैं। हमारी आदतें, सोच और व्यवहार बहुत हद तक हमारी संगति से बनते हैं। अगर हम अच्छे, सच्चे और मेहनती लोगों की संगति में रहते हैं तो हम भी धीरे धीरे अच्छे गुण सीख लेते हैं। हमें सही गलत की पहचान होने लगती है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसके उलट अगर हमारी संगति गलत लोगों से हो जाए तो हम भी गलत आदतें अपना लेते हैं, जैसे झूठ बोलना, आलस करना या बुरे कामों में पड़ जाना। जैसे सुवासित फूलों के पास रहने से वस्त्र भी सुगंधित हो जाते हैं और दुर्गंध के समीप रहने से वही वस्त्र दुर्गंधित हो उठते हैं, उसी प्रकार अच्छे या बुरे लोगों की संगति का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। आपने यह कहावत तो सुनी होगी कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इस कहावत का अर्थ है कि संगत का असर हर किसी पर कम या अधिक होता ही है। वैज्ञानिकों का भी कहना है कि बच्चों की आदतों पर उनके भाई बहनों और मित्रों के व्यवहार और तौर तरीकों का बहुत ज्यादा असर होता है। बच्चे ज्यादातर बातें अपने भाई बहनों व अपने माँ बाप को देखकर ही सीखते हैं। कदल सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। जैसे एक ही स्वाति बूंद केले के गर्भ में पड़कर कपूर बन जाती है, सीप में पड़कर मोती बन जाती है और अगर सांप के मुंह में पड़ जाए तो विष बन जाती है, ठीक उसी प्रकार इंसान की संगत का उस पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगति व्यक्ति में सद्गुणों का विकास करती है। सत्संग से विवेक, करुणा, अनुशासन और सकारात्मक सोच का जन्म होता है। महापुरुषों, विद्वानों और सदाचारी लोगों के साथ रहने से जीवन का सही मार्ग मिलता है और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बना रहता है। वहीं कुसंगति व्यक्ति को गलत आदतों, नकारात्मक विचारों और पतन की ओर ले जाती है। कई बार प्रतिभाशाली व्यक्ति भी गलत संगति के कारण अपना लक्ष्य और मूल्य खो देता है। आज के समय में संगति केवल लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि किताबें, सोशल मीडिया, मनोरंजन के साधन भी हमारी संगति का रूप हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम सोच समझकर अपनी संगति चुनें जो हमें बेहतर इंसान बनाए। मान लीजिए एक बच्चा रोज मेहनती और पढ़ाई में रुचि रखने वाले बच्चों के साथ रहता है, उन्हें देखकर वह भी समय पर होमवर्क करने लगता है और पढ़ाई में अच्छा करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वही बच्चा ऐसे बच्चों की संगति में चला जाए जो पढ़ाई से भागते हैं और शरारत करते हैं तो वह धीरे धीरे वैसा ही बनने लगता है। अर्थात जिनके पास हम रहते हैं उनका असर हम पर जरूर पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छी संगति चुननी चाहिए। संत कबीर ने कहा है, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल होए, जैसे पानी संग दूध के पानी दूध होए। संगति हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। अच्छी संगति हमें ऊंचाई पर ले जाती है जबकि बुरी संगति हमें नीचे गिरा देती है। कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य का स्वभाव और उसका जीवन उसकी संगति के अनुसार ही ढलता है। व्यक्ति जिन लोगों के साथ उठता बैठता है उनके गुण दोष अनजाने में ही उसमें समा जाते हैं। अच्छी संगति से मनुष्य में सद्गुणों का विकास होता है जबकि बुरी संगति उसके चरित्र को पतन की ओर ले जाती है। जैसी संगति होती है वैसा ही फल मिलता है। जैसे दूध में पानी मिल जाए तो पानी भी दूध जैसा बन जाता है, वैसे ही मनुष्य भी अपनी संगति के प्रभाव में आकर वैसा ही बन जाता है। अतः जीवन को सही दिशा देने के लिए सदैव उत्तम और सज्जनों की संगति करना चाहिए। कहा जा सकता है कि जीवन की दिशा तय करने में संगति का अत्यंत महत्व है। यदि हम उन्नति, शांति और सार्थक जीवन चाहते हैं तो हमें सदैव सत्संग को अपनाना चाहिए और कुसंगति से दूर रहना चाहिए। अतः हमें सोच समझकर अपनी संगति चुननी चाहिए। अच्छी संगति न केवल हमारे व्यक्तित्व को निखारती है बल्कि हमें जीवन में सही दिशा भी देती है।
0: ये था चिंतन, आलेख था दीपमाला पाठक का और वाचक थे मुकाम सिंह चौहान। लीजिए प्रस्तुत है खेती की बातें। इसमें आज जानकारी दी जा रही है वर्षा ऋतु में चारे वाली फसलों की देखभाल के बारे में। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एच एस ठाकुर।
2: किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर हरी सिंह ठाकुर कृषि महाविद्यालय इंदौर से बोल रहा हूँ। आज की जो अपना चर्चा का विषय है वो है वर्षा ऋतु में चारे वाली फसलों की देखभाल। किसान भाइयों, हमको दूध का उत्पादन यदि करना है तो हरे चारे की फसलें साल भर हमारे पास होना अति आवश्यक है, अन्यथा दूध उत्पादन प्रभावित होता है। तो ऐसी दशा में वर्षा ऋतु में कौन सी चारे की फसलें हो सकती है? तो आपने देखा होगा कि चरी में मक्का की चरी है, ज्वार की चरी है, और बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु यदि लंबा गैप जाता है, सूखा रहता है, तो फिर ऐसी दशा में हमको चारे वाली फसल को भी सिंचाई उपलब्ध कराना पड़ेगी। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं खेत में अगर आप लगातार सतत घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी फसल पानी मांग रही है, और अगर मांग रही है तो हमको उसको पानी की मात्रा उपलब्ध कराना अति आवश्यक है। अब ये है कि इस सीजन में यदि स्प्रिंकलर का उपयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि स्प्रिंकलर से कम पानी की जितना हम चाहेंगे कि इतना पानी देना है उतना ही पानी अपन दे सकते हैं, परंतु यदि अपन नालियों के माध्यम से खेत में देते हैं तो उसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है कि कितना पानी देना है। जब तक मृदा वो नहीं होती, संसप्त नहीं होती, तब तक वो पानी आगे नहीं बढ़ता है, और पानी आगे नहीं बढ़ने की दशा में पूरे खेत में हमारा पानी नहीं पहुँच पाता है। तो ये विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि हम यदि खरीफ में लंबा गैप जा रहा है बरसात का, तब हम अवश्य रूप से उसको सिंचाई उपलब्ध कराएं, अन्यथा हमारा उत्पादन प्रभावित होने वाला है। यदि चारे का उत्पादन प्रभावित हुआ तो सीधा सीधा हमारा दूध का उत्पादन प्रभावित होगा। ऐसी दशा में हमको हर तरह से ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार से चारे की फसल को कोई नुकसान ना हो, और हमारे चारा का उत्पादन जो भी जाति का हमने लगाया है, एक कोयम्बटूर CO2 CO3 CO5 तक की वैरायटियां कोयम्बटूर से निकल चुकी है। ऐसी दशा में वो जाति यदि अगर हम लगा लेते हैं तो पूरे 4-5 साल हमको फिर दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं होती। उसको काटते रहें और उसमें अपन पोषक तत्वों को मिलाते रहे तो वो बराबर हमारा जो कटिंग है वो अच्छी हमको मिलती रहेगी, और हमारे पशुओं के लिए बढ़िया पशु आहार के रूप में जो है ये हमको मिलेगा। फिर इसकी अच्छे प्रकार से कटाई करके और सूखे में इसको हरे चारे को मिला के फिर ही हम जानवरों को दें। हरे चारे की उपलब्धता बहुत है, तो ऐसा ना हो कि आप हरा ही हरा खिलाएं, अगर ऐसा हुआ तो हमारा जानवर बीमार पड़ सकता है। तो ऐसी दशा में आप इस बात को सावधानीपूर्वक देखें कि सूखा चारा और हरा चारा ये मिला के ही देना है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम 30 से 35 किलो 32 किलो के लगभग सूखा चारा रखते हैं और 6 से 8 किलो हम हरा चारा रखते हैं, तो कुट्टी में हरा चारा काट के सूखे भूसे में उसको मिला के और फिर पशुओं के सामने यदि रखेंगे तो बड़ा लाभकारी होगा। उससे दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा, क्योंकि जो हम उसको उपलब्ध करा रहे हैं वो जो है संतुलित आहार दे रहे हैं। तो ऐसी दशा में संतुलित आहार यदि हम हरे चारे को देंगे तो हरा चारा जो है पशुओं के लिए संतुलित आहार बना के देने वाला है, और यदि वो संतुलित आहार पशु प्राप्त करेगा तो दूध की उपलब्धता हमारी अच्छी होगी और पशुधन रखना हमें लाभप्रद सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसी दशा में हरा चारा उत्पादन लगातार होता रहे। आपके पास में जानवर यदि है तो हरा चारा कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। हमको एडवांस में प्लानिंग करना पड़ेगी कि हमको किस महीने ये हमारा ये जो खड़ा हरा चारा है इतने महीने चलेगा, तो अगर वो नहीं चलने वाला है तो ऐसी दशा में उसका अल्टरनेटिव ढूंढ के दूसरे खेत में हम लगा सकते हैं कि ये इतना क्षेत्र फिर हमको हरे चारा की आवश्यकता पड़ेगी तो इतना खेत हम इसको पुनः लें। ये सब पशुओं की संख्या पर निर्भर करेगा कि आपके पास कितने पशु हैं, पशु के अनुसार हमको हरे चारे की जो बोनी है वो करना पड़ती है कि हमको प्रतिदिन लगातार हरा चारा मिलता रहे, तो तो इसमें लगभग हमको थोड़ा थोड़ा गेप करके हरा चारा की बोनी करना चाहिए, लगातार एक साथ सारी कटिंग नहीं करना चाहिए। और इसी प्रकार से अगर हम उत्पादन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे दुधारू पशुओं का स्वास्थ्य और दूध दोनों अच्छा मिलने वाला है, और अगर वो अच्छे रहे, सक्षम रहे, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति हमारी सुधरेगी। धन्यवाद।
0: ये थी खेती की बातें, जिसमें आज आपने डॉक्टर हरि सिंह ठाकुर से जाना वर्षा ऋतु में चारे वाली फसलों की देखभाल के बारे में। आकाशवाणी इंदौर से लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग।

राजा जनक के यज्ञ में शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर वहां भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम का आगमन हुआ, जिन्हें देखकर उपस्थित राजाओं के समुदाय में हलचल मच गई। फिर सब कुछ देख जानते हुए भी अनजान की तरह परशुराम ने जनक जी से पूछा, ये भारी भीड़ कैसी है? सीता स्वयंवर का समाचार सुन मुनि ने जो दूसरी ओर देखा तो शिव जी के धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। ये दृश्य देख परशुराम का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। रे चढ़ जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट कर रख दूंगा। सभा में आतंक छा गया, किसी को उत्तर देते ना बना। ये देख श्रीराम ने निवेदन किया, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा।

ये था श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग। कलाकार थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी इंदौर से लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। सुबह 7:20 पर होगा संस्कृत कार्यक्रम दिव्य धारा। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर रश्मि खांडल की वार्ता संस्कृत दिवसः संस्कृत भाषायाः गौरवस्य महत्वस्य च उत्सव। सुबह 7:35 पर आप सुन सकेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल।

सुबह 8:30 बजे भोपाल से रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। बाबूलाल चंपालाल मंसारे और साथियों के गाए लोकगीत सुनवाए जाएंगे 9:00 बजे और 6:45 पर। शीला वर्मा के स्वर में सुगम संगीत प्रसारित किया जाएगा 9:15 पर और 6:30 बजे। शास्त्रीय संगीत के तहत 9:30 बजे आप सुन सकेंगे G.S. सचदेव का बांसुरी वादन, राग होगा अहिल्या बिलावल। श्रोता अपनी पसंद के गीत सुन सकेंगे मनभावन कार्यक्रम में 10:05 से और 9:30 बजे। 11:00 बजे से दिन के 3:00 बजे तक आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले किए जाने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 11:00 बजे होगा फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, 12:30 बजे संग्रहालय से 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत, फिल्म संगीत 12:00 बजे, 2:00 बजे और 2:30 पर। दिन में 1:00 बजे स्टूडियो से प्रसारित करेंगे महिला कार्यक्रम, इसमें योजना क्रम में आज जानकारी दी जाएगी दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में, साथ ही सुनवाएंगे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर दीप्ति दुबे से दीप लक्ष्मी की बातचीत, विषय होगा सर्वाइकल पेन के कारण और निवारण, रूप लावण्य के तहत दिए जाएंगे मानसून में वाटर प्रूफ मेकअप के टिप्स और फैमिली फिटनेस क्रम में बताएंगे बारिश में आंखों के संक्रमण से बचाव के उपाय। शाम की सभा 5:00 बजे युवाणी के साथ आरंभ होगी। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित करेंगे 6:00 बजे, 7:30 बजे भोपाल से रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, 8:15 पर होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया, 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे सुलभा चौरसिया सराफ का गाया राग बिहाग। ये था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, थोड़ी देर में संस्कृत में समाचार रिले करेंगे दिल्ली से।

0: नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया है। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ली गई और कई जल विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में कल सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के बाद 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से ये आपदा आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इस मुश्किल घड़ी में नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 9779851316807 और 9779709107500। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने लापता लोगों की खोज और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पीपल्स आर्म्ड पुलिस की शिकाजे टुकड़ी के कुल 145 अधिकारियों और सैनिकों को आपातकालीन प्रतिक्रिया अभियानों में सहायता के लिए प्रभावित सीमा बंदरगाह पर भेजा गया है। वहीं विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रूपये देने की पेशकश की है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
1: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू कर दी है। प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं। महाराजागंज और कुशीनगर सीमावर्ती जिलों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तैयार रहने और गंडक तथा नारायणी नदियों में जलस्तर की लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर में कल पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सरकार ने आगामी महीनों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन पर राज्य में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सौगात दी है। महिला यात्री आज से 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और शहर की बसों में एक सह यात्री के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। वीर चोटरानी और वेलवेन सेंथल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ये दोनों भारतीय खिलाड़ी आज सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज प्रदेश के 24 स्थानों पर खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम। प्रधानमंत्री खिलाड़ियों और युवाओं से करेंगे संवाद। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत और 750 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर। भारत ने राहत सामग्री और दवाओं की 10 टन खेप भेजी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री में T-72 टैंकों के ओवरहाल की 600 करोड़ रुपए की परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भिंड के मालनपुर में गोदरेज की नई विनिर्माण इकाई का किया शुभारंभ। 450 करोड़ रुपए के निवेश से 600 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। और प्रदेश में मानसून सक्रिय, दतिया में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम के साथ कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के 24 स्थानों पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:45 पर खिलाड़ियों, युवाओं और खेल प्रतिभाओं से संवाद करेंगे। भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों के शैक्षणिक संस्थानों में होने वाले इन कार्यक्रमों में सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। हरदा, बड़वानी और छतरपुर में केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रमों में विद्यार्थियों और खिलाड़ियों की सहभागिता के साथ खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। कल मध्य नेपाल में आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने करीब कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहाले गई और एक दर्जन जल विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया है कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण हिमखंड फट जाने से आपदा आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेपाली समकक्ष बालेन्द्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 9779851316807 और 9779701075000। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने भी सहायता के लिए टोल फ्री आपातकालीन नंबर 1234, हॉटलाइन 1144 और पर्यटक पुलिस नंबर 9851289445 सहित इसी तरह के नंबर जारी किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी नेपाल में हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की है। ओमकारेश्वर में एकात्म धाम स्थित पंचायतन मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सुबह संतों और विशिष्ट अतिथियों के साथ 45 पवित्र शिलाओं का पूजन कर मंदिर निर्माण का शुभारंभ करेंगे। वैदिक अनुष्ठान के बीच हो रहे इस आयोजन में संत मंडल और विभिन्न पीठों के आचार्य शामिल हैं। पंचायतन मंदिर में भगवान शिव मुख्य देवता होंगे, जबकि भगवान विष्णु, सूर्य, गणेश और भगवती शक्ति के उपदेवालय होंगे। आयोजन के माध्यम से आदि शंकराचार्य के समन्वय और एकात्मता की परंपरा को आगे बढ़ाने का देंगे। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कल राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब विधि और विधायी विभाग इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजेगा। विधानसभा ने यह विधेयक 21 जुलाई को पारित किया था। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद विधेयक को राजपत्र में अधिसूचित कर इसके प्रावधान प्रदेश में प्रभावी किए जा सकेंगे। प्रस्तावित कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन

0: संबंधों के लिए समान कानूनी व्यवस्था का प्रावधान है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जबलपुर स्थित व्हीकल फैक्ट्री में T-72 टैंकों के ओवरहाल की करीब 600 करोड़ रुपए की परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू हो रही इस परियोजना में T-72 टैंकों के रखरखाव, मरम्मत और तकनीकी उन्नयन के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। इसे सेना के बख्तर बंद बेड़े की परिचालन क्षमता मजबूत होने की उम्मीद है। भिंड जिले के मालनपुर में कल गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की चौथी नवीन एकीकृत विनिर्माण इकाई का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुभारंभ किया। करीब 450 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश से स्थापित इस इकाई से 600 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश क्षमता मूर्त रूप ले रही है।
2: बीते समय जो GIS के माध्यम से भोपाल में 30 लाख करोड़ के निवेश के MOU हुए, एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है। आमतौर पर जितने MOU होते हैं उसके 10% ही नीचे उतरते हैं, यहाँ 30% से ज्यादा निवेश धरातल पे उतरा। 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे राज्य के अंदर अलग अलग प्रकार से मूर्त रूप ले रहा है। कई तो अपने उत्पादन प्रारंभ करके अपनी पूरी क्षमता से रोजगार देते हुए देश और दुनिया के सामने अपने उत्पाद को पहुंचा रहे हैं।
0: रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए प्रदेश में खाद्य सुरक्षा प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इंदौर में गुजरात से आई करीब 350 किलोग्राम मिठाई जब्त की गई है। खाद्य सुरक्षा टीम ने एक दुकान से मिठाई के 4 नमूने लिए। वे जबलपुर के पाटन में प्रतिबंधित एनालॉग मिल्क केक के करीब 40 किलोग्राम स्टॉक को जब्त किया गया और 5 मिठाई तथा खोआ दुकानों से 7 नमूने लिए गए। सभी नमूने जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। प्रदेश में अब तक औसतन 25.5 इंच बारिश हो चुकी है। हालांकि बारिश अब भी सामान्य से 11% कम है। मौसम विभाग ने आज दतिया में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजगढ़, ग्वालियर, भिंड, रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भी भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं रीवा में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने जल भराव प्रभावित गायत्री नगर का जायजा लिया और 9 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू कराया। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले में परिवहन विभाग द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए आगरमालवा खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कल टीम ने 4 प्रतिष्ठित मिष्ठान दुकानों से नमूने लेकर जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा है। सतना जिले में जलजनित और संक्रामक रोगों के संभावित फैलाव को देखते हुए कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। झाबुआ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत राणापुर विकासखंड में आज आयोजित होने वाला जन विश्वास शिविर अब 29 अगस्त को होगा। वहीं मुरैना के बामोर में आज प्रस्तावित जन विश्वास कैंप अब 29 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। आमजन को बेहतर आधार सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंदसौर नीमच डाकघर संभाग द्वारा 29 अगस्त को सेवा केंद्रों पर विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ये था सर विलियम जोन्स महोदयन, मैक्स मूलर महोदयन, संस्कृत भाषाया महत्वम अंगीकृतवन्तौ तथैव अन्ये अपि बहवः वैदेशिका विद्वांसाः संस्कृत भाषायाः वैशिष्ट्यं प्रशंसितवन्तः। तेषु प्रमुखा सन्ति मोनियर विलियम महोदय, ऑर्थर एंथनी महोदय, मैकडोनल्ड महोदय इत्यादयः। यथा मैक्स मूलर महोदय संस्कृत भाषां सर्वासां भाषाणां जननीं स्वीकृतं, तथैव अस्माकं भाषा विज्ञान ग्रंथेषु अपि प्रतिपादितम् अस्ति यत् इंडो यूरोपीय भाषा परिवारस्य प्राचीनतमा भाषा संस्कृतम् अस्ति। संस्कृत भाषातः प्राकृत भाषा समुत्पन्ना, प्राकृतेभ्यः अपभ्रंश भाषा, ताभ्य च हिंदी, मराठी, बंगला, गुजराती, ओडिया, नेपाली, असमिया, कोंकणी इत्यादय आधुनिका भारतीय भाषा विकसिता। भाषा विज्ञानस्य अनुसारं संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, जर्मेनिक आदि भाषा एका एव आदि मूलतः समुत्पन्ना इति मन्यते। अतः मातृ, पितृ, भ्रातृ इत्यादीनां मूल शब्दानां ध्वनि साम्यं तासु द्रष्टुं शक्यते। संस्कृते मातृ शब्दस्य लैटिन भाषायां मैटर, जर्मेनिक परंपरायां मदर इति रूपं दृश्यते। तथैव पितृ फादर, भ्रात्री ब्रदर इत्यादि साम्यम अपि परिलक्ष्यते। न केवलं भाषा विज्ञाने अपितु साहित्ये अपि अस्य महत् योगदानम् अस्ति। विश्वस्य आद्य ग्रंथा वेदा अपि संस्कृत भाषायाम् एव विराजन्ते। संस्कृत साहित्यं विश्व साहित्येषु श्रेष्ठतमेषु गण्यते। महर्षि वाल्मीकि आदि काव्य रामायणम् अरचयत्, महर्षि वेदव्यास महाभारतम अलिखत, महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभुवम, रघुवंशम, मेघदूतम इत्यादीनि अमर काव्यानि विरचितवान। महाकवि कालिदासस्य अमर काव्यानां प्रेरणया कालिदासो जने जने इति गीतस्य रचना अभवत्। अधुना तत् गीतम् अहं भवद्भ्यः श्रावितुम् इच्छामि। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम्, कालिदासो जने जने कंठे।

ये था संस्कृत भाषा में कार्यक्रम दिव्य धारा। इसके तहत आज आपने सुनी डॉक्टर रश्मि खंडल की वार्ता, विषय था संस्कृत दिवसः, संस्कृत भाषायाः गौरवस्य महत्वस्य च उत्सव। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 7:35 होने को हैं। लीजिए, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सदाबहार, नगमों का कार्यक्रम सुनहरे पल।

सुनहरे पल कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरती का नमस्कार। श्रोताओं, आज 27 अगस्त है। आज हम याद कर रहे हैं उस आवाज को जिसने प्रेम को सादगी दी, दर्द को जुबान दी, तन्हाई को साथी दिया और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को गीत बना दिया। एक ऐसी आवाज जिसमें बनावट नहीं थी, प्रदर्शन नहीं था, बस एक सच्चाई थी। जी हां श्रोताओं, आज 27 अगस्त को महान गायक मुकेश की पुण्यतिथि है। सन 1976 में आज ही के दिन अमेरिका के डेट्रॉइट में उनका आकस्मिक निधन हो गया था। आज का सुनहरे पल कार्यक्रम हम उन्हीं को समर्पित कर रहे हैं।

अगर हिंदी सिनेमा में किसी अभिनेता की आवाज़ के साथ मुकेश का नाम सबसे गहराई से जुड़ा है तो वो है राज कपूर। राज कपूर की स्क्रीन पर्सनालिटी और मुकेश की आवाज़ का रिश्ता इतना गहरा था कि दर्शकों को लगता था जैसे राज कपूर खुद गा रहे हों। अभी आपने जो आवारा फिल्म का गीत सुना और अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री 420 फिल्म से, ये साझेदारी के सबसे यादगार उदाहरण हैं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मुकेश का सफर केवल राज कपूर तक सीमित नहीं था। उन्होंने शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, सलिल चौधरी, खयाम और अनेक महान संगीतकारों के साथ यादगार गीत दिए। शंकर जयकिशन के साथ उनकी जोड़ी विशेष रूप से लोकप्रिय रही। धीरे धीरे मुकेश की आवाज़ केवल राज कपूर की आवाज़ नहीं रही, वो हर उस नायक की आवाज़ बन गई जिसकी कहानी में संवेदनशीलता थी, संघर्ष था, प्रेम था या जिंदगी से कोई गहरी शिकायत थी। और इसी का एक सुंदर उदाहरण है आनंद फिल्म का गीत, लीजिए सुनिए।

0: ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-22233।
2: आकाशवाणी इंदौर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरे पल, और आज का ये जो कार्यक्रम है वो समर्पित है गायक मुकेश को। श्रोताओ, मुकेश के गीतों की एक और खासियत थी, उनमें जिंदगी का दर्शन बहुत सहज ढंग से आ जाता था। अनाड़ी फिल्म का उनका जो गीत है वो हमें याद दिलाता है कि जिंदगी केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकें, किसी के दुख में साथ खड़े हो सकें, शायद यही जिंदगी की असली खूबसूरती है। तो लीजिए सुनिए अनाड़ी फिल्म से मुकेश का गाया ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, अपने जीवन में मुकेश ने कई पुरस्कार जीते। 70 का दशक मुकेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण था और इसमें एक गीत था जिसने एक अलग ही भावभूमि रची, वो था कभी कभी फिल्म का गीत। साहिल लुधियानवी की कविता, खयाम का संगीत और मुकेश की आवाज़, तीनों का अद्भुत संगम। इस गीत के लिए मुकेश को मरणोपरांत फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला।

सन 1976 में आज ही के दिन अमेरिका में डेट्रॉइट में 53 वर्ष की कम आयु में ही मुकेश का निधन हो गया। एक कलाकार जो मंच पर लोगों के दिलों को जोड़ने गया था, वो स्वयं हमेशा के लिए इस जीवन रूपी मंच को छोड़ गया। लेकिन उनके जाने के बाद भी उनके गीत फिल्मों में आते रहे। कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं ऐसे गीत से जिसने जिंदगी और मृत्यु दोनों को एक ही सहज भाव से स्वीकार करना सिखाया। मेरा नाम जोकर, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले करेंगे समाचार प्रभात।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमरीका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता है। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ली गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से यह आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हेन्दी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलप्रासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। चीन के सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779701075000। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पेइचिंग में भारतीय दूतावास ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 00861852424905। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 50 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। अब तक विनाशकारी बाढ़ के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव

0: राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपात वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने नेपाल में भयावह बाढ़ और गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी के किनारे बसे जिलों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 1,50,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाई अलर्ट को देखते हुए एक उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है।
2: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं।
3: उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम देशभर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
4: यह संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। इसकी प्रमुख विशेषता युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद है। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा। इसमें युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह संवाद 5 विषयों पर आधारित होगा, जिनमें खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया संवाद का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रिय राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया है कि प्याज को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि उत्पादन की अनुकूल संभावना को देखते हुए सरकार ने 2026-27 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कोष बफर के लिए रबी प्याज की 2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीद प्रक्रिया 15 मई से शुरू हुई और बफर के लिए लगभग 1,21,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस नासिक से रवाना हो चुकी है। आनंद और सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 18 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े उपाय करने पर सहमति जताई है। एक रिपोर्ट।
6: अदालत की मंजूरी मिलने पर यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों की ओर से दायर मुकदमों को रोक देगा। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उपयोगी अनुभव प्रदान करना कंपनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटा ने प्रतिद्वंदी टिकटॉक और यूट्यूब से भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी से जुड़े एक अदालती मामले का निपटारा करेगा, जो 2023 में मेटा पर मुकदमा दर्ज करने वाले 29 राज्यों में शामिल थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म की लत लगाने वाले फीचर्स जानबूझकर डिजाइन किए और इसके बारे में लोगों से जानकारी छिपाई, जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के विकार पैदा हुए। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा ने माता पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्रित करके संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में कम स्कोर पर ऑल आउट करके और फॉलो ऑन देकर दूसरे और अंतिम टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कल चौथे दिन खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बनाए थे। श्रीलंका के पासेंदु सूर्या बंदारा ने 92 रन बनाए। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
7: धन्यवाद प्रियंका। नेपाल में जल प्रलय से मची तबाही को आज जनसत्ता और हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नेपाल में केदारनाथ जैसी त्रासदी, ग्लेशियर से 2000 फीट का टुकड़ा गिरने से झील बनी टूटते ही सैलाब। अमर उजाला की सुर्खी है, दो नए सैन्य संपर्क बनाएंगे भारत और चीन। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की भारत यात्रा से पहले विशेष प्रतिनिधियों के बीच दो हॉटलाइन पर बनी सहमति, 8 बिंदुओं से सुलझाएंगे सीमा विवाद। दहेज मामलों में अब तारीख पर तारीख नहीं। नवभारत टाइम्स ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज के मामले प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। सरकार की सख्ती के बाद गिरने लगे चीनी के भाव। दैनिक जागरण ने लिखा है, सप्ताह भर में चीनी के मूल्य में 12 से 15 रुपए की कमी, कुछ दिनों में और गिरावट का अनुमान। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच सूची में सबसे ज्यादा 19 स्टार्टअप के साथ भारत शीर्ष पर। स्वदेशी पावर चिप से लेकर सीधे कैंसर सेल्स तक दवा पहुंचाने के इनोवेशन कर रही ये कंपनियां। राजस्थान पत्रिका ने ध्वनि प्रदूषण शीर्षक से लिखा है, ट्रैफिक की कर्कश आवाज तले दबी पक्षियों की मीठी चहचाहट, इंसानों को अब पूरा नहीं मिल पा रहा तनाव मिटाने वाला नेचुरल टॉनिक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमरीका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। Massive flash flood claims nearly 160 lives in Nepal, over 750 people including 133 Indians missing. High alert issued in Bihar and Uttar Pradesh following Nepal flood. India sends first tranche of relief materials to Nepal. Prime Minister Narendra Modi to address Khelo India Dialogue today through video conferencing. Centre begins targeted release of onions from buffer stocks to ensure adequate availability and check seasonal price rise. US holds all

0: आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूरवीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारतीय स्वाधीनता संघर्ष की कहानी केवल बड़े बड़े आंदोलनों की कहानी नहीं है, ये उन अनगिनत कदमों की भी कहानी है जो गांव की पगडंडियों से उठे, जिन्होंने अत्याचार के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। अंग्रेजी सत्ता की आंखों में आंखें डाल वो चलते रहे, आगे बढ़ते रहे और अपने प्राण न्योछावर कर दिए, क्योंकि उनका एकमात्र स्वप्न था स्वाधीन भारत। एक ऐसे ही महान देशभक्त थे गुलाब सिंह लोधी। वो जानते थे कि अंग्रेजी सत्ता के सामने खड़ा होना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी जाना था कि डर कर जीने से बेहतर है देश के लिए निर्भय होकर मर जाना। उनका जीवन असाधारण साहस का प्रतीक है जो बताता है कि स्वाधीनता की मशाल यूं ही नहीं जली। ये मशाल एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंची, किसी ने लोगों को जगाया, किसी ने अपने कदमों से रास्ता बनाया और किसी ने अपने रक्त से उसकी लौ को जलाए रखा। वीर गुलाब सिंह लोधी का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के चंडिका खेड़ा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता ठाकुर राम रतन सिंह लोधी एक किसान थे। वो धर्मनिष्ठ तथा अत्यंत स्वाभिमानी थे तथा कड़ी मेहनत से अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। उन्होंने अपने पुत्र के भीतर निडरता, सत्यनिष्ठा और राष्ट्र प्रेम के संस्कार डाले। जिस उन्नाव की धरती में उनकी परवरिश हुई वो भूमि बैसवाड़ा की गौरवशाली इतिहास और 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अमर नायक राजा राव रामबख्श सिंह की शौर्य गाथा से स्पंदित रहती थी। ऐसे वातावरण में पलने के कारण बालक गुलाब सिंह लोधी के मन में देश प्रेम के भाव प्रस्फुटित हो चुके थे।

औपनिवेशिक भारत के अभावग्रस्त ग्रामीण परिवेश में गुलाब सिंह लोधी का बचपन बीत रहा था। उस दौर के ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाओं का घोर अभाव था। ब्रिटिश राज की नीतियां ग्रामीण शिक्षा के प्रति पूरी तरह उदासीन थीं। गुलाब सिंह लोधी ने अपने गांव के निकट स्थित प्राथमिक विद्यालय में अपनी आरंभिक शिक्षा ग्रहण की। हिंदी भाषा और स्थानीय बोलियों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था उन्होंने, लेकिन वो औपचारिक उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। हालांकि औपचारिक डिग्री न होने के बावजूद उनके भीतर गजब की बौद्धिक तीक्ष्णता और सामाजिक राजनैतिक समझ थी। अंग्रेजों के अत्याचार और किसानों पर मंडराते आर्थिक संकट को वो बहुत गहराई से देख और समझ रहे थे। इसके साथ ही तत्कालीन समाचार पत्र पत्रिकाओं और लोक साहित्य के माध्यम से देश की राजनैतिक स्थिति और ब्रिटिश नीतियों के दुष्प्रभावों पर भी उनकी दृष्टि थी। समय आगे बढ़ा और गुलाब सिंह लोधी पिता के साथ खेत में काम करने लगे। खेती किसानी के दौरान उन्होंने बहुत करीब से देखा कि किस तरह ब्रिटिश हुकूमत के मातहत जमींदार और लगान वसूल करने वाले कारिंदे निर्धन किसानों का निर्दयतापूर्वक शोषण किया करते थे। इस प्रत्यक्ष अनुभव ने उनके भीतर ब्रिटिश राज के प्रति तीव्र असंतोष और विद्रोह की भावना को जन्म दिया। 1920 का दशक भारत के स्वाधीनता इतिहास में अत्यंत उथल पुथल भरा दौर था। एक तरफ महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन देशव्यापी लहर पैदा कर रहा था, तो दूसरी तरफ क्रांतिकारी धारा के युवा अपने रक्त से आजादी की इबारत लिख रहे थे। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट हुए ऐतिहासिक काकोरी कांड ने देश भर के साथ साथ पूरे अवध क्षेत्र के युवाओं में देशभक्ति की भावना जगा दी थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद और ठाकुर रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारियों की चर्चा देश भर में थी। वीर गुलाब सिंह लोधी के मन मस्तिष्क पर भी इस घटना ने अमिट छाप छोड़ी। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव गांव गांव तक पहुंच रहा था। लोग विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर रहे थे। चरखा और खादी स्वावलंबन का प्रतीक बन चुका था। वीर गुलाब सिंह लोधी समझ चुके थे कि इसी मार्ग पर चलते हुए गरीबों और

इसी बीच साल आया सन 1935। भारत का स्वाधीनता संघर्ष लगातार जारी था और ब्रिटिश हुकूमत ने जन आंदोलनों को दबाने के लिए कठोर नियम लागू कर रखे थे। उस समय तक गुलाम भारत के मन में अपने राष्ट्रध्वज की आकांक्षा आकार ले चुकी थी। ब्रिटिश राज के विरोध स्वरूप झंडा सत्याग्रह शुरू हो चुका था और अलग अलग अवसरों पर लोग राष्ट्रध्वज फहराकर ब्रिटिश प्रशासन का विरोध कर रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत ने सार्वजनिक स्थानों पर भारतीय झंडे को फहराने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी थी। झंडा फहराना राजद्रोह माना जाता था और ऐसा करने वालों को असहनीय यातनाएं और सजा दी जाती थी। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने लखनऊ के मध्य स्थित अमीनाबाद पार्क में झंडा फहराकर झंडा सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। 23 अगस्त 1935 का दिन तय हुआ। अंग्रेज सरकार को पहले ही सूचना मिल चुकी थी कि क्रांतिकारी अमीनाबाद पार्क में झंडा फहराने का प्रयास करेंगे, इसलिए सैकड़ों सशस्त्र पुलिस के सिपाही, पुलिस अधिकारी और घुड़सवार दस्तों ने पूरे पार्क को चारों ओर से घेर लिया। पार्क के सभी प्रवेश द्वार सील कर दिए गए। किसी भी नागरिक को पार्क के भीतर तो क्या, आसपास भी फटकने की इजाजत नहीं थी। पार्क के बाहर भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा था, लेकिन पुलिस के सख्त पहरे के कारण कोई भी भीतर नहीं जा पा रहा था। जब पार्क के बाहर जमा सत्याग्रही पुलिस के कड़े पहरे को देखकर असहाय महसूस कर रहे थे, तब वीर गुलाब सिंह लोधी ने हार नहीं मानी। वो पुलिस की नजरों से बचते हुए चुपचाप झाड़ियों और पेड़ों का सहारा लेते हुए आगे बढ़ने लगे। इस तरह पुलिस को चकमा देते हुए वो पार्क के भीतर दाखिल होने में सफल हो गए। पार्क के बीचों बीच एक विशाल और घना पेड़ था। वीर गुलाब सिंह लोधी बिजली की गति से उस पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने झंडे को बड़े जतन से छुपा रखा था। उनके पास बैलों को हांकने वाला एक डंडा भी था, जिसे पैना कहा जाता है। पुलिस बाहर भीड़ को रोकने में व्यस्त थी, जबकि गुलाब सिंह लोधी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर पहुंच चुके थे। पेड़ के शीर्ष पर पहुंचकर उन्होंने झंडा निकाला और पेड़ की शाखा पर झंडा फहरा दिया।

हवा में लहराते झंडे को देखकर उन्होंने जोर से नारा लगाया, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, वंदे मातरम। पार्क के बाहर खड़े सत्याग्रहियों ने जब उनकी आवाज सुनी और हवा में लहराता झंडा देखा तो गगनभेदी जयकारों से आसमान गूंज उठा। ब्रिटिश अधिकारी बौखला गए, उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया। अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। वीर गुलाब सिंह लोधी की बांह, सीने और पेट में कई गोलियां लगी। वो झंडे को संभाले हुए पेड़ पर खड़े थे और अंततः मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। 23 अगस्त सन 1935 को मातृभूमि के लिए संघर्ष करते हुए भारत माता की गोद में ही वो बलिदान हो गए। आज वो पेड़ सत्याग्रह वृक्ष के नाम से जाना जाता है और अमीनाबाद पार्क का नाम झंडे वाला पार्क हो गया है, जो आज भी वीर गुलाब सिंह लोधी के बलिदान की गाथा सुनाता है। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं, वक्त है लोक संगीत का। आज हम आपको सुनवा रहे हैं बाबूलाल चंपालाल मंसारे और साथियों के गाए कुछ निमाड़ी लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी इंदौर से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत। लीजिए बाबूलाल चंपालाल मंसारी और साथियों के स्वर में सुनिए एक और निमाड़ी लोकगीत।

0: ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: बाबूलाल चंपालाल अंसारी और साथियों के स्वर में सुनिए ये एक और निमाड़ी लोकगीत।
3: बस मां

0: लोक संगीत के तहत अभी आपने सुने बाबूलाल चंपालाल मंसारे और साथियों के गाए कुछ निमाणी लोकगीत। आकाशवाणी इंदौर पर अब वक्त है सुगम संगीत का, पर पहले सुनिए ये संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: सुगम संगीत के तहत आज हम आपको

सुनवा रहे हैं शीला वर्मा के गाए कुछ गीत। सबसे पहले सुनिए, जहां कदर चुगताई की ये रचना।

अभी आप सुगम संगीत सुन रहे थे शीला वर्मा के स्वर में। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, वक्त है शास्त्रीय संगीत का। आज हम आपको सुनवा रहे हैं जीएस सचदेव का बांसुरी पर बजाया राग अहिल्या बिलावल, तबले पर संगत है श्याम काने की।

0: शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आपने सुना जीएस सचदेव का बांसुरी पर बजाया राग अहिल्या बिलावल, तबले पर संगत थी श्याम काने की। लीजिए अब भोपाल से हम रिले कर रहे हैं जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है डिंडौरी जिले की चिट्ठी, आलेख लक्ष्मी नारायण अवधिया, वाचन स्वर दीपा सिंह। डिंडौरी जिले में इस समय रक्षाबंधन पर्व को लेकर बाजारों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कल रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। पर्व के पहले जिले के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। जगह जगह राखी और रुमाल की दुकानें सजी हुई हैं, जहां बड़ी संख्या में बहनें राखियों की खरीदारी कर रही हैं। इसके साथ ही कपड़े और मिठाई की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। रक्षाबंधन के अगले दिन कजरिया पर्व भी मनाया जाएगा। घरों में कजरिया बोकर उनकी सेवा की जा रही है। वहीं ईद मिलादुन्नबी को लेकर भी जिला मुख्यालय में उत्साह का माहौल रहा। नगर की सड़कों को सजाया गया, मुस्लिम धर्मावलंबियों ने मुख्य मार्ग पर जुलूस निकाला। इसी तरह जिले में अलग अलग पर्वों को लेकर लोगों में उत्साह और उमंग का माहौल बना हुआ है। जिले में इस साल बारिश अपेक्षाकृत कम हुई है। जून से शुरू होने वाली बारिश देर से शुरू हुई और जुलाई तक पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण फसलों की बुआई प्रभावित हुई। धान और मक्का की फसल की बुआई काफी देर से हुई। किसानों का मानना है कि इस बार फसल कम हो सकती है, क्योंकि समय पर बारिश नहीं होने के बुआई में देरी हुई है और देर से बुआई होने पर उपज कम होने की आशंका रहती है। हालांकि अगस्त माह में करीब 15 दिन लगातार हुई बारिश से किसानों को कुछ राहत मिली है। अगस्त में हुई बारिश के कारण जिले की नदियां भी उफान पर रहीं और नर्मदा सहित अन्य नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जिले के विकास से जुड़े कार्यों की समीक्षा के लिए सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और मूल्यांकन समिति यानी दिशा की बैठक डिंडौरी में आयोजित की गई। बैठक में राघोपुर क्षेत्र की योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन पर विशेष रूप से चर्चा की गई। नर्मदा नदी को निर्मल और अविरल बनाए रखने के लिए भी जिले में जन भागीदारी से कार्य करने पर जोर दिया जा रहा है। कलेक्टर अंजू पोनभदौरिया ने नर्मदा तटों पर स्वच्छता श्रमदान करने का आह्वान किया है। इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण, छोटी जल संरचनाओं के पुनर्जीवन, बोरी बंधान और सोकपेट निर्माण जैसे कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जिले के सभी 7 विकासखंडों में पोषण आहार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए साझा चूल्हा समूहों के माध्यम से टेक होम राशन तैयार और वितरित किया जा रहा है। जिले में कुल 905 साझा चूल्हा समूहों के माध्यम से टेक होम राशन तैयार किया जा रहा है। इनमें से 661 समूहों ने इसका वितरण भी शुरू कर दिया है। इस व्यवस्था से लगभग 35,000 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें 6 माह से 3 साल तक के बच्चे और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। स्थानीय स्तर पर तैयार किए जा रहे इस पोषण युक्त टेक होम राशन में निर्धारित रेसिपी के अनुसार गेहूं और चावल के साथ दलिया, चना दाल, तिल और सोया बड़ी जैसी पोषण युक्त सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। डिंडौरी जिले में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का भी प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत कृषि, मिलेट उत्पादन, प्राकृतिक और जैविक खेती, कृषि मशीनीकरण, पशुपालन, सिंचाई और जल संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों में विभागीय योजनाओं का समन्वित रूप से संचालन किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप डिंडौरी जिले देश के 100 चयनित जिलों में जुलाई माह के मध्य प्रथम रैंक हासिल की है। ये उपलब्धि जिले में 11 विभागों द्वारा संचालित 36 योजनाओं के बेहतर समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है। इसी क्रम में डिंडौरी जिले में जन विश्वास अभियान के तहत भी ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाए जा रहे हैं। प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग गाँव में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में ग्रामीणजनों की समस्याओं को सुना जा रहा है और उनके त्वरित निराकरण का प्रयास भी किया जा रहा है। विभिन्न विभागों द्वारा भी अपने अपने शिविर लगाकर ग्रामीणों को शासन की योजनाओं सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं के समाधान के लिए सुविधा मिल रही है। कुल मिलाकर डिंडौरी जिले में इस समय एक ओर जहां रक्षाबंधन, कजलिया और ईद मिलादुन्नबी जैसे पर्वों को लेकर उत्साह है, वहीं दूसरी ओर बारिश, खेती, जल संरक्षण, पोषण, ग्रामीण विकास से जुड़े कार्य भी लगातार जारी है। कम बारिश के बीच किसानों को अगस्त की वर्षा से कुछ राहत मिली है, जबकि प्रशासन ने नदी नालों के जलस्तर को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे डिंडौरी जिले की चिट्ठी। आलेख था लक्ष्मी नारायण अवधिया का, वाचन स्वर था दीपा सिंह का। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा।
1: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आज सुबह 10:32 से 11:02 के बीच प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है सर्दी, खांसी, वायरल बुखार और जोड़ों का दर्द तथा बारिश के दिनों में होने वाली बीमारियां और उनका उपचार। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासा और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. द्विवेदी से पूछ सकते हैं। आप हमारा यह कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं और इसी के साथ इसे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो फोन करना न भूलिएगा आज सुबह 10:32 से 11:02 के बीच। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है और अब प्रस्तुत है श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

मन भावन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आरती जादौन का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सावन के आते ही, बल्कि यूं कहें कि बारिश के शुरू होते ही, धरती एक हरी चादर ओढ़ लेती है। चारों तरफ हरियाली होती है, प्राकृतिक सौंदर्य बहुत बढ़ जाता है, जो हमारे मन को भी सुहाना लगता है। हमारे खेतों के लिए जो बहुत कारगर होता है, ये अमृत बूंदें होती हैं जो कि धरती में फसलें पैदा करती हैं और जो हमें अन्न देती हैं। इसी के साथ साथ श्रावण मास के आते ही शुरुआत हो जाती है त्योहारों की। कल रक्षाबंधन का त्योहार है और आज हर जगह, हर घर में उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो जब ऐसा मौसम हो, भीगा भीगा मौसम हो, खुशियों का, त्योहारों का मौसम हो, तो फिर मन जो है, मन का मयूरा नाचता है, पंछी बनकर के इधर उधर घूमता फिरता है। शुरुआत हम कर रहे हैं चोरी चोरी फिल्म के गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है, और इस गीत को सुनना चाहते हैं पीपलिया पाला से समंदर सिंह भंडारी, कविता भंडारी, सविता, रानू, माधुरी, जया, संतोष, अश्विन, आर्यन और गौरव भंडारी, प्रमिला गंजालोर जिला रतलाम मध्य प्रदेश से, बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा, सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, शादाब खत्री और रमेश गौड़, मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, साहिल, मोटका माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस पटेल, दुर्गा चौक जूनापानी सनावद मध्य प्रदेश से कालू सिंह बडोले, सीताराम, हीरालाल, तेर सिंह डावर, साहिल, हरिओम, विशाल, सुमन, रमा, कंचन और भावना। आप सभी की पसंद पर सुनवा रहे हैं चोरी चोरी फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अगला गीत है फिल्म संगम से। इसे गाया है मुकेश ने। हसर जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज गायक मुकेश की पुण्यतिथि है और हमारे ये जो श्रोता हैं वो ये गीत समर्पित कर रहे हैं मुकेश के लिए। ये श्रोता हैं अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा, हदिया, अस्मा, सालिया, शोएब, मुज्ताबा खान, राउफ, शाहिद, गांधीबाग अकोला से रमेश और वैशाली कटनकर, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मिन और प्रयागराज भट्ट, बीकन गांव से संतोष सातले, रोहित, सारिका, शुभम, शैलेंद्र, कंचन और चंदन सातले, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश पाटिल, राजदीप, राशि, शीतल, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सद्दीकी, नाजमा, रियाज, रिफाकत, रानी, तबसुम, रुखसार और मोहम्मद आसिफ, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले, कुमारखाड़ी इंदौर से उमेश कश्यप, बल्लू, हेमलता और उर्मिला। आप सभी की पसंद पर पेश है संगम फिल्म का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: आकाशवाणी इंदौर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन। लीजिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं मन्ना डे की आवाज में चित्रलेखा फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, धुन बनाई है रोशन ने और इसको सुनवाने के लिए अनुरोध करने वाले श्रोता हैं रामनगर रोड शांतिनगर इंदौर से देविका चौधरी, कविता संजय वाणी और मनीष वाणी, शाजापुर से एमएम राजावत, राज, मधु, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत और ऋषभ राजावत, मक्सी से दयाराम जाटव, चैन सिंह आरोल, नानूराम कंसोटिया, नंदकिशोर और दीपक कंसोटिया, बिरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री वैष्णवी और चंचल ढोमणे, अर्जुन गवनेकर, धीरज सवासेरे, जिला कोल्हापुर से तुषार कुरने, प्रसिक कांबले, एकता कांबले, मेघना कुरने, उत्कर्षा कांबले, अरुण यलगुड़कर, कोल्हापुर से ही अतुल गौतमी, अरुण काले, एडी कांबले, इंदौर से प्रेमेंद्र कुशवाहा, कैलाश रमेश, कामिनी चौहान, मंजू चौहान, रामकुमार यादव और उत्तम श्रीवास्तव, बोरखेड़ा पीतरामल, जिला उज्जैन से विनोद मूणत, दीपक मयंक, दीक्षा कुशमूणत, नेहा जैन, चेतन नाहटा और दिलीप सिंह पवार। आपकी पसंद पर पेश है चित्रलेखा फिल्म का एक गीत।

लीजिए अब सुनिए अगला गीत फिल्म ममता से। इसे गाया है लता मंगेशकर ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, रोशन का संगीत है और इस गीत को सुनवाने के लिए अनुरोध करने वाले श्रोता हैं कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तान्या। खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर। ग्राम बगबुडवा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम। नंदानगर सुलगांव से नंदराम मंशारे, हरी, रिंकी, रेखा, रीना, वर्षा, राजकुमार और समस्त मंशारे परिवार। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग और मीका बिरक। इंदौर से बी आर नामदेव, राजश्री, रौनक, दिव्यांशी, रोशनी, धीरज, स्वाति, टोनी और निधि।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कम्प्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
3: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
2: क्या, कैसे?
3: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
2: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
3: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
4: लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी के स्वरों में। फिल्म का नाम है ये रात फिर न आएगी। SH बिहारी के बोल हैं, संगीत है ओपी नैयर का और इसके लिए अनुरोध करने वाले श्रोता हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवांडकर, सरिता सिद्धांत, प्रिंस एकांश गवांडकर, बहादुरा नागपुर से शैलेश वैशाली, श्वेता सुमित और ध्वनि गवांडकर। इंदौर से ही अनिल कवचाले, सबीहा फलक, सुषमा, पूजा नैनावा, सीमा, सबीहा, श्वेता सोनी, राखी और नेहा। ग्राम लोहारी जिला खंडवा से राजेश, राहुल, विशाल, शीला, गायत्री, धनजय। खुर्दी रोड मानपुर से विजय, रानी, महिमा, नीतू वैद। पालदानाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफी मंसूरी। दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन येले और नवदीप येले। शेरीवडने रकोला से अरुणा दामोदर। आप सभी की पसंद पर पेश है ये गीत।

लीजिए श्रोताओं, अगला गीत सुनिए अदालत फिल्म से। आवाज एक बार फिर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की है। गुलशन बावरा के बोल हैं और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत को सुनवाने के लिए अनुरोध करने वाले श्रोता हैं छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली और शमीम बानो, कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज, उबैद, रजिया, जुनेद, अलीना, आयत, मुआज मंसूरी, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी, राजपुर से घीसू दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे, वारणा शाहपुर कोल्हापुर से विजय चव्हाण, तेजस्विनी, अंकिता, अनिकेत, गुंडिया, माई, करिश्मा चव्हाण और शौर्य कांबले, कल्याण से सूरज सुरवे और नमिता प्रकाश सुरवे, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा, सरगुजा मैनपाट से सोनिया, सोनम, रेशमा और आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन, सरफुद्दीन, कुमारी वली और कुमारी डब्ल्यू डोम, मथुरा से वसीम, अकरम और उल्ला। आप सभी की पसंद पर पेश है ये गीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: आरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी इंदौर से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन। अगला गीत हमने लिया है फिल्म पाकीज़ा से। इसे गाया है लता मंगेशकर ने, कमाल अमरोही की बोल हैं, संगीत है गुलाम मोहम्मद का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं तालुका वसमत, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से रामचंद इंगोले, सिद्धांत टिक्कू, रमा, सुरेंद्र, मयूरी, सुरभि, मंजूषा, गौतम इंगोले। यहीं से पार्वती, सखाराम, दीपाली, राजू, रोहित, सोनू, मोनू, जुमरी तलैया से देवी।

से सरिता रायकवार, अग्रता कृष्णवी, नितिन महेश, अहिल्याबाई रायकवार, आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं पाकिजा फिल्म का एक गीत।

अगला गीत सुनिए अभिमान फिल्म से। इसे गाया है लता मंगेशकर ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, एसडी बर्मन का संगीत है और गीत को सुनना चाहते हैं रिंगणी छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा वर्मा, वंदना नगर इंदौर से मालती स्वाति प्रयाग चौधरी, भाटापारा दतरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार दीपक और जाविंद्र कुमार वर्मा, खंडवा रोड सनावत से अबरार इमरान इरफान वसीम सोनू सईदा आयशा सुल्ताना, मालीपुरा बिजलपुर से मोहनलाल चौहान ललिता प्रियंका परमार पंकज सोनू नितिन राहुल गुंजन मुस्कान चौहान अदव्या अंकित सलोनी लड्डू कान्हा ऋषु चौहान और हेमंत, देवास से अनंत चिखले पंकज राठौर विनायक राठौर मोहन विनोद अशोक परिहार रणछोड़ कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव। आप सभी की पसंद पर यह है अभिमान फिल्म का गीत।

हमारे कुछ और श्रोता हैं जो ये गीत सुनना चाहते थे, उनके नाम भी हम आपको बता दें। ये हैं गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से रेखा, संतोष, शोभा, भूपेंद्र, बबीता, सुरेंद्र, पूजा, विकी, रघुवंशी। घंटाघर चौक खंडवा से संजय, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मिति पंचोलिया। पुणे से प्रियंका, आर्या, पंकज वाडोदे। जरूर वरूर से बाबा साहेब वाडोदे, मीनाक्षी चरपे और रजनी कनीरे। कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी, प्रांजल राय और शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश, प्रीति और नवनीत राय। तो श्रोताओं, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। इजाजत दीजिए आरती को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
2: कलाई पर बंधा वो धागा महज रेशम का तार नहीं, वो बहन की हर सांस से निकली दुआओं का संसार है। भाई का वो चुपचाप मुस्कुरा देना और कहना तू फिक्र मत कर, उस एक लफ्ज में पूरी दुनिया का प्यार है। दूरियां चाहे कितनी भी हों पर ये बंधन कभी कमजोर नहीं होता। जहां भाई बहन का एहसास बस जाए वहाँ कोई अकेला नहीं होता। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं पंक्तियों के साथ सभी श्रोताओं को सरिता का प्यार भरा नमस्कार। आज हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम है आज हमारा फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे। तो सभी श्रोता तैयार होंगे फोन करने के लिए, हमसे बात करने के लिए। और आज हमने विषय लिया है पवित्र भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन। हम इसी पावन त्यौहार पर आज बात करेंगे। राखी, रेशम और रक्षाबंधन, इसी से जुड़ी कई बातें हम करेंगे आपसे, आपके भाई बहन के प्यार को लेकर, रिश्ते को लेकर। अगर आपकी बहन दूर है तो वो आपको राखी कैसे भेजती है और आपको कैसे क्या महसूस होता है जब वो राखी भेजती है, फिर आप अपना प्यार उसे कैसे दिखाते हैं। आइए श्रोताओं, हम सब मिलकर आज इस पावन त्यौहार को मनाएं।
3: हेलो
2: हेलो,
3: हाँ नमस्कार दीदी।
2: नमस्कार
3: जी, मैं ग्रामबा पोस्ट गोना कुसमाड़ थाना सोजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका अपना रेडियो मित्र दीपक कुमार नामदेव बात कर रहे हैं।
2: अच्छा दीपक जी, तो विषय हमने आपको बता दिया है, तो आज रक्षाबंधन के त्योहार के लिए भाई बहन के इस पवित्र रक्षाबंधन पर आप क्या बोलना चाहेंगे?
3: जी दीदी, भाई बहन का एक अटूट संबंध होता है, यह प्रेम निष्ठा के लिए मनाया जाता है। भाई बहन एक सिक्के के दो पहलू माने गए हैं
2: जी,
3: इसलिए भाईचारे में भाई और बहन इसलिए होते हैं कि बहन रक्षा सूत्र भाई के लिए इसलिए बांधती है कि अगर कहीं उसको समस्या या कुछ घटना पड़ जाए तो हमेशा साथ दे, इसलिए भाई बहन के लिए रक्षा सूत्र मांगती है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अंगूठी कटने पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का चीर काट कर उनके उंगली में बांध दिया था
2: जी,
3: तो फिर उनके ऊपर जब चीरहरण हुआ था तो श्री कृष्ण भगवान ने सहायता की थी और उनका अपना भाई का रिश्ता निभाया था, इसलिए भाई बहन का प्रेम बहुत ही सुंदर माना गया।
2: बहुत बढ़िया, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक जो उदाहरण है रक्षाबंधन के त्योहार पर, और भगवान कृष्ण ने बहुत बड़ी विपत्ति के समय उनकी रक्षा की थी
3: जी, जी।
2: है ना, तो ऐसे ही सभी भाई बहन का प्यार बना रहे और हम त्योहार मनाते रहे। तो दीपक जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने फोन लगाया आज करके।
3: दोस्तों के नाम लेना चाहते हैं दीदी,
2: आप दोस्तों से कहिए कि वो हमें फोन लगाए, हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है,
3: धन्यवाद
2: धन्यवाद आज हमें कॉल करने के लिए।
3: जी,

0: हेलो,
1: जानकी गुप्ता बोल रहा हूँ, अंतनगर जिला टीकमगढ़।
0: अच्छा, जिला टीकमगढ़ से बोलिए जानकी गुप्ता। जानकी गुप्ता जी, आपका फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे में हार्दिक स्वागत है। और आज हमने विषय लिया है भाई बहन का पावन पर्व रक्षाबंधन। इस विषय पे हम बात करेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप हमसे?
1: ये कहना चाहते हैं भाई बहन का सबसे अच्छा वो है जैसे
0: जी
1: त्योहार,
0: हाँ,
1: और भाई भाई आते भी हैं और बहन जाती भी है राखी बांधने के लिए में,
0: अच्छा।
1: और सबसे अच्छा है भाई,
0: तो
1: और
0: आपके
1: प्रेम रहता
0: भाई
1: है
0: जो
1: दोनों
0: हैं वो दूर रहते हैं कि पास में ही रहते हैं?
1: है?
0: आपके भाई आपके घर से दूर रहते हैं कि पास में रहते
1: हमारे
0: हैं?
1: भाई हमारे से कम से कम दूर रहते हैं, दो आ
0: बहुत
1: जाती है रक्षाबंधन को दूज पर,
0: अच्छा। तो
1: तभी हम
0: कभी
1: चले जाते हैं।
0: कभी ऐसा भी हुआ कि आप जा नहीं पाई हैं और आपने राखी भेजी उनको पोस्ट के द्वारा?
1: नहीं वो पास ही में है ना।
0: अच्छा, पास में हैं।
1: हाँ
0: ठीक है, तो अच्छा लगा जानकी जी आपने हमें फोन
1: अब
0: किया।
1: कल मेरी बेटी का बर्थडे है,
0: अच्छा, आपकी
1: कोई
0: बेटी
1: ऐसा
0: को
1: गाना सुनवा दो।
0: जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत
1: थैंक यू,
0: धन्यवाद आपको हमें कॉल करने के लिए।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो, बात आपकी जी तुम्हारे
0: जी जी बिल्कुल स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: जी। मैं ग्राम तरसवा जिला मुरैना से हरबिलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: जी तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज हमने विषय लिया है भाई बहन का पर्व, पावन पर्व रक्षाबंधन। इस विषय पे
1: जी
0: बात करेंगे, तो मतलब क्या महसूस करते हैं आप इस पर्व को लेके और कैसे मनाते हैं रक्षाबंधन, जी बताइए कुछ।
1: यहाँ भाई बहन का पावन पर्व रक्षाबंधन है, परसों है शायद
0: जी
1: मेरे हिसाब से,
0: जी जी
1: और सभी बहनें यहाँ घर पे आ गई हैं। लोग लेने गए थे और वो भाई को तिलक करती हैं, राखी बांधती हैं,
0: अच्छा
1: भाई उन्हें रक्षा का वचन देते हैं और जितना भी हो सकता है उनकी सेवा करते हैं, हमेशा जीवन भर साथ
0: बिल्कुल
1: निभाने का वादा करते हैं।
0: रक्षा करते हैं, हर समय पर उनका साथ देते हैं। बिल्कुल
1: जी, और इसी तरह हम आपस में मिलजुल के त्योहार मनाते, गांव वालों के पास जाते, भैरियां होती उन्हें देते, उनको
0: हाँ
1: गले
0: हाँ
1: मिलते हैं, उनसे बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, छोटों से गले मिलते हैं, इस तरह मनाते हैं रक्षाबंधन।
0: जी जी जी जी तो बहुत अच्छा लगा आपका फोन आया और धन्यवाद आपको आज कार्यक्रम में कॉल करने के लिए।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो, फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमने विषय लिया है भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन।
0: सोनू संतवाना मैडम, ग्राम पटेरिया, जिला दमोह से बात कर रहे हैं।
1: सोनू जी,
0: जी
1: अच्छा सोनू जी, आज हमने विषय लिया है रक्षाबंधन का त्यौहार, भाई बहन का
0: मैडम,
1: अटूट बंधन रक्षाबंधन। इस त्यौहार पे आप क्या कहना चाहेंगे?
0: रक्षाबंधन का त्योहार है, भाई बहनों का त्योहार है।
1: हाँ
0: अच्छे से मना प्रेम से
1: हाँ
0: भाई अपने बहनों को जो गिफ्ट देना चाहे वो अपना इच्छा से दे सकते हैं। मतलब
1: अच्छा सुनो जी, कोई ऐसी याद, कोई ऐसी बात जो आपके भाई बहन के रिश्ते से जुड़ी हुई हो तो मतलब हमसे साझा करेंगी क्या?
0: जी मैडम, त्योहार के संबंध में क्या आपसे
1: हाँ,
0: क्या साझा करें।
1: भाई बहन के रिश्तों को लेकर कभी ऐसी कोई बात हुई कि आपकी बहन आपसे गुस्सा हो गई हो, फिर आपने मनाया हो उनको?
0: हाँ मैडम, ऐसा तो होता है, कभी बहुत बार साल में तो एक दो बार हो ही जाता है, मनाना पड़ता है बहनों को। कभी न कभी हो ही जाता है किसी बात की वजह से।
1: असल में क्या है ना, मैं भी किसी की बहन हूँ, बहनों को ना अपने भाई पर हक होता है, अधिकार होता है। मतलब पिता के बाद अगर कोई वो है तो वो भाई है, और मैं तो कहूँगी कि पिता का स्वरूप है भाई। तो मैं, ये बात सच है कि बड़ी जल्दी बुरा लगता है कि अरे आज भैया ने ये नहीं कहा मुझसे, ये नहीं कहा, फोन पे बात नहीं करी
0: ये तो मैडम होता है, तो
1: तो
0: क्या भाई बहन का प्यार रहता है तो कभी नोक झोंक तो होती रहती, साल में भाई
1: हाँ
0: शादी भी हो गई तो भी होती रहती,
1: जी जी जी जी
0: कभी कभी तो बार हो ही जाती है वो तो।
1: हो
0: लेकिन
1: जाती।
0: भाई बहन का प्यार प्यार होता है।
1: हाँ,
0: जी
1: तो सोनू जी, फिर हम आज कॉल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अब हम सुनवाते हैं आपको एक गीत।

0: हेलो
1: हेलो जी,
0: हेलो, कौन बोल रहे हैं जी?
1: मैम नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैम मैं मुस्तफा हुसैन बोहरा बोल रहा हूँ, देवास।
0: अच्छा जी, तो आपका आज का विषय हम बता दें आपको। आज विषय है राखी का त्यौहार, जो है भाई बहन का अटूट बंधन, रक्षाबंधन का त्यौहार। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कोई बहुत अच्छी सी
1: देखिए मैम,
0: याद, कोई अच्छी सी
1: रक्षाबंधन तो
0: बातें।
1: ऐसा त्यौहार, ये भाई बहन के स्नेह का प्रतीक है।
0: हाँ।
1: मैंने अपने भाई की राखी, भाई को राखी बांधते उसकी रक्षा का वचन देती है। भाई भी अपनी बहन तो उसकी रक्षा का वचन देता है कि हर तरह उसकी रक्षा करेगा, और
0: जी
1: साथ ही साथ बहन अपनी अपना भाई अपनी बहन को
0: हाँ,
1: उपहार भी देता है। अच्छा,
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं विवेक व्यास बोल रहा हूँ, मैडम डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव महू जिला इंदौर से। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि मेरी बात मैडम 17 अगस्त को हुई थी, तो आज आप मुझसे बात कर पाएंगी?
0: जी, तो बिल्कुल आपका
1: तो
0: जो फोन है हम उसे प्रसारित करेंगे रेडियो पर। तो विवेक जी, आपको हम विषय बता दें, आज हमारा कार्यक्रम है बात आपके गीत हमारे, और हमने विषय लिया है रक्षाबंधन, भाई भाई बहन का अटूट बंधन, रक्षाबंधन। तो इस विषय
1: जी
0: पर आज आप हमसे क्या बातें करेंगे?
1: देखिए, ये तो आपने इतना अच्छा विषय रखा है कि
0: जी
1: इसमें जितना बोला जाए उतना कम है, और कुछ चीजें ऐसी होती है। आप
0: जी
1: अपना नाम बताना चाहेंगी
0: मैं
1: थोड़ा?
0: सरिता सिंह बोल रही हूँ।
1: जी सविता जी, नमस्कार।
0: हाँ,
1: मेरा
0: नमस्ते।
1: कहना ये है कि देखिए, ये एक ऐसा त्योहार है जिसकी बड़ा ही भावुक और मतलब ऐसा रिश्ते है जो शब्दों में अपन बयान नहीं कर सकते, है
0: बिल्कुल सच कहा
1: ना?
0: विवेक जी, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। मैं आपको सच्ची
1: जी
0: बताऊं तो इतना भावुक
1: जी
0: कर देने वाला त्योहार है कि मैं तो बात करी तो मेरी आंखें भर आ रही हैं।
1: नहीं, वही वही कंडीशन मेरी है।
0: जी
1: और मैं
0: जी
1: आपको बताऊं, सबसे ज्यादा मतलब खुशी भी होती है जब रेडियो पर इस तरह के गाने बजते हैं,
0: हाँ जी,
1: तो मतलब आंखें बिल्कुल नम हो
0: नम
1: जाती
0: हो
1: हैं।
0: जाती है, बिल्कुल सच बात है। अच्छा
1: तो
0: विवेक
1: मैं
0: जी,
1: आपको
0: कभी जब
1: एक बात मैं
0: जी
1: आपको और बताना चाहूंगा कि अभी कुछ सालों पहले आज ही के दिन मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर थी वो एक्सपायर हो गई थी, तो उनकी
0: अच्छा
1: भी मुझे
0: अच्छा
1: काफी याद आती है।
0: जी, अरे ये तो
1: और
0: दुखद
1: जी,
0: है।
1: तो ये है कि आपने ऐसा विषय रखा कि मैं क्या कहूँ और कितना कहूंगा,
0: हाँ हाँ बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल।
1: ना? तो और मेरा यही है कि ये जो अपने तीज त्यौहार है, देखिए आज की जो सविता जी लाइफ हो गई, इतनी व्यस्त हो गई है सभी
0: हाँ
1: की, है ना,
0: जी,
1: कि किसी को आदमी को सही मतलब फुर्सत नहीं है।
0: हाँ
1: लेकिन
0: फुर्सत ही
1: ये
0: नहीं
1: तीज
0: है।
1: त्यौहार जो हमारे हैं, ये
0: जी
1: इसीलिए है कि हम मतलब कम से कम एक दिन ऐसा है जैसे रक्षाबंधन है, तो भाई
0: जी
1: बहन एक दूसरे को समय दें और कुछ समय साथ गुजारें, और
0: हाँ
1: बचपन की बड़ी यादें आती है आज
0: हाँ
1: के
0: हाँ
1: दिन,
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल
1: ना?
0: बिल्कुल।
1: हाँ
0: हमारा जो बचपन है वो हमारे सामने आ जाता है जब हम अपने भाई बहनों से मिलते हैं। अगर कुछ समय के बाद मिले तो हमें और ज्यादा मतलब इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि हम
1: जी
0: बचपन वापस लौट आया हमारा। तो ये बात सही है कि बहुत ही भावुक कर देने वाला त्यौहार है। अगर जो बहनें थोड़ा सा दूर है, किसी कारणवश अपने भाई के
1: जी
0: पास नहीं पहुंच पाई त्यौहार पे, तो आप
1: जी
0: सोचिए उनकी क्या मनोस्थिति होती होगी। आप जो कह रहे हैं कि
1: हाँ
0: गीत
1: ये है
0: सुनकर
1: कि
0: रेडियो पे
1: हाँ
0: जब गीत बजते तो वाकई में रोना आ जाता है उस टाइम कि मतलब मैं आज अपने भाई के पास नहीं हूं।
1: जी। और
0: जी
1: अभी मेरी बहन की राखी आ जाती है,
0: जी
1: अभी आ
0: जी
1: गई है मुझे कल, तो ये ऐसा लगता है कि देखिए, और ये पुराना दौर याद आता है कि आज भी लिफाफे में जो राखी आती है तो
0: जी
1: ऐसा
0: जी
1: लगता है उसमें जो गुंजाइश लिखी रहती है, उनको ऐसी इच्छा होती है कि बार बार पढ़े। और मैं मेरी एक आदत है कि जितनी
0: हाँ
1: भी आती है मैं संभाल कर रखता हूँ,
0: हाँ
1: जब भी
0: हाँ जी
1: मुझे
0: जी
1: ऐसा लगता है तो मैं उनको बार बार पढ़ता हूँ।
0: हाँ। अच्छा विवेक जी, बहुत सारी बातें कर लिया आपने।
1: जी
0: जहाँ
1: जी
0: तक कि
1: जी
0: मैं कहूँगा कि आपकी बहन जो आपने किस्सा मुझे बताया, तो
1: जी
0: मतलब आप यकीन मानिए कि भगवान का जो उनका जो आशीर्वाद है वो आपको पूरा
1: जी
0: मिल रहा
1: जी जी
0: होगा अभी भी। और आप
1: जी
0: भी उनके लिए प्रार्थना करिए कि वो जहाँ भी हों अच्छे से
1: जी
0: हों। तो बस
1: जी
0: हमें फ़ोन लगाने के लिए कार्यक्रम में आपका
1: और
0: बहुत
1: आप
0: बहुत
1: सबको
0: धन्यवाद।
1: भी समस्त आकाशवाणी परिवार और सभी सुनने वालों को भी मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक
0: जी
1: शुभकामनाएं,
0: जी
1: और पर्सनली आपको भी।
0: जी जी धन्यवाद धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। आज हमने विषय लिया है रक्षाबंधन, भाई बहन का अटूट बंधन। तो इस विषय पर आप
1: हाँ,
0: हमसे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए।
1: हरदयाल यादव, ग्राम बारा, तहसील खंजाना, जिला सेतली, मध्य प्रदेश।
0: अच्छा जी, हरदयाल जी, तो आज इस विषय पर आप हमसे क्या कहना चाहेंगे, भाई बहन के प्यार, भाई बहन के इस त्योहार को लेकर?
1: ये कहना चाहता हूँ, बहन भाई के रिश्ते में तो ऐसा कि प्रेम से राखी बांधो और
0: जी
1: श्रद्धा पूर्वक से राखी बंधवाना चाहिए और बहन को लेने जाना चाहिए, माने अपने घर पे बुलाना
0: बिल्कुल
1: चाहिए
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहन को लेने जाना
1: और
0: चाहिए
1: बढ़िया
0: सास सम्मान।
1: बढ़िया टी बढ़िया मान सम्मान से गला लगवाओ और मान सम्मान से राखी बांधो।
0: बिल्कुल।
1: हाँ
0: और
1: जी,
0: कभी कभी कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर जो भाई बहन में अनबन हो जाती है, उन सब बातों को भुलाकर हमें अपनी बहन से बात करना
1: माने
0: चाहिए।
1: माने पूरी बातों को भुला के अगली
0: हाँ
1: पिछली माने बुराई मराई छोड़ के प्रेम से राखी बंधवाने चाहिए,
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है
1: माने अगली पिछली बातों को ध्यान में नहीं लेने चाहिए, छोटी छोटी बातों पे ध्यान
0: जी,
1: नहीं देने चाहिए।
0: ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो भाई
1: जो
0: बहन का रिश्ता है,
1: जो त्योहार है अपना, उस
0: हाँ
1: त्योहार को श्रद्धा पूर्वक से मनाना
0: हाँ
1: चाहिए।
0: त्योहार के अलावा भी जो भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, जो भाई अपनी बहन के लिए कर सकता है, जो बहन अपने भाई के लिए कर सकती है, वो कोई नहीं कर सकता। तो इस रिश्ते को हमेशा बनाए रखने के लिए हमें बहुत समझदारी से और अपनी छोटी मोटी बातों को भुला देना चाहिए, है ना? तो हरदयाल जी, आज कार्यक्रम में आपने हमें फोन लगाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो, कार्यक्रम
1: हेलो।
0: बात आपकी गीत हमारे। आज हमने विषय लिया है भाई बहन का अटूट बंधन, रक्षाबंधन। तो सबसे पहले
1: जी
0: अपना शुभ नाम बताइए।
1: जी मैं देवीलाल आटोड़े बोल रहा हूँ, सुसनेर से, जिला आगरमालवा, मध्य प्रदेश।
0: तो आज हमने
1: जी
0: विषय जो लिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जी रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का बंधन
0: जी
1: मतलब त्योहार है,
0: जी जी
1: और
0: जी
1: ये खुशहाली लाता है, और बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा कवच सूत्र बांधती है।
0: जी जी
1: इसी इन शुभकामनाओं के साथ प्रत्येक भाई बहन इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं।
0: मनाते हैं। जी हाँ, तो आपकी बहन कहीं दूर रहती है कि पास में ही रहती है?
1: नहीं मैडम, मेरी बहन ज्यादा दूर नहीं है, 30 किलोमीटर दूरी रहती है।
0: अच्छा, तब तो फिर वो हर राखी पर आपको मिल जाती
1: जी
0: होंगी।
1: मैडम जी
0: जी,
1: जी
0: ये तो बड़ी, ये भी किस्मत वालों के साथ होता है। जो दूर रहते
1: मैडम
0: हैं वो हर बार तो नहीं पहुंच पाते, कई बार बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के एग्जाम या फिर कुछ और भी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन आप ये मानिए कि जो राखी पोस्ट के थ्रू उनके तक जाती है, डाक के थ्रू, उसमें इतना प्यार
1: बिल्कुल
0: रहता है
1: बिल्कुल
0: और इतनी भावनाएं रहती हैं कि मुझे नहीं लगता
1: जी
0: कि
1: मैडम,
0: भाई को कमी लगती होगी बहन की।
1: नहीं लगती मैडम। जब इच्छा होती है, जब वो फोन
0: हाँ
1: लगा लेती है, और जब हमारी इच्छा होती है हम लगा लेते हैं, घर को डाल लेते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल सही बात
1: जी
0: है।
1: मैडम
0: तो सच में ये बहुत ही भावुक कर देने वाला त्यौहार है ना?
1: बिल्कुल, बहुत भाव करता है मैडम ये
0: हाँ
1: त्योहार।
0: हाँ कभी कभी तो जब गाने बजते हैं रेडियो पे तो अनायास ही रोना आ जाता है कि अरे यार,
1: जी
0: हम अपने घर नहीं जा पाए, मतलब मम्मी के यहाँ नहीं जा पाए,
1: मैडम
0: है ना। चलिए ठीक है, आज आपने देवीलाल जी हमें कार्यक्रम में फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी मैडम।

0: हेलो
1: मैडम, नमस्ते।
0: नमस्ते। कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभ नाम बताइए अपना।
1: बहुत दिन के बाद फोन लगा आपके कार्यक्रम में।
0: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: इंदौर से अनिल कौचाले।
0: अनिल जी बोल रहे हैं?
1: हाँ, इंदौर से।
0: अच्छा जी, तो अनिल जी आज इंदौर की श्रोता बहुत है हमारे साथ। आपको पता है आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, और हमने विषय लिया है भाई बहन का अटूट बंधन, रक्षाबंधन। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पर?
1: इस बारे में कहना चाहेंगे कि भाई ये सब ये रक्षाबंधन और भाई दूज, ये साल भर में जो दो त्योहार रहते हैं जो भाई बहन के, ये है प्यार के प्रतीक है।
0: हाँ।
1: और भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, और केवल घर के भाई बहन के नहीं, जो महिला है वो अपने देश में सैनिकों की रक्षा करती है, वो भी उनके भाई है।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: इसके अलावा जो पुलिस वाले है, जो यातायात प्रबंधन है, जो हमारे दिन रात

0: सुरक्षा में रास्ते में कोई एक्सचेंज वगैरह नहीं हो जाए इसकी चौकसी के लिए जगह जगह ट्रैफिक रोकते हैं, वो भी एक तरह से भाई है। तो उनके भी हिफाजत करना ये मतलब महिलाओं का कर्तव्य होता है। और सभी लड़कियां महिलाएं अपने कर्तव्य का पूरी तरह से अच्छी तरह से निर्वहन करती है, इसकी हमें बहुत खुशी है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने और आज आपने कार्यक्रम में फोन लगाया, हमसे बात करी, हमें बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

इसी गीत के साथ अब कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपनी दोस्त सरिता को। नमस्कार। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में होगा।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम के साथ कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश

0: के 24 स्थानों पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों, युवाओं और खेल प्रतिभाओं से संवाद करते हुए कहा कि खेल केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, यह विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और अहमदाबाद में होने वाले आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेल तैयारियों की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित वाहन कारखाने में टी सीरीज टैंक ओवरऑल परियोजना की आधारशिला रखेंगे। नेपाल के विदेश मंत्री ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा के कुछ हिस्सों में आई अचानक बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। वहीं भारत ने आपदा राहत और दवाओं सहित 10 टन सामग्री नेपाल को भेजी है। भारतीय बचाव दल राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हैं। सरकार ने बाजार में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू की है। प्रदेश में मॉनसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 2 दिनों तक तेज बारिश का दौर रहने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में सबसे पहले हमने चुना है आपके लिए राजा हिंदुस्तानी फिल्म का वो नगमा जिसे आवाज दी है अलका याग्निक ने। समीर के बोल हैं, संगीत नदीम श्रवण का है। पसंद आप सब श्रोताओं की। आप्त दुबे, रेहान दुबे, अनन्या दुबे और रीशु दुबे ने इस गीत की फरमाइश भेजी है गुड़गांव से। इसी गीत को पसंद किया है जयराम प्लॉट राजकोट के श्रोताओं ने। ये हैं मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट। इसी गीत को पसंद किया है गोला बाजार बक्सर के श्रोताओं ने। ये हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और इनके परिवार के सभी सदस्य। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर राजा हिंदुस्तानी फिल्म का।

और अब आपको सुनवा रहे हैं नदिया के पार फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है जसपाल सिंह और हेमलता ने। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का। पसंद आप सब श्रोताओं की है। छत्तीसगढ़ के श्रोताओं ने इस गीत की पसंद के लिए हमें पत्र लिखा है। दतरेंगी से हैं भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और पिपरिया से हैं दुर्गा राम साहू। इसी गीत को हमारे कुछ और श्रोताओं ने भी पसंद किया है। बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मास्टर मनीष का पत्र हमें मिला है। प्रवीण श्रीमाली, मीना आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली इस गीत को सुनना चाहते हैं कंवर कॉलोनी बड़वाह से। तो आइए सुनते हैं इन सबके साथ हम भी नदिया के पार फिल्म का ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अब आपको सुनवा रहे हैं हम तीसरी कसम फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है मन्ना डे और साथियों ने। शैलेंद्र का लिखा हुआ ये गीत है, संगीत शंकर जयकिशन का है। पसंद आप सब श्रोताओं की। बक्सर बिहार से इस गीत को सुनना चाहते हैं शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी। डुमराव बिहार से इसी गीत को पसंद किया है डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम आदिबा और दानिश अंसारी ने। बक्सर के ही कुछ और श्रोता हैं जो इस गीत को पसंद कर रहे हैं, ये हैं राज एस डी अंसारी और खातून अंसारी। जेल रोड दिल्ली से हमें पत्र मिला है लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती का। बक्सर से जीवित गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी इस गीत को पसंद कर रहे हैं। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र के श्रोताओं की भी यही पसंद है। पत्र लिखने वाले श्रोता हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब, साइमा, मुस्तफा, आफिया, राउफ भाई और शहीद भाई इस गीत के लिए हमें पत्र लिख रहे हैं। गांधी बाग अकोला के श्रोताओं ने भी हमें पत्र लिखकर इस गीत की फरमाइश की है। पत्र लिखने वाले श्रोता हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। तो आइए सुनते हैं तीसरी कसम फिल्म का ये गीत।

अब आपको सुनवा रहे हैं आपकी कसम फिल्म का वो गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी के बोल हैं, आरडी बर्मन का संगीत। पसंद आप सब श्रोताओं की। सिंहपुर बड़ा के श्रोताओं ने पत्र लिखा है। ये हैं राजेश नेमा, संगीता, भावना, प्राची और इनके परिवार के सदस्य। इसी गीत को पसंद किया है गुड्डू मिश्रा, गिरीश मिश्रा, निशा मिश्रा और इनके परिवार के सदस्यों ने। ये पत्र हमें मिला है सनावत से। एक और फरमाइशी पत्र हमें मिला है। ये पत्र है मोहाली चंडीगढ़ के श्रोताओं का। यह है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा और इनके साथी। कालका के श्रोता हैं शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद आपकी कसम फिल्म का ये नगमा।

और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं परख फिल्म का वो नगमा जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने। शैलेंद्र के बोल है सलील चौधरी का संगीत। पसंद आप सब श्रोताओं की। चार मीनार चौक गंडई पडरिया के श्रोता हैं दरमियान माल, अनीता मोटवानी, राजेश मुकेश मोटवानी। नागपुर के श्रोता हैं अशोक कुमार सावलानी। तो आइए सुनते हैं परख फिल्म का ये नगमा।

0: परख फिल्म के इस गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। हमारा अगला प्रसारण इस छोटे से अंतराल के बाद होगा।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
5: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
7: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
8: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
9: आकाशवाणी इंदौर।
8: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
10: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
11: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
10: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
11: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
10: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
12: बड़े अच्छे लगते हैं
13: क्या
12: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
13: और
7: आकाशवाणी इंदौर। सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
14: इस समय आप हैं हमारे साथ।
15: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
5: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
7: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
16: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
7: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
8: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
9: आकाशवाणी इंदौर।
8: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
4: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
7: अरे तनिष्का,
0: का प्रसारण प्रस्तुत है संग्रहालय से कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक जमुनिया। आज सुनिए इसकी 9वीं कड़ी।

0: राह तुम भी, ए भैया वही राह तुम भी चुनो मेरे भैया, वही राह तुम भी चुनो मेरे भैया, जमुनियों की कहनी सुनो मेरे।
1: अभी तक आपने सुना कि कैसे जमुनिया अपने पति के साथ मेहनत से सुख के साथ जीवन यापन कर रही थी कि झूठे कागजों पर छल पूर्वक दिखाए गए बड़े कर्ज के बोझ तले दबकर रतन ने आत्महत्या कर ली और उसके भाई ने भी छल पूर्वक जमुनिया के बेटे को भी हथिया लिया। दूसरे गांव के झुल्लन ने जमुनिया को आसरा दिया। बांस के डलिया पंखे बनाने का काम सीखकर जमुनिया अपनी बेटी चिरैया के साथ जीवन बिताने लगी। इसी बीच गांव की दुर्दशा देख उसने पढ़ने का मन बनाया और गांव के ही एक गुरुजी ने उसे पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने जमुनिया को अक्षर से वाक्य तक तथा अंक से गणित तक ज्ञान देने के साथ उसे भारत के इतिहास के बारे में भी बताया। अब आगे।

0: बाबा
1: हाँ।
0: मैं आज पढ़ने नहीं जाऊंगी, गुरुजी को बोल कर आती हूँ, नहीं तो वो राह देखेंगे।
1: अरे जमुनिया, क्यों नहीं जाओगी पढ़ने? पढ़ाई का नुकसान क्यों करती हो बिटिया?
0: बाबा चलैया के पास रहना पड़ेगा ना।
1: अरे ऐसी कोई बात नहीं है बिटिया, मामूली बुखार है, ठीक हो जाएगा। उसके पास तो मैं बैठा ही हूं, तुम चिंता मत करो बिटिया, जाओ। एक बार तय कर लिया है ना तो फिर पीछे मत हटो बिटिया।
0: हाँ बाबा, हाँ तो फिर ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ
1: हाँ,
2: तुम फिकर मत कर माई, अभी मुझे ठीक लग रहा है, ठीक हो जाऊंगी, तू जा।
0: मेरी अच्छी चिरैया, चल आराम कर। हाँ मैं अभी जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है?
2: ठीक है माई, तू जा।
0: प्रणाम गुरुजी।
3: प्रणाम, खुश रहो बेटा, क्या बात है?

0: कुछ परेशान सी लग रही हो। आज तुम्हें कुछ देर भी हो गई है।
1: कुछ खास नहीं गुरुजी, वो बेटी चिरैया है ना,
0: हाँ
1: थोड़ा बुखार था सो
0: अच्छा,
1: थोड़ी देर हो गई गुरुजी।
0: कुछ दवाई वेद जी से लाकर पिलाए हैं कि ऐसे ही?
1: हाँ, उन्होंने काढ़ा दिया है, उबाल कर पिलाया है।
0: अच्छा, तुम जरा रुको।
1: जी
0: ये लो 4 गोलियां।
1: जी
0: अगर कल तक बुखार ना उतरे तो सुबह शाम एक एक गोली खिला देना।
1: जी
0: क्या करें बेटा, यहां कोई अस्पताल भी तो नहीं है और ना कोई डॉक्टर ही आता है।
1: सही बात। तभी तो मुकुंदी, उसकी जोरू, बेचारी शारदा मर गई बिना इलाज के।
0: अच्छा चलो चलो, आगे की कथा सुनाते हैं। धीरे धीरे हमें अपने अधिकार और उत्तरदायित्व सीखने होंगे।
1: हाँ गुरुजी, ये तो सही बात है। चलिए, अच्छा आगे पढ़ते हैं। हाँ
0: हाँ तो देखो, आजाद भारत 2 हिस्सों में बटा। आपस में नफरत की आग लगी थी। हमारे योग्य नेताओं ने धीरे धीरे इस पर काबू पाया, तभी हमें 2 पड़ोसी देशों के आक्रमण झेलना पड़े। चाहे वो 1962 का आक्रमण हो, जिसमें पड़ोसी देश ने छुरा भोंका था, या 1965 का युद्ध, जिसमें दूसरे पड़ोसी ने देश पर हमला किया, हम फिर भी कामयाब रहे। हमारी बहादुर फौज ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे, और 1971 में तो हमारी फौज ने ऐसी विजय पाई कि सारी दुनिया ने लोहा माना।
1: 1971 में ऐसा क्या हुआ था गुरुजी?
0: अब वो मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा।
1: जी
0: अभी तो बस इतना समझ लो कि दुश्मन को लड़ाई में हमारी सेना ने ऐसा घेरा कि दुश्मन के लाखों सैनिकों को हथियार डालना पड़े थे। दुनिया की किसी लड़ाई में इतने सैनिकों ने कभी भी एक साथ आत्मसमर्पण नहीं किया था। इतनी सारी सफलताओं के बाद भी अभी बहुत कुछ बचा था जो हमें हासिल करना था। इस कहानी पर तुम जरा ध्यान देना, पूछूंगा बाद में मैं तुमसे।
1: ध्यान से ही तो सुनती हूँ गुरुजी, आपकी बात को ध्यान से नहीं सुनूंगी तो सीखूंगी कैसे?
0: थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया ना? अरे
1: जी
0: भाई, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। हैं
1: जी
0: देखो, अब आगे सुनो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को एक नई दिशा मिली जब ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने भारत को एक नई सोच दी। उसका नाम था राजीव गांधी।
1: गुरुजी, वही ना, इंदिरा जी के बेटे।
0: बिल्कुल सही, उन्होंने देश को नई नई तकनीक से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उनके हर काम में एक मिशन था, या यूं कहें कि उद्देश्य था। वे चाहते थे कि देश की तरक्की की रफ्तार तेज हो, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो, या महिलाओं और बच्चों का विकास, या दूर संचार हो। देश हर क्षेत्र में तरक्की करने लगा। पहली बार पंचायती राज गांव गांव पहुंचा, वास्तविक रूप से पहली बार। विकास के लिए कब और कहां खर्च किया जाए, पहली बार गांव के लोग खुद निर्णय लेने लगे। सड़कों का निर्माण तेजी से हुआ। देश के विकास के लिए सड़क कितनी जरूरी है, यह तो तुम अच्छी तरह समझती हो ना?
1: जी गुरुजी, सड़क होती तो शारदा बहन शायद बच जाती है ना। सरकार पैसा देती है गांव के विकास के लिए, जिसे दीवान जैसे लोग दबाकर बैठ जाते हैं।
0: ये सब जानने समझने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है।
1: जी गुरुजी
0: अच्छा तो बेटा, आज यहीं समाप्त करते हैं।
1: जी
0: तुम्हें अपनी चिरैया की चिंता होगी, मेरी कोई जरूरत हो तो बता देना।

0: जी अच्छा गुरुजी, प्रणाम गुरुजी।
1: आयुष्मान। अरे करण है क्या घर पर?
2: ना भैया, वे तो घर पर ना हैं, पड़े होंगे कहीं पी पाकर।
1: अरे वो भाभी नहीं है, हमने पहले वहीं देखा फिर इधर आए हैं।
2: ना भैया, हमें तो ना पता कि कहाँ हैं वे, पर बात का है।
1: वो दीवान जी बुलाए हैं। और हाँ आए तो बता देना।
2: ठीक है भैया, आते ही भेज दूंगी।
1: हाँ जल्दी भेजना।
3: अरे ए, कौन है मेरे घर पर?
2: लो, वो तो आ भी गए।
1: अच्छा बेटा अब हमें नहीं पहचानते हैं?
4: ले चलो इसे, वहीं पहचानवाते हैं
1: चलो
4: दीवान जी के सामने।
1: और का।
3: अरे माफ करना भैया, अंधेरा था जो पहचान नहीं पाया।
1: अच्छा
3: आप लोगों को कौन नहीं जानता है।
1: हाँ।
3: अच्छा पर बताओ तू सही, बात क्या है?
1: अरे दीवान जी की बातें दीवान जी ही जानते हैं, हम क्या जाने।
4: वो जैसा बोलते हैं हम कर देते हैं,
1: और का।
4: बाद में क्या होता है वो संभाल लेते हैं।
1: हाँ
3: अच्छा भैया चलो चलते
1: चलो
3: हैं।
1: चलो।
4: हाँ चलो
3: चलो
4: हाँ
3: चलो।
1: हाँ
3: प्रणाम मालिक।
5: प्रणाम प्रणाम। और हट, चित्त बहुत ही पिए है,
1: हाँ मालिक।
5: इससे भी क्या बात करूं। सुनो
1: जी मालिक।
5: इसे 12 दरी में डाल दो ले जाकर,
1: हाँ
5: बोलो सो जाए, सवेरे बात करेंगे।
1: चलो चलो
4: जी,
1: चलो।
4: जी
5: पर
4: मालिक।
5: देखना उठकर चला ना जाए कहीं।
1: हाँ मालिक,
4: कहीं नहीं जाने पाएगा मालिक,
1: आप निश्चिंत रहिए। चल
5: ठीक है, पर ले जाओ इसे।
1: चलो चलो चलो चलो
3: चलो।
5: अरे सुनो
1: जी मालिक।
5: वो देखो करण उठा क्या।
4: मालिक अभी तो वो खर्राटे मार रहा है।
5: जगाओ उसे, बोलो हाथ मुंह धो ले, फिर यहां लेकर आओ उसे।
1: हाँ मालिक।
4: अरे ओ कुंभकर्ण, फट करण बाबू उठिए, हाथ मुंह धोइए। अबे
1: अबे उठ जल्दी, दीवान जी बुला रहे हैं,
3: अच्छा
1: जल्दी कर।
3: उठता हूँ भैया उठता हूँ। प्रणाम मालिक।
5: प्रणाम प्रणाम। होश में तो हो ना।
3: आपको देखकर तो नशा वैसे ही उतर जाता है मालिक, माफ करना।
5: क्या बात है, बहुत दिनों से तुम इधर दिखे नहीं।
3: बस यूं ही सरकार, कहीं गया तो नहीं था, बस यूं ही। हुक्म कीजिए मालिक, कैसे याद किया आपने?
5: देखो करण,
3: जी
5: तुम्हारी चाल के चलते रतन ने अपनी जान दे दी और उसकी जमीन भी तुमने हड़प ली, और उसकी बहू और बेई को घर से बाहर निकाल दिया, और उसका बेटा भी तुमने हत्या लिया, तो अब कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है,
3: जी
5: समझे? हाँ
3: माफी मालिक माफी, इतनी बड़ी रकम मैं कहां से चुकाऊंगा?
5: बिल्कुल सही कह रहे हो, तुमसे काम धाम तो कुछ होता नहीं। अच्छा भला खेत बनाया था रतन ने, उसी पे वो सोना पैदा कर देता, तुमने फिर उसे बर्बाद कर दिया। तुम्हारे पास रुपया चुकाने का कोई रास्ता तो है नहीं, पर मैं भी रुपए छोड़ तो नहीं सकता ना। रतन का सब तुम्हारा है, तो फिर कर्ज भी तुम्हीं को चुकाना पड़ेगा, सीधी सी बात है।
3: पर कागज में तो खाली गवाही हूं मालिक।
5: बिल्कुल नहीं, स्टाम्प पेपर पर साफ साफ लिखा है, यदि किसी वजह से रतन ये कर्ज ना चुका पाए तो फिर मैं चुकाऊंगा, मैं यानी करण यानी तुम, वहां
3: अरे
5: हस्ताक्षर के तौर पर तुम्हारा अंगूठा है करण।
3: अरे ऐसा जुलुम मत करो मालिक।
5: पैसे पेड़ पर नहीं उगते बच्चे। जाओ और पैसे का जाकर इंतजाम करो।
3: अरे कितना इंतजाम करूं मालिक?
5: कितना क्या, बस 25,000 मूल दे देना, और क्या, सूद तुमसे क्या लूंगा। अपने आदमी हो। और हाँ, तुम भी क्या याद रखोगे, तुम्हारे दारू का खर्चा भी माफ। ठीक?
3: अरे अरे, कुछ तो रहम करो सरकार।
5: रहम? अच्छा चलो किया रहम। एक रास्ता निकल सकता है अगर कर सको तो।
3: क्या मालिक? क्या?
5: तुम अपनी बहू को हमारे घर भेजो।
3: जी?
5: वो मालकिन का हाथ बटाएगी, यहीं खाएगी पिएगी रहेगी, और वो रतन का बेटा गोलू, वो हमारी बाहर की सेवा टहल करेगा। बोलो, है मंजूर? जब तक ये दोनों यहां रहेंगे तब तक तुमसे पैसे वापस नहीं मांगेंगे, और अगर मंजूर ना हो तो एक मुश्त 25,000 रुपए दे जा, रट्टा खत्म, हम भी खुश तुम भी खुश।
3: अरे ये क्या कह रहे हैं मालिक, उन्हीं दोनों के भरोसे तो एक रोटी नसीब हो रही है, फिर कमाएगा कौन, खिलाएगा कौन, मेरा क्या होगा सरकार?
5: तुम्हारा क्या होगा ये सोचना सरकार का काम नहीं है, हमने अपना फैसला सुना दिया, अगर नहीं मानोगे तो फिर आगे क्या हो सकता है तुम अच्छी तरह से समझ सकते हो। और हाँ, बताते जाना कि क्या मंजूर है, हमारी पहली वाली बात या फिर दूसरी वाली बात?
3: मालिक, हमारे पास पहली बात मानने के सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। मुझे भी किसी काम पर लगा लीजिए, दो रोटी खाकर यहीं कहीं पड़ा रहूंगा मालिक।
5: हट! ये दीवान का घर है, कोई रैन बसेरा नहीं। तुम किस काम के हो जो तुम्हें काम दूंगा? चलो जाओ यहां से, और अपनी बहू और बेटे को भेज देना, आज ही आ जाना चाहिए उन्हें। बस जाओ।
3: जी सरकार।

0: अरे दरवाजा खोल।
1: अरे तुम क्या रात भर वहीं रहे दीवान जी के घर? अरे खूब खिलाता पिलाता है तुम्हें, है ना?
0: चुप, बकवास तो करना नहीं। अरे दीवान जैसे लोग किसी के नहीं होते हैं। उसने तो मुझे भी फांस लिया, समझी?
1: अरे का हुआ है, कैसे फांस लिया?
0: अरे रतन भैया मर गए, अपना फंदा मेरे गले में डाल गए। अरे
1: वो कैसे?
0: ये जमुनिया चली तो गई, पर उसका भूत अभी तक मेरे पीछे लगा है।
1: है जी?
0: हाँ, जब देखो तब लगता है कभी भी आकर बदला लेगी।
1: अरे साफ साफ बताओ, हुआ का है?
0: अरे हुआ क्या, करण भैया ने 10,000 कर्ज लिया था दीवान से, तो मुझे भी लालच आ गया, मैंने भी 5,000 ले लिया, तो दीवान ने उसे 25,000 बनाकर मेरा भी अंगूठा लगवा लिया। मैंने सोचा आधा तो रतन भैया को करना है, अरे वो तो जान देकर फ्री हो गए, अब दीवान मेरे पीछे लगा है कि कर चुकाओ या।
1: या क्या हमारा घर हड़पेगा?
0: अरे घर में क्या रखा है, घर हड़प कर उसे क्या मिलेगा? तो फिर क्या, तुझे जाकर उसके घर काम करना पड़ेगा।
1: क्या कह रहे हो गोलू के बाबू? नहीं, मैं ना जाऊंगी उसके घर काम करने।
0: अरे जाना तो पड़ेगा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है।
1: अरे कैसे आदमी हो जी तुम?
0: अरे कोई उपाय भी नहीं है। और सुनो, गोलू को भी जाना पड़ेगा, वो बाहर का काम करेगा। और अरे चुप भी कर। अरे
1: बैठे रहो, सब पता चलेगा।
0: अरे चुप रहती है, दुए कान के नीचे।

और जमुनिया रतन का बेटा गोलू दीवान के घर बंधुआ मजदूर की तरह काम करने लगा। आइए सुने इस गीत में क्या हो रहा है।

0: अरे जमुनिया, ये क्या है तुम्हारे हाथ में?
1: प्रणाम गुरुजी।
0: प्रणाम।
1: ये अखबार है गुरुजी, कल हाट गई थी सो ले आई।
0: अरे वाह वाह वाह जमुनिया, तू तो अखबार भी पढ़ने लगी।
1: जी गुरुजी। गुरुजी, सब अखबार यही बोलते हैं कि सरकार हजारों करोड़ों रुपया गांव के विकास के लिए खर्च कर रही है। स्कूल खुलवा रही है, अस्पताल बनवा रही है, फिर हमारे गांव में कुछ क्यों नहीं?
2: अरे कल 15 अगस्त है, मौका लगे तो तुम भी जाके देख लो, सारी बातों का जवाब मिलने लगेगा तुम्हें।
0: हाँ भाई, और ना हो तो मैं भी चलता हूँ, है देखते हैं क्या होता है।
1: जरूर चलेंगे गुरुजी।
3: देशभक्ति गीत गाएंगे।
4: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ।

0: अब आप लोग सब खामोश होकर बैठ जाइए। आज आजादी की वर्षगांठ पर, इस शुभ अवसर पर हम अपने सरपंच दीवान जी से विनती करते हैं कि वे यहां पर आए और आप सभी के सामने अपनी बातें रखें।
1: भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो स्वाधीनता दिवस पर आप सबको बधाई शुभकामनाएं। साथियों, हमारे देश में आजादी के बाद से बहुत विकास हुआ है, गांव गांव में तरक्की हो रही है। अब अपने गांव को ले लो, पिछले साल गलियों में खड़ंजा डलवाया गया।
2: भैया हमने तो देखा।
1: अरे अरे दीवान जी की गली में डलवाया गया था भैया। हाँ डलवाया गया हमारी गली में भैया, तो क्या हम गांव में नहीं है, हैं? बोलिए। अरे भाई कुछ और गलियों में भी डाला गया, सरकार से जितना पैसा आया वही तो खर्च होगा ना। बोलो डलवाया कि नहीं?
0: हाँ डलवाया था भैया, डलवाया था आपने। हाँ डलवाया था, मालूम है।
2: दो नए कुएं भी खुदवाए साहब।
0: हाँ मालूम है।
3: अरे कितने रुपए खर्च हुए थे दीवान जी?
1: पूरे 50 लाख।
3: अरे हमने तो सुना है कि 12 लाख रुपए सरकार ने दिए थे पानी के लिए।
1: हाँ बाकी के हैंडपंप लगवाए गए।
3: हमने तो गांव में कोछु हैंडपंप देखो ही नहीं है।
1: भाई हमने तो खुदवाए थे पर पानी नहीं निकला तो क्या करें भैया, पैसे तो आखिर खर्च हो गए ना।
3: पंप लगवा दी, खर्च होगा।

0: रहिए आप लोग, शांत रहे आप लोग।
1: तुम लोग मुंह बांध के बैठे हो।
2: सही है मालिक, बिल्कुल सही है। अरे हम ही तो बुलाकर लाए थे पंप गाड़ने वालों को।
3: हम ही लाए थे।
4: झूठ बोल रहे हो।
0: देखो भाइयों, मेरी बात सुनिए।
1: अरे ये गांव मेरा परिवार, यहाँ के सभी लोगों का ध्यान रखना मेरा फर्ज है। और फिर ये कोई आखिरी काम तो है नहीं भाइयों। जब भी मेरी जरूरत हो तो बताइए, मैं हमेशा आप लोगों की सेवा के लिए हाजिर रहूंगा।
5: इतनी चुपड़ी चुपड़ी बातें करता है भगवान।
6: अरे मेरी पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए ट्रैक्टर मांगा था, हैं? आपने नहीं दिया, अब मर गई।
0: ये मेरे ऊपर बेकार का इल्जाम है, सुनिए मेरी बात। ये मेरे ऊपर बेकार का इल्जाम लगाया गया है। भाइयों, जैसे ही मुझे पता चला कि इसकी पत्नी बीमार है, उसे अस्पताल ले जाना है, मैंने उसी समय तुरंत ट्रैक्टर भेजा था। पर दुर्भाग्य से उसी समय डीजल खत्म हो गया भाइयों। तो बताइए मैं क्या करता।
4: ट्रैक्टर तो तुरंत आया था।
0: भाइयों बहनों, मुझ पर भरोसा रखिए। सरकार जितना पैसा गांव के विकास के लिए देती है, मैं रत्ती रत्ती पाई पाई गांव के विकास के लिए खर्च करता हूं। पर भाइयों, जरूरतें बहुत हैं। अरे धीरे धीरे ही तो पूरी होंगी ना।
7: देखा कितनी सफाई से सारी बातें टाल गया ये।
8: इसकी सफलता का कारण जानती हो जमनिया?
7: ठीक से बता नहीं सकती, पर इतना तो जरूर है कि अपने छोटे छोटे फायदे के लिए लोग इसे अपनी तरफ किए रहते हैं।
8: समझी तो हो, पर ठीक से नहीं। दीवान लोगों की छोटी छोटी लालचों को पूरा करता है, इसी में उन्हें उलझाकर फंसा लेता है, और लोग उसमें इस तरह फंस जाते हैं कि निकल ही नहीं पाते।
7: बहुत सही है गुरुजी, हमें अपने सुख दुख का डटकर सामना करना चाहिए।
8: बिल्कुल।
7: और छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर काम करना चाहिए, है ना गुरुजी?
8: हाँ, तुम सही कह रही हो बेटा, पर अभी समय है एक दूसरे को बधाई देने का, शुभकामनाएं देने का। स्वाधीनता दिवस की बहुत सारी बधाई।
7: आपको स्वाधीनता दिवस की बधाई हो झुल्लन बाबा।
9: आपको सभी
10: शुभकामनाएं।

अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से इस कार्यक्रम में जमुनिया धारावाहिक की 9वीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम के साथ कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के 24 स्थानों पर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों, युवाओं और खेल प्रतिभाओं से संवाद करते हुए कहा कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेल केवल मेडल जीतने तक ही सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित कार्यक्रमों में युवा खिलाड़ी, छात्रों सहित केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और अहमदाबाद में होने वाले आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेल तैयारियों की समीक्षा करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्री ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा के कुछ हिस्सों

0: में आई अचानक बाढ़ के चलते लापता हजारों लोगों में से लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। वहीं भारत ने आपदा राहत और दवाओं सहित 10 टन सामग्री नेपाल भेजी है और भारतीय बचाव दल राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज ओंकारेश्वर स्थित एकात्मधाम में आयोजित पंचायतन मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में कहा कि सिंहस्थ 2028 से पहले एकात्म यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो देश के विभिन्न हिस्सों से होकर सिंहस्थ क्षेत्र में पहुंचकर संपन्न होगी। और प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक तेज बारिश का ये दौर जारी रहने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 1 बज रहा है। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा।

स्वागत अभिनंदन आप सभी प्यारी प्यारी सखियों का आपके अपने मन पसंद कार्यक्रम महिला सभा में। आज आपके साथ हूँ मैं दीपलक्ष्मी त्रिपाठी। आप सभी सखियों को प्यार भरा नमस्कार। सखियों, सोशल मीडिया जिसने दुनिया को करीब ला दिया, हर किसी को अपनी बात कहने का मौका दिया। सोशल मीडिया आज के समय में हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। महिलाओं के जीवन में कई अच्छे बदलाव हुए हैं, लेकिन इनके कुछ नुकसान भी हैं। लेकिन सबसे पहले इसके सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो सोशल मीडिया महिलाओं को अपनी बात रखने का एक अच्छा मंच देता है। हम महिलाएं घर बैठे नई चीज़ें सीख सकती हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकती हैं और अपने हुनर को लोगों तक पहुँचा सकती हैं। कई महिलाएं सोशल मीडिया की मदद से अपना छोटा व्यवसाय शुरू करके आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसके अलावा महिलाएं अपने अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी जानकारी भी आसानी से प्राप्त कर सकती हैं। सोशल मीडिया महिलाओं को एक दूसरे से जोड़ने में भी मदद करता है। वे अपने अनुभव साझा कर सकती हैं और जरूरत के समय एक दूसरे की मदद भी कर सकती हैं। इससे हम महिलाओं में आत्मविश्वास और जागरूकता बढ़ती है। लेकिन सोशल मीडिया के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताने से पढ़ाई, काम और परिवार के लिए समय कम हो सकता है। दूसरों की अच्छी तस्वीरें और जीवन देखकर कई बार हम महिलाएं खुद की तुलना करने लगती हैं, जिससे तनाव या हीन भावना पैदा हो सकती है। इसके अलावा ऑनलाइन धोखाधड़ी, गलत संदेश, ट्रोलिंग और निजी जानकारी के गलत इस्तेमाल का खतरा भी रहता है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग सावधानी और सही तरीके से करना चाहिए। हमें अपने निजी जानकारी अनजान लोगों के साथ साझा नहीं करनी चाहिए और किसी भी गलत या भ्रामक जानकारी पर तुरंत विश्वास भी नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया महिलाओं के लिए एक शक्तिशाली माध्यम है। इसका सही उपयोग महिलाओं को जागरूक, आत्मनिर्भर और मजबूत बना सकता है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम इसका उपयोग समय और समझदारी के साथ करें। सोशल मीडिया बने शक्ति का आधार, महिलाएं बढ़े आगे, यही है हमारा विचार। तो सखियों, कहते ना कि हर चीज़ के कुछ अच्छे रिजल्ट भी होते हैं, कुछ बुरे परिणाम भी होते हैं। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इन चीज़ों का कितना इस्तेमाल करना है और सही इस्तेमाल करना है। और सखियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको आज याद दिला दें कि आज है विश्व झील दिवस। सखियों, कहते हैं बूंद बूंद से जीवन बनता है, बूंद बूंद से जीवन बनता है, जल है सबसे अनमोल, झीलों को हम साफ रखें तभी रहेगा जीवन अनमोल। विश्व झील

दिवस हर साल 27 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को झीलों के महत्व और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। झीलें हमें पानी देती हैं और अनेक पशु पक्षियों तथा जलीय जीवों का घर हैं। ये पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती हैं। लेकिन आज कई झीलें कचरे, प्लास्टिक और गंदे पानी के कारण प्रदूषित हो रही हैं। हमें झीलों में कचरा नहीं डालना है, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना है और जल स्रोतों को साफ रखने की भी जिम्मेदारी हमारी है। झीलों को बचाना केवल सरकार की नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। मैं यही कहना चाहूंगी सखियों, झील बचाएं, जल बचाएं, अपना और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचाएं। सखियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सुन लेते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: क्या आपको सुबह उठते ही कमर में जकड़न महसूस होती है? क्या बदन दर्द आपके दैनिक कार्यों में रुकावट बन रहा है? अगर हाँ, तो आज का यह इंटरव्यू सिर्फ आपके लिए है। आज हम फिजियोथेरेपी के जरिए इसका समाधान जानेंगे जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर दीप्ति दुबे से। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद।
0: सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे हम महिलाओं की आदत होती है कि हम छोटा मोटा दर्द इग्नोर करते रहते हैं, हमारी बॉडी में कहीं भी पेन होता है जब तक कि वो बहुत बढ़ नहीं जाता है तब तक हम उसको इग्नोर करते रहते हैं, तो क्या दर्द को इस तरह से इग्नोर करना सही है?
1: जी ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारी सोसाइटी में बहुत सी महिलाएं अपने हेल्थ से पहले फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रायोरिटी देती हैं। वो ये सोचती हैं कि ये तो नॉर्मल दर्द है या थोड़ा रेस्ट कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बार बार होने वाले नेक पेन, बैक पेन, जॉइंट पेन या बॉडी पेन नॉर्मल नहीं होते। पेन बॉडी का वार्निंग सिग्नल होता है, अगर इसे शुरुआत में ही ट्रीट कर लिया जाए तो प्रॉब्लम बढ़ने से रोकी जा सकती है।
0: बिल्कुल दीप्ति जी, आजकल की जो लाइफस्टाइल है हमारी, जैसे बहुत देर तक एक जगह पर ही बैठकर काम करना, कंप्यूटर पर काम करना या मोबाइल बहुत देर तक चलाना, झुके रहना, इसकी वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है?
1: जी आजकल का लाइफस्टाइल में लॉन्ग सिटिंग बहुत ज्यादा हो गई है, हम घंटों मोबाइल और लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी की बहुत कमी है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, उसके कारण नींद पूरी नहीं हो पाती, ये बॉडी पेन्स के बहुत बड़े रीजंस हैं।
0: अच्छा, दर्द की जब भी बात आती है तो हम सबसे पहले पेन किलर्स लेते हैं, ये कितना सही है और सेफ है?
1: पेन किलर्स सिर्फ कुछ देर के लिए दर्द को दबा देते हैं लेकिन उसका रूट कॉज ट्रीट नहीं कर पाते। अगर पेन बार बार हो रहा है तो फिजियोथेरेपिस्ट से असेसमेंट करवाना बहुत जरूरी है ताकि असली वजह को ट्रीट किया जा सके।
0: जी बिल्कुल, मतलब हमें इग्नोर नहीं करना है, जैसे भी कहीं थोड़ा सा दर्द स्टार्ट होना तो हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना ही है। लेकिन दीप्ति जी, हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे पता चले कि ये जो पेन बॉडी में हो रहा है ये नॉर्मल पेन है या हमें एक्सपर्ट कंसल्टेशन की जरूरत है?
1: अगर पेन एक दो हफ्ते से ज्यादा रहे, बहुत सीवियर हो, हाथ या पैर में नमनेस या झुनझुनी या वीकनेस हो, बैलेंस बिगड़ने लगे, नॉर्मल डेली एक्टिविटीज में प्रॉब्लम आने लगे, तो इस केस में आपको डेफिनेटली फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना ही चाहिए।
0: दीप्ति जी, पेन मैनेजमेंट में फिजियोथेरेपी का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है?
1: फिजियोथेरेपी पेन कम नहीं करती बल्कि पेन के रूट कॉज का पता लगा के मसल को स्ट्रेंथन करती है, जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ाती है और पोस्चर को करेक्ट करती है। मैनुअल थेरेपी, एक्सरसाइज और पेशेंट एजुकेशन के थ्रू लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलता है। अगर पेशेंट एक्सरसाइजेस और लाइफस्टाइल एडवाइस को फॉलो करे तो कई कंडीशंस में पेन दोबारा आने का रिस्क काफी कम हो जाता है।
0: एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि पेन रिलीफ में एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है?
1: जी पेन रिलीफ में एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम आजकल एक पोजिशन में घंटों बैठे रहते हैं तो उसके कारण हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, तो जिसके कारण जोड़ों में पेन आता है, मसल वीक हो जाती हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ी थोड़ी देर में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए। अगर पेन आपको जस्ट शुरू ही हुआ है तो सबसे पहले हमें उसके ऊपर आइसिंग करना चाहिए, बर्फ से सेक करना चाहिए, और जिस एक्टिविटी के कारण हमें दर्द शुरू हुआ है उस एक्टिविटी को रोक देना चाहिए। उससे उस मसल का या उस जॉइंट का लोड कम होता है, वो रेस्ट में जाता है, तो पेन बॉडी खुद को हील करती है।
0: जो कामकाजी महिलाएं होती हैं जिनको दिन भर ऑफिस

0: में काम करना होता है, घर भी संभालना होता है, या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत देर तक जो कंप्यूटर में काम करते हैं उनको बैक पेन, शोल्डर पेन होने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो आप उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगी?
1: जी, सबसे पहले तो उनका जो स्क्रीन है उसको आई लेवल पे रखें, जो उनका चेयर है वो एकदम प्रॉपर सपोर्ट वाला होना चाहिए, उसमें बहुत अच्छे आर्म रेस्ट और बहुत अच्छा बैक सपोर्ट होना चाहिए, उनको सीधे बैठना चाहिए और दोनों पैर ज़मीन पर टिके रहना चाहिए। लैपटॉप यूज़ करते समय बहुत ज़्यादा सामने की तरफ नहीं झुकना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट हर 30 से 40 मिनट में उठकर 2 से 3 मिनट की वॉक या स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। इन छोटी छोटी हैबिट्स से हम फ्यूचर के बड़े प्रॉब्लम्स को बचा सकते हैं।
0: दीप्ति जी, क्या प्रॉपर स्लीप जरूरी है बॉडी में कहीं भी पेन को अवॉइड करने के लिए?
1: जी हाँ, पुअर स्लीप से मसल प्रॉपरली रिकवर नहीं हो पाती और स्ट्रेस की वजह से मसल और टाइट हो जाती हैं, जिससे नेक और बैक पेन बढ़ सकता है। अच्छी स्लीप मतलब 7-8 घंटों की नींद बहुत जरूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। थोड़ी रेगुलर एक्सरसाइजेस और 7-8 घंटे की नींद से हम पेन को कंट्रोल कर सकते हैं।
0: दीप्ति जी, पेन को कम करने के लिए या पेन को अवॉइड करने के लिए डेली रूटीन में कौन सी हेल्दी हैबिट्स ऐड करनी चाहिए?
1: जी, मैं आपको सिंपल 3 एडवाइस दूंगी। रोज 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज जरूर करें, सही पोस्चर मेंटेन करें और लॉन्ग सिटिंग के बीच में थोड़ा थोड़ा रेगुलर ब्रेक्स लें। अच्छी स्लीप, हेल्दी डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दें।
0: दीप्ति जी, ये जो ब्रेन स्ट्रोक होता है वो पैरालिसिस का कारण भी बनता है, तो इसमें फिजियोथेरेपी क्या हेल्प करती है?
1: जी, स्ट्रोक के बाद फिजियोथेरेपी रिकवरी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है। इससे पेशेंट की मसल स्ट्रेंथ, बैलेंस, वॉकिंग और जो उसकी डेली एक्टिविटी नहीं हो पा रही है उस सब में इम्प्रूवमेंट आता है। जितनी जल्दी एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं उतनी अच्छी रिकवरी हो जाती है। जो पेशेंट डिपेंडेंट पोजीशन में था उसे हम प्रॉपर एक्सरसाइजेस से वापस इंडिपेंडेंट बनाते हैं।
0: दीप्ति जी, आज की बातचीत से एक बात तो क्लियर है सखियों कि पेन को नॉर्मल समझकर इग्नोर करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, सही समय सही सलाह बहुत जरूरी है। दीप्ति जी, आप स्टूडियो में आई और हमें इतनी सारी जानकारी शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सखियों, अभी आपने सुनी सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर दीप्ति दुबे से हुई ये बातचीत। विषय था सर्वाइकल पेन क्या होता है, इसके कारण क्या है और फिजियोथेरेपी के जरिए इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। आशा करती हूँ सखियों आपको पसंद आई होगी। और अब कार्यक्रम के अगले क्रम में चलते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में। दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है सखियों। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर देना है। यह योजना ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान देती है। इस योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाता है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अपना छोटा व्यवसाय या रोजगार शुरू कर सकें। महिलाओं को भी इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है। इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कौशल विकास है। युवाओं को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त करने में मदद मिल सके। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों को अपना काम शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता और बैंक से जुड़ी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य सखियों केवल गरीबों को सहायता देना नहीं बल्कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना है। इससे लोगों में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। सखियों, कार्यक्रम में अभी बहुत कुछ है आगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

भीगे बाल वो भीगा बदन वो भीगी भीगी हर धड़कन वो गाल हया में डूबे हुए वो होंठ वफा से लरसे हुए वो आंखें सोई सोई सी वो सांसें खोई खोई सी। कुछ बोलो क्यों खामोश हो तुम इस दिल से क्या नाराज हो तुम।

अभी तुम्हारी फुरकत में एक सावन कोई लिखता है, क्या अब भी तुम्हारे होठों पर एक चुंबन कोई धरता है, क्या अब भी तुम्हारे शानों से मलमल का दुपट्टा गिरता है, क्या अब भी तुम्हारी बाहों में एक दिल सा कोई रहता है।

तुमको सोच रहा हूँ, बस मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस तुम मुझ में डूबती जाती हो, मैं तुम में डूबता जाता हूँ। तुम मेरे शाने से लगकर कुछ कान में कहने वाली हो, तुम मेरे ध्यान की दुनिया की एक सुंदर सी शहजादी हो।

दिल को छू लेने वाले इस गीत के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूपलावण्य की। सखियों, बरसात के मौसम में नमी और पसीने के कारण मेकअप जल्दी फैल सकता है, इसलिए इस मौसम में हल्का और वाटरप्रूफ मेकअप करना बेहतर रहता है। तो कुछ बातों का ध्यान रखें सखियों, जैसे चेहरे को हमेशा साफ रखना है, मेकअप से पहले चेहरे को अच्छी तरह साफ करें और हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं। बारिश में जब भी बाहर निकलें तो सनस्क्रीन जरूर लगाएं, ऐसा नहीं कि धूप नहीं है तो सनस्क्रीन नहीं लगाना है, तब भी लगाना ही है। प्राइमर का इस्तेमाल करें, इससे मेकअप लंबे समय तक टिका रहता है। हल्का फाउंडेशन लगाएं, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगाने से चेहरा भारी और चिपचिपा लग सकता है। वाटरप्रूफ काजल और आईलाइनर लगाएं ताकि बारिश में आंखों के नीचे ना फैले। वाटरप्रूफ मस्करा इस्तेमाल करें जिससे पलकों का मेकअप खराब ना हो। लिप टिंट या लंबे समय तक टिकने वाली लिपस्टिक लगाएं। सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल करें, इससे मेकअप ज़्यादा देर तक टिकता है। बारिश में चेहरा रगड़ कर ना पोछें, टिश्यू से हल्के हाथ से थपथपा कर पानी सुखाएं और बाहर जाते समय छाता या रेनकोट जरूर रखें ताकि मेकअप को बारिश से बचाया जा सके। तो सखियों, ये तो थी आपकी स्किन की देखभाल, और अब आंखों के संक्रमण से बचाव के लिए भी मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगी, क्योंकि बारिश के मौसम में गंदा पानी, नमी और हाथों के जरिए आंखों में संक्रमण फैल सकता है। लालिमा होना, खुजली, पानी आना या चिपचिपा पदार्थ जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। संक्रमण होने पर ये दूसरों में भी फैल सकता है, इसलिए इसके जो बचाव के उपाय हैं, आंखों को बार बार हाथ ना लगाएं, ना रगड़ें आंखों को छूने से पहले, बाद में आंखों से को जब भी छुएं तो साबुन से हाथ ज़रूर धोएं, क्योंकि हाथों में क्या है ना, इन्फेक्शन हो सकता है। तो सखियों, कुछ बातों का ध्यान रखें, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है इस बारिश के मौसम में। और आखिरी में कार्यक्रम के एक और गीत आपको सुनवा देते हैं।

आप सबसे यहीं पर इजाजत लेने का, तो आपको बता दें इस कार्यक्रम का संयोजन था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार का। और अब दे अनुमति अपनी सखी दीपलक्ष्मी त्रिपाठी को। नमस्कार सखियों।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आपने सुना अभी कार्यक्रम महिला सभा, अगला प्रसारण भोपाल से सुनिए।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए आप सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान है। पहले सुनिए अशोक कुमार झारिया के स्वर में लोक भजन।

ये था लोक संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान है। इसमें सुनिए किशोर मिश्रा के स्वर में गजल।

0: इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। समय है अंतराल का।
1: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
2: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
3: आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
4: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: और
1: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
4: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
3: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
4: अरे काहे का मजा।
3: क्यों, क्या हुआ?
4: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
3: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
4: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
3: ये हुई ना बात।
5: इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेल सिर्फ पदक जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं और खेल प्रतिभाओं को जोड़ने का माध्यम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के हर जिले में खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की क्षमता है। उन्होंने 5 से 15 वर्ष तक की उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की बात भी कही। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर प्रवास के दौरान डुमना एयरपोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सहभागिता की। वहीं कटनी जिले में आयोजित कार्यक्रम में सांसद वीडी शर्मा ने इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया।
1: खेलो इंडिया का संवाद के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री वर्चुअली आज सम्मिलित हुए हैं। सभी खिलाड़ियों को देश के खेलो इंडिया का अभियान और ये नए नौजवान बच्चों का टैलेंट का सर्च और 2036 में होने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऐसे खेल जिनमें भारत प्रतिनिधित्व नहीं करता उनमें खिलाड़ी हमारे डेवलप हों। हमने आज कटनी के अंदर हमारे उन खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया है जिन्होंने प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले टी सीरीज टैंक ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट का भूमिपूजन किया। ये कार्यक्रम व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस परियोजना से रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और इस प्रोजेक्ट से जबलपुर की रक्षा क्षेत्र में भूमिका भी मजबूत होगी तथा महाकौशल क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
2: ये अपने आप में भारत की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजिकल कॉन्शियसनेस, हमारी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी और डिफेंस सेक्टर में हमारे बढ़ते कॉन्फिडेंस की एक यह नई विशाल है। यह प्रोजेक्ट हमारे उन सैनिकों के लिए एक वरदान सिद्ध होगी जो इन टैंक के सहारे दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, यह प्रोजेक्ट जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय लोग, हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे नौजवान, हमारे छोटे उद्यमी के जीवन में भी समृद्धि और रोजगार के नए दरवाजे भी खोलने वाला है।
0: ओंकारेश्वर स्थित एकात्म धाम में पंचायतन मंदिर के निर्माण के लिए आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भूमि और शिला पूजन किया। मुख्यमंत्री ने सपत्नीक विधि विधान से मंदिर निर्माण की नींव रखी। इस पूजन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से विद्वान भी ओंकारेश्वर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगस से पहले ओंकारेश्वर में मंदिर के साथ कई विकास कार्य और घाटों का निर्माण पूरा किया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के स्नेह और अटूट विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह पर्व भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा और पारिवारिक समरसता का संदेश देता है। राज्यपाल ने लोगों से सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत करने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 29 अगस्त को बालाघाट जिले में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान में शामिल होंगे। रक्षाबंधन के अवकाश के कारण इस बार प्रदेश भर में शनिवार को यह अभियान आयोजित किया जाएगा। बालाघाट में मुख्यमंत्री जिला स्तरीय समाधान ऑनलाइन में चिन्हित शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे। इसके बाद बैठक और समीक्षा के अलावा मीडिया संवाद और उद्योग संवाद भी आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही आश्रमों, छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों और युवाओं से भी संवाद होगा। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और पूर्वी तथा उत्तरी हिस्से के 17 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार सागर, रीवा और शहडोल संभाग में अगले 24 घंटे के दौरान 2.5 से 4 इंच तक बारिश होने की संभावना है। वहीं कल प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दतिया जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने दतिया जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। शिवपुरी जिले की तहसील बदरवास स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में 4 सितंबर को एक दिवसीय श्री कृष्ण पर्व का आयोजन भव्य रूप से किया जाएगा और कटनी के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी एवं युवा शामिल हुए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: runs in second innings of the second and final test.
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत सहित 1000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत की कोई निश्चित समय सीमा नहीं। और कोलंबो में दूसरे तथा अंतिम टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 151 रन की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले।
3: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
3: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं, तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी।
3: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
2: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों ने लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया है।
4: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले।
2: ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत माय भारत ने आयोजित किया था। देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के 2-2 कॉलेजों के युवाओं ने इसमें भाग लिया।

0: युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में मजबूत खेल व्यवस्था और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गुजरात में गांधीनगर के पालज स्थित IIT में आयोजित खेलो इंडिया संवाद से अलग मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल खेल अकादमियों की स्थापना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल सुविधाओं को मजबूत करने में किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत को अपनी खेल परंपराओं को एक जीवंत खेल संस्कृति में विकसित करना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली के हिंदू कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद में हिस्सा लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक मजबूत खेल तंत्र विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
1: इंटरनेशनल लेवल में हमारा मेडल्स बढ़ रहे हैं। पहले तो हम एक मुश्किल से दो मेडल मिलते थे, अब तो हम हर कंपटीशन, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, अब तो मल्टीपल मेडल्स जीतते हैं इंडियन प्लेयर्स। ये तो बहुत फख्र की बात है।
0: कश्मीर के सभी 10 जिलों के हजारों छात्रों, खिलाड़ियों और अन्य लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल माध्यम से आयोजित खेलो इंडिया संवाद में भाग लिया। प्रतिभागियों ने युवा पीढ़ी को खेल अपनाने और खेल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। चंडीगढ़ के 51 शिक्षण संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों और राष्ट्रीय खेल सेवा स्वयं सेवकों ने आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पठानकोट स्थित आर्य महिला महाविद्यालय की छात्रा शिव्या ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश हमेशा युवाओं को विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित रूप से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद के सर्किट हाउस एनेक्सी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृहमंत्री गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से टी सीरीज टैंकों के ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस परियोजना से रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहाले गए और कई पन बिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी का कारण भूकंप के झटकों से ग्लेशियर फट जाने को माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है +9779851316807 और +9779701075000। विश्व बैंक ने भी प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। इसके अलावा नेपाल में बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी हैं। डॉ जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव और काठमांडू और पेचिंग में भारत के राजदूतों के साथ नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पर्यटन संचालकों और परियोजना अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार राहत सहायता प्रदान करने के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह

0: कहा कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कहा है कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 20 टीम तैनात की गई हैं, जिनमें से 9 बिहार में और 11 उत्तर प्रदेश में हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बल की एक टीम तैनात की गई है।
1: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो सीडब्ल्यूसी का भी इनपुट था कि उसका इंपैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
0: इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार और रविवार को ओडिशा के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज को 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हो चुकी है और लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आज देर शाम या कल सुबह तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसके पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर अपने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी न करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि डीए अभी तक जारी नहीं होने के कारण 3 लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता फिर शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत फिर से शुरू करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है। उन्होंने ईरान की आर्थिक मुश्किलों का भी उल्लेख किया। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी आज ईरान पहुंचेंगे। वे ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर तनाव कम करने और बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। श्रीलंका ने चायकाल तक दूसरी पारी में 155 रन की बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत ने श्रीलंका को उनकी पहली पारी में 290 रन पर ऑल आउट करके फॉलो ऑन दिया है। दो मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 143 अंक गिरकर 77,330 जबकि निफ्टी 36 अंक गिरावट के साथ 24,171 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत 1,000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और कोलंबो में दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 155 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये फरमाइश भेजी है बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष सानवी, कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी, मीनूरा श्रीमाली, घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमंद्र और सन्मति पंचोलिया, और मुरादाबाद से जफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद, इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है इजाजत फिल्म का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है आशा भोसले की, गीतकार हैं गुलजार और संगीत है आर डी बर्मन का।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और ये अगली फरमाइश है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सामले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा, जास्मीन प्रयागराज भट्ट, नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है जीवा फिल्म का गीत, जिसके लिए आवाज़ है आशा भोसले, अमित कुमार की, गीतकार हैं गुलजार, संगीत है आर डी बर्मन का।

आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश भेजी है आदर्श नगर मलोट से, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, निवान शर्मा, छत्तीसगढ़, दतरेंगी से भागवत प्रसाद वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पिपरिया से दुर्गा राम साहू, सागर से दिलीप राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है आंधी फिल्म का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर, किशोर कुमार की, गीतकार हैं गुलजार, संगीत है आर डी बर्मन का।

आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश भेजी है बेरडी से। हुकुम करम कर, सुनीता करम कर, हार्दिक करम कर, प्राची करम कर, तनु करम कर, मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गंवाण कर, सरिता गंवाण कर, एकांश गणवाकड़ और सिद्धांत गंवाणकर, प्रणीता अर्जुन गंवाकड़ गंवाणकर और नागपुर से वैशाली

आपकी फरमाइश के लिए ये फरमाइश है फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, इस फिल्म के गीत के लिए। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार की, गीतकार हैं गुलजार और संगीत है खयाम का। सुनना चाहते हैं बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित, और पेनरस छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, दिव्यांश श्रीवास्तव। धामणी मनोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती, संदेश डेरे, आदर्श डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल डेरे, अनुत डेरे, और बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, सारा गांव। चटौदा से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी, कृति वर्मा। तो सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर थोड़ी सी बेवफाई इस फिल्म का गीत।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले टी सीरीज टैंक ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। यह कार्यक्रम व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल और भारत की ओर से प्रस्तावित 2036 ओलंपिक खेल की मेजबानी की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री शाह एक दिन के गुजरात दौरे पर हैं। ओंकारेश्वर स्थित एकात्म धाम में पंचायतन मंदिर के निर्माण के लिए आज मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भूमि और शिला पूजन किया। मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी के साथ विधि विधान से मंदिर निर्माण की नींव रखी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के स्नेह और अटूट विश्वास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 29 अगस्त को बालाघाट जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में शामिल होंगे। रक्षाबंधन के अवकाश के कारण इस बार प्रदेश भर में शनिवार को यह अभियान आयोजित किया जाएगा और प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और उत्तरी हिस्से के 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आपको बता दें आज शाम की सभा के कार्यक्रम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी जबलपुर का योगदान होगा। 5:33 पर, 6:30 पर, 8:15 पर, रात 9:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा शाम 6 बजे। रात 8 बजे सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।

10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा राग रजनी। इसमें आप सुनेंगे विदुषी गंगूबाई हंगल का राग शुद्ध कल्याण में ख्याल गायन। और आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम होगा किसान वाणी 7:30 पर। इसमें आप सुनेंगे ओबी आधारित कार्यक्रम उद्यानिकी फसलों से किसानों एवं शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार के अवसर। प्रतिभागी होंगे राजकुमार सगर, श्रेयसी भाकोरिया, श्याम सिंह कुशवाहा, हेमंत कुशवाहा। ये जानकारी आज शाम के सभा के कार्यक्रम होगी। मीडियम वेव 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 3:02 में हैं, हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, मगर इस बीच डीटीएच पर हमारे प्रसारण को आप सुनेंगे।

नमस्कार, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को है। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में श्रोताओं, आइए सुनते हैं यूथ प्रोग्राम युववाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, शाम के 5 बज रहे हैं और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त माधवी।
1: और मैं हूं देवांशी।
0: तो दोस्तों, आज है बहुत खास दिन। आज हम आपसे बात करने वाले हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में, काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको बताएंगे। और आज है गुरुवार, गुरुवार के दिन होता है हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है गीतों भरी कहानी। तो अंत में आपको एक बहुत प्यारी सी गीतों भरी कहानी सुनाएंगे और साथ में अच्छे अच्छे गीत सुनाएंगे। फिलहाल के लिए आज हम आपसे बात करेंगे विश्व झील दिवस के बारे में, क्योंकि आज झीलों को सेलिब्रेट करने का दिन है। और साथ ही आज खेलो इंडिया डायलॉग भी है, जिसमें जो हमारे पीएम हैं उनकी खेल के रिगार्डिंग बात होगी सब लोगों से, स्पेशली यूथ से। तो हम आपसे उस बारे में भी ढेर सारी चर्चाएं करेंगे। लेकिन शुरुआत करनी चाहिए हमें कार्यक्रम की।
1: हाँ, लेकिन उसके पहले माधवी, जैसा तुम जानती हो कि हम हमारे श्रोताओं से पूछते हैं 2 प्रश्न जिसका जवाब उन्हें कार्यक्रम के अंत में बताते हैं, तब तक उन्हें वो सोचना होता है। तो पहले वो पूछ लेते हैं।
0: बिल्कुल पूछ लेते
1: तो
0: हैं।
1: तो सबसे

0: पहला प्रश्न ये है कि एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं?
1: और हमारा आज का दूसरा प्रश्न है कि सांची स्तूप वो किस राज्य में स्थित है। तो इन दोनों प्रश्नों के आप उत्तर ढूंढ के रखिए और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का पहला गीत।

0: बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: तो दोस्तों, प्रकृति ने हमें बहुत सी खूबसूरत सौगातें दी हैं, जैसे पहाड़, जंगल, नदियाँ और समुद्र। लेकिन आज हमारी बातचीत एक ऐसी प्राकृतिक धरोहर के बारे में है जो शांत भी है, सुंदर भी है और हमारे पर्यावरण के लिए बेहद ज़रूरी भी है। हम आज बात कर रहे हैं झीलों की, क्योंकि आज है विश्व झील दिवस।
3: बिल्कुल दोस्तों, झीलों को देखकर अक्सर हमें सिर्फ उसकी सुंदरता दिखाई देती है ना माधवी, जैसे नीला पानी है, आसपास हरियाली है और पानी में बनती आसमान की तस्वीर है। लेकिन झीलें केवल घूमने और तस्वीरें खिंचवाने की जगह ही नहीं है।
2: हम बिल्कुल सही कह रही हो तुम। हम जानते हैं कि झीलें जो है उनका मेन अट्रैक्शन यही होता है कि वहाँ पर मीठा पानी मिलता है, क्योंकि समुद्र में हम जाते हैं तो हमें दिखता है कि हाँ बहुत कड़वा पानी है या सॉल्टी पानी है, लेकिन झीलों का पानी मीठा होता है। वो बहुत मतलब वर्षा के बाद अगर हमें संभालना है झीलों को, हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना है, तो उन सारी चीज़ों में झीलें हमें बहुत मदद करती हैं। कई झीलें पक्षियों, मछलियों, पौधों और दूसरे जीवों का घर भी होती हैं।
3: बिल्कुल, देखो कई माइग्रेटरी बर्ड्स यानी कि प्रवासी पक्षी जो होते हैं वो हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके एक ऐसी जलभूमि तक पहुंचते हैं। यानी हमारे लिए हो सकता है कि झील सिर्फ एक खूबसूरत जगह हो, लेकिन पक्षियों के लिए तो ये उनका होटल, रेस्टोरेंट और घर सब कुछ हो सकता है।
2: कितनी सही बात करी है तुमने। झीलों की तुलना में हमने शायद कभी भी इस नज़रिए से सोचा ही नहीं होगा। भारत में तो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की झीलें दिखाई देती है। कश्मीर की डल झील है, राजस्थान का पिचोला झील है, ओडिशा का चिलिका झील है और मध्य प्रदेश की भोजताल। ये सारी झीलें अपनी सुंदरता और ओवरऑल जो ब्यूटी नेचर की जो ब्यूटी है उसके महत्व के लिए जानी जाती है।
3: देखो, जब चिलिका झील की बात हो रही होती है ना, तो प्रवासी पक्षियों का जिक्र तो ज़रूरी ही है, क्योंकि ये भारत की उन प्रसिद्ध तटीय लगूनों में से एक है और सर्दियों के दौरान बड़ी संख्या में यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स यानी कि प्रवासी पक्षी आते हैं और प्रकृति प्रेमियों के लिए तो यह जगह किसी लाइव फोटो से कम नहीं होती है।
2: बिल्कुल सही कह रही हो, और इसीलिए ये बात आती है कि झीलों को हमें बचाना चाहिए। जल प्रदूषण बहुत हो रहा है, कचरा लोग बहुत करते हैं और ये सब ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है सब जानते होंगे, फिर से दोहराने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम जागरूकता बढ़ा सकते हैं और जागरूकता बढ़ाने के लिए बड़े बड़े अभियान करने चाहिए, झीलों को बचाना चाहिए। और उतनी ही ज़रूरी है कि हमारी छोटी छोटी आदतों में हम बदलाव लाएं। झील के किनारे जो हैं, जो क्रॉसिंग्स होती हैं या जो हमारे तट हैं, उन पे हम कचरा ना डालें, पानी के प्रदूषण को ना करें, सारी फैक्ट्रीज़ के जो सोर्सेज हैं, जो आउटलेट्स हैं जो सीधे झीलों में जाकर खुलते हैं या समुद्र में खुलते हैं, उन्हें हम कम करें। छोटे कदम जो हम छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे आगे, उनसे एक बड़ा बदलाव हो सकता है।
3: और देखो, किसी भी झील को साफ रखने की जिम्मेदारी केवल सरकार की या किसी संस्था की तो नहीं है। जिस तरह हम अपने घर को साफ रखते हैं, उसी तरह हमें प्रकृति को भी अपना घर समझना होगा और उसे साफ रखना होगा।
2: बिल्कुल, एक साफ झील सिर्फ आज की सुंदर तस्वीर नहीं बनाती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी, जैव विविधता और प्रकृति की एक अनमोल विरासत सुरक्षित रख के जाती है। तो आइए हम साथ में, बोलो देवांशी।
3: तो हम साथ में इस विश्व झील दिवस के मौके पर संकल्प लेते हैं कि हमारे आसपास के तालाबों, झीलों और दूसरे जो भी जल स्रोत हैं, उनको केवल पर्यटन का स्थल नहीं मानेंगे, बल्कि प्रकृति की अमूल्य धरोहर भी मानेंगे।
2: बिल्कुल, इसी के साथ सुनते हैं झीलों से रिजेम्बल करता हुआ एक बहुत ही प्यारा सा मीठा सा गीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: तो दोस्तों, आज के दिन हम मनाते हैं खेल प्रेमियों के लिए बहुत खास दिन। आज

0: है देश भर में खेलो इंडिया डायलॉग। ये खेल की बात होगी पीएम के साथ, जैसी एक पहल के जरिए खेलों को लेकर संवाद और युवाओं में भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब अगर आसान शब्दों में बात की जाए तो पीएम सबसे बात करेंगे कि आप खेलों में अपनी भागीदारी कैसे बढ़ा सकते हैं। और आज हम आपसे ये बात इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि युवाओं के लिए ये बहुत खास अवसर है। ये आयोजन राष्ट्रीय खेल दिवस की ओर बढ़ते कदमों का एक हिस्सा है।
1: और दोस्तों, जब खेल की बात आती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ क्रिकेट या फुटबॉल जैसे खेल आते हैं ना माधवी, लेकिन हाँ। भारत में हॉकी से लेकर बैडमिंटन, कुश्ती, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, शतरंज, तीरंदाजी जैसे कई पारंपरिक खेल हैं जिनकी एक बहुत ही शानदार विरासत है। और अब जैसे कि हम जानते हैं कि खेल अब केवल मनोरंजन नहीं रह गए हैं, वो फिटनेस, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और करियर का भी माध्यम बन चुके हैं।
0: मुझे पर्सनली तो देवांशी इस पहल की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसमें खिलाड़ियों और युवाओं की आवाज़ को महत्व दिया जा रहा है। खेल के मैदान से निकलने वाली बात जब नीति और देश के बड़े मंच तक पहुंचती है तो युवा खिलाड़ियों को यह एहसास हो जाता है कि उनकी मेहनत और उनके अनुभव भी मायने रखते हैं।
1: बिल्कुल, देखो भारत में प्रतिभा की तो तुम्हें पता है कोई कमी नहीं है। छोटे शहरों और गांवों से निकलने वाले खिलाड़ी भी आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कई बार एक छोटे से मैदान और सीमित संसाधनों और बहुत सारे सपनों से शुरुआत होती है और वही सपने आगे चलकर देश की पहचान बन जाते हैं।
0: खेल हमें जीतना ही नहीं सिखाता, जीतने से ज़्यादा कुछ और भी सिखाता है। खेल हमें ये सिखाते हैं कि हार के बाद वापस उठना क्या होता है। मैदान पर हर मैच जीतना संभव नहीं होता, लेकिन हर मुकाबला हमें कुछ नया सिखाता है और यही खेल भावना जीवन में भी बहुत जगहों पर काम आती है।
1: बिल्कुल दोस्तों, भारत में खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए खेलो इंडिया जैसी पहलें जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका तो निभा ही रही हैं, जिनका उद्देश्य है कि युवाओं को खेल से जोड़ सकें, नई प्रतिभाओं को पहचान सकें और उन्हें एक बेहतर अवसर प्रदान करें ताकि वो भी सही दिशा में आगे बढ़ सकें।
0: मेरा ये भी मानना है देवांशी कि खेलों को जो है ना पढ़ाई के बिल्कुल विपरीत नहीं देखा जाना चाहिए। पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन खेल भी व्यक्तित्व विकास यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। मैदान हमें टीमवर्क सिखाता है, समय प्रबंधन सिखाता है, अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन सिखाता है और ऐसे सारे बहुत सारे गुण हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमें ज़रूरी हैं जो हमें खेल सिखाता है। तो मुझे लगता है वो टाइम अब बहुत पीछे रह गया जब लोग कहा करते थे कि खेल कूद से कुछ नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि आज हम देख ही रहे हैं कि खिलाड़ियों का जीवन पढ़ाई लिखाई वाले इंजीनियरों से बहुत बेहतर है।
1: तो दोस्तों, आइए हम भी ये प्रण लेते हैं कि खेलों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। भले ही आप प्रोफेशनली ना खेलें, लेकिन अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और जीत हार से बढ़कर इसे एक्सरसाइज के रूप में देखें और खेल भावनाओं को अपनाएं, ताकि असली जीत जो होती है ना माधवी, वो केवल ट्रॉफी उठाने में नहीं होती बल्कि खुद का एक बेहतर वर्जन बनने में भी होती है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। तो इसलिए दोस्तों, खेलिए, सीखिए, गिरिए, गिरकर फिर उठिए और आगे बढ़ते रहिए, और यही खेल की असली भावना है और यही जीवन की असली भावना होनी चाहिए।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतों भरी कहानी, तो माधवी शुरू करते हैं।
1: बिल्कुल शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हम आपसे बात करेंगे इस कहानी के बहुत अच्छे से एक पहलू के बारे में। तो छगन हमारी कहानी का एक पात्र है। छगन ने उसे पहली बार कब देखा था उसे ठीक से याद नहीं था, मगर अब कई दिनों से वो रोज आ रहा था। सुबह दुकान खुलने से पहले ही आ जाता, वहीं पुराना हरा झोला पीठ पर टांग कर जिसमें एक लैपटॉप रहता था। बेंच पर बैठता, कभी कुछ लिखता, कभी अपने बालों और अपनी दाढ़ी में हाथ फेरते हुए जाने क्या सोचता रहता।
0: धीरे धीरे दुकान के लोगों ने उसके बारे में अपने अपने किस्से बनाना शुरू किया। कोई उसे रिसर्च वाला कहता तो कोई जासूस और कोई दार्शनिक। एक ग्राहक ने कहा, अरे जिस छगन की गरम दूध जलेबी भी ना खींच पाए वो आदमी दार्शनिक ही होगा ना। छगन चुप रहा। उसे बस एक बात समझ में नहीं आती थी कि जब कुछ खाना पीना नहीं है तो रोज क्यों उसकी बेंच को घेरता है।
1: फिर एक शाम उस आदमी ने 50 का नोट उसकी हथेली पर रख दिया, बेंच मेरे लिए रोज रिजर्व रख दीजिए। उस दिन से बेंच उसकी हो गई।

0: एक दिन छगन ने पूछ ही लिया, साहब आप रहते कहाँ हैं?
1: नदी के उस पार।
0: वहाँ तो जंगल है।
1: कुछ मछुआरे रहते हैं, उन्हीं के साथ रहता हूँ। सुबह नाव से आते हैं और शाम को लेके जाते हैं।
0: छगन ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर पूछा, सच बताइए, जासूस हैं क्या आप?
1: वो मुस्कुराया, आधा सच। देखिए लेखक हूँ, पर लेखक भी तो जासूस ही होता है ना। फर्क बस इतना है कि वो लोगों की जासूसी करके कहानी लिखता है।
0: छगन को जवाब समझ आया या नहीं, मगर शहर को कहानी मिल गई थी। अगले दिन तक ये खबर पूरी जगह में फैल गई थी कि एक लेखक आया है, छगन पर फिल्म बना रहा है और छगन उस फिल्म का हीरो है। लोग छगन को नए नजरिए से देखने लगे, उसकी जलेबी बिकने लगी, लोग उससे मिलने आने लगे, कोई रोल मांगने लगा, कोई अपना डायलॉग सुनाने लगा।
1: और फिर सवाल आया, अरे भाई हीरोइन कौन है?
0: परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, हीरोइन अभी राजी नहीं है, उसका मामला सुलझे तब तो मैं शूटिंग करूंगा।
1: बस अब तो पूरा शहर हीरोइन का इंतजार करने लगा।

0: अगली सुबह छगन की दुकान के बाहर बहुत सारी भीड़ थी। सबको लगा आज फिल्म की शूटिंग शुरू होगी, मगर ना तो परदेसी आया ना ही छगन आया। शाम ढली और देखा कि छगन अब वापस आ रहा है, थका हुआ, जैसे पूरी रात वो सोया ही ना हो। वो चुपचाप उसी बेंच पर बैठ गया।
1: किसी ने पूछा, अरे शूटिंग शुरू हो गई क्या?
0: छगन ने कोई जवाब नहीं दिया।
1: दूसरे ने छेड़ा, अरे हीरो साहब, हीरोइन का मामला कुछ सुलझा?
0: इस बार छगन फट पड़ा, हीरो वीरो कुछ नहीं है, फ्रॉड है वो, फ्रॉड।
1: सब चुप हो गए। अरे चंदन राय की लड़की को ब्याह के ले गया है, रोज यहां बैठकर लैपटॉप में उससे चैट करता था और सामने वाली खिड़की से इशारे होते थे, आज पता चला दोनों निकल गए।
0: लोगों की नजर चंदन राय की जगह पूरी तरह खिड़की पे लग गई और बंद खिड़की पर टिक गई।

0: छगन की आवाज भर्रा गई। सवेरे से थाने में हमारी खूब खिंचाई हुई है, बहुत हाथ पैर जोड़कर छूटे हैं हम। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। शहर को आखिर समझ आ गया था कि परदेसी छगन पर कोई फिल्म नहीं बना रहा, वो तो बस अपनी प्रेम कहानी की तैयारी कर रहा था।
1: और जिस हीरोइन का पूरा शहर इंतजार कर रहा था,
0: वो उसी दिन अपने हीरो के साथ जा चुकी थी।

0: गया।
1: तो दोस्तों ये था हमारा आज का युववाणी कार्यक्रम, लेकिन हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे दो सवाल पूछे थे, है ना माधवी? तो उनका जवाब देने का समय आ गया है। आप लोगों ने अगर सही उत्तर गैस कर लिया है तो आपको बहुत बधाई। तो हमारा पहला सवाल था कि एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं, और उसका उत्तर है कि एलोरा की गुफाएँ महाराष्ट्र में स्थित हैं। और हमारा दूसरा सवाल ये था कि सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है, तो उसका उत्तर है कि ये हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है।
2: तो दोस्तों अगर हम लोग मध्य प्रदेश वाले ही लोग हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनमें से कितने ही सारे लोग
1: सबने सही गैस किया होगा
2: इस प्रश्न का, तो सही उत्तर उनके हिलाए होंगे। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग में से कितने लोग सांची स्तूप एक्चुअली गए हैं, क्योंकि ये एक बहुत सुंदर जगह है और दूसरी बहुत हिस्टोरिक जगह है ना देवांशी?
1: बिल्कुल,
2: बहुत ही रिच कल्चर और रिच हेरिटेज है इस मॉन्यूमेंट के पीछे।
1: और हम लोग बात करते हैं देश विदेश में अलग अलग जगहों पर घूमने की, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत जो होती है ना, वो हमें अपने पास जो स्थित जगह हैं, जैसे मध्य प्रदेश में जितनी भी ऐतिहासिक जगह हैं जिसमें सांची स्तूप भी आता है, वो पहले देखना चाहिए।
2: सही कह रही हो तुम। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमें सुन रहे होंगे, स्पेशली जो फॉरेन टूर्स करते हैं और जो इंटरनेशनल वाटर्स में जाना चाहते हैं, जो US, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह जाते हैं, और अगर उनसे पूछ लिया जाए कि क्या तुमने खजुराहो देखा है,
1: हाँ
2: तो उनका जवाब यूजुअली ना होता है। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ। इसमें कुछ गलत नहीं है, पर इसमें कुछ सही भी नहीं है।
1: बिल्कुल,
2: अगर आप इतने इतने हिस्टोरिकली रिच स्टेट में रहते हैं जहाँ पे सांची स्तूपा है, जो अपनी केव्स हैं वो हैं, जिसको भीम की गुफा कहते हैं वो है, उसके अलावा खजुराहो है, तो मुझे लगता है पहले अपने पास की इन हिस्टोरिकल डेस्टिनेशंस को देखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी क्योंकि त्योहारों की छड़ी लग चुकी है और बहुत सारी छुट्टियां आने वाली हैं, साथ ही आगे दिवाली, दशहरा और न्यू ईयर, सारी छुट्टियां रहेंगी, तो अगर आप लोगों का बाहर घूमने का प्लान बनता है या आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो पहले अपनी स्टेट की इम्पॉर्टेंट जगहों को घूमना ना भूलें।
1: बिल्कुल। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कल हम मनाएंगे रक्षाबंधन का त्यौहार, तो उसकी आपकी तैयारी कैसी चल रही है, हो गई है या बची है, ये भी आप हमें ज़रूर बताएं।
2: बिल्कुल, सभी लोगों को, हमारे सारे श्रोताओं को रक्षाबंधन की अग्रिम बधाइयाँ,
1: बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। सारी
2: लड़कियाँ जो हमें सुन रही हैं, क्या आपकी प्रेपरेशंस हो चुकी हैं, क्या आपकी राखियाँ तैयार हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट आउटफिट, क्या आपका आउटफिट तैयार है या आपका आउटफिट मेरे आउटफिट की तरह अभी तक टेलर के पास है, जो कि
1: हाँ ये थोड़ा
2: यूनिवर्सल प्रॉब्लम है,
1: ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि आपने जो डिसाइड किया है कि ये पहनना है और वो उस दिन तक तैयार नहीं हो पाया है, तो थोड़ी मुश्किल की बात हो
2: थोड़ी
1: जाती
2: मुश्किल बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि ऐसा लगता है फिर कि मतलब क्या होता है ना कि क्रेज रहता है,
1: त्योहारों की जो रौनक होती है ना वो यही होती है कि अच्छे कपड़े आप पहने,
2: नए कपड़े पहने, नए तैयार हों
1: और परिवार वालों से मिले, हाँ फोटो
2: पहना हुआ आउटफिट में आपके पिक्चर्स कैसे, मैं तो नहीं कर
1: नहीं नहीं हर त्योहार के लिए नए कपड़े होना जरूरी
2: है। बिल्कुल, तो अब बस मेरी यही उम्मीद है, मेरी दरखास्त है मेरे टेलर से कि मुझे जल्द से जल्द दे दे। और अगर मेरे जैसी और भी कोई लड़कियां हैं जो जिनके साथ सेम हुआ है, तो हमें लिखकर जरूर भेजे।
1: तो दोस्तों ये था हमारा युवाणी कार्यक्रम, अब इजाजत दीजिए देवांशी
2: और माधवी को।

युवा साथी अभी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी का इंदौर केंद्र मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आइए सुनते हैं अब फिल्म संगीत और पहला नगमा जतिन ललित के संगीत में जावेद अख्तर के बोल है अभिजीत की आवाज़।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

आशिकी फिल्म का ये गीत है, कुमार सानू की आवाज है और बोल लिखे हैं मदन पाल ने, संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: फिल्म संगीत श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर, और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आज रात 9:30 से रात 10:30 तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मन भावन को सुनना ना भूलिए। आपके पत्रों पर आधारित गीतों का ये कार्यक्रम हम लेकर आएंगे रात 9:30।

श्रोताओ, आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी का प्रसारण समय आज रहेगा शाम 7:30 से। सुनना ना भूलिए, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं श्रोताओं आज का सुविचार। इसे भेजने वाले हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला जी। लिखते हैं,
2: सत्य की राह भले कठिन हो लेकिन मंजिल हमेशा उजाले तक पहुंचाती है। झूठ कुछ पल चमक सकता है पर सत्य सदा सम्मान और विश्वास दिलाता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके द्वारा भेजे गए संदेश। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत और गुरकीरत राहुल के साथ गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: तहसील ठियोग जिला शिमला से सूरज चौहान जी
1: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला जी ने लिखा है, आज उमंग कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के जीवन, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति से जुड़ी अत्यंत रोचक, प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने का अवसर मिला।
2: ये भी जानिए, मैं ये जानकर गर्व हुआ कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे ओजस्वी पुकार और जय हिंद जैसे अमर राष्ट्रनाद को जन जन तक पहुंचाने में नेताजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
1: उनका अदम्य साहस, अटूट देश प्रेम और बलिदान आज भी प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए अजीत जी और विमलेश जी और

0: कार्यक्रम की पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। लिखा है, आपकी संपूर्ण टीम को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने वाले कार्यक्रम के निर्माण हेतु हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देश सेवा सर्वोपरि के सिद्धांत को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से श्रेष्ठ साबित करने वाला प्रेरक प्रसंग सुनकर मन गदगद होकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। आपको हार्दिक आभार और धन्यवाद।
1: आपको भी हार्दिक आभार संदेश भेजने के लिए। ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं, इस बार भी करेंगे कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, इस सप्ताह पिछले दो दिनों में हमने बात की भारत के दो अनोखे गांवों की। आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं एक और रोचक गांव की जानकारी। तो बिमलेश जी, आज अपनी ज्ञान यात्रा में हम कहाँ चल रहे हैं?
1: अजीत जी, चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्य की ओर और चलते हैं एक गांव में जहां मानो बारिश रुकना ही भूल गई हो।
0: क्या बात है, जहां मानो बारिश रुकना ही भूल गई हो। अच्छा, ऐसा भी कोई गांव है? कोई मजाक कर रहे हैं आप?
1: नहीं नहीं अजीत जी, बिल्कुल सच। ये वो जगह है जहाँ के छाते भी कहते हैं वर्षा रानी कभी तो रुको।
0: क्या बात है, वर्षा रानी कभी तो रुको।
1: जी चलिए, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछते हूँ, बताइए ये कौन सी जगह है?
0: अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कि वर्षा भी रुकना भूल जाती है तो मुझे याद आ गया, वो जगह है मौसिन राम, ये मेघालय राज्य में है।
1: बिल्कुल सही जवाब। अच्छा तो जरा श्रोताओं को ये तो बता दें कि कितनी बारिश होती है वहाँ।
0: विमलेश जी, यदि यूं ही बता दूं ना कि वहाँ की औसत सालाना बारिश कितनी होती है तो जानकारी में वो मजा नहीं आएगा
1: जी।
0: तो पहले मैं बताता हूँ कि भारत के कुछ और शहरों में बारिश कितनी होती है
1: जी।
0: जैसे दिल्ली की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 650 मिलीलीटर,
1: चेन्नई की लगभग 1400 मिलीमीटर और मुंबई की लगभग 2200 मिलीमीटर।
0: और यदि कोलकाता की बात करें तो ये लगभग 1600 मिलीमीटर है। तो अब सुनिए कि मौसिन राम मेघालय की औसत सालाना वर्षा कितनी है
1: जी।
0: तो यहाँ की सालाना औसत वर्षा है 11900 से लेकर 12000 मिलीमीटर तक, यानी यदि इसे मीटर में मापे तो औसत सालाना बारिश लगभग 12 मीटर के आसपास है।
1: 12 मीटर यानी अगर इतना बारिश का पानी जमा हो जाए तो 4 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर होगा
0: जी। जी तो बिमलेश जी, अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि चेन्नई, मुंबई और अन्य शहरों की अपेक्षा यहाँ बारिश कितनी होती है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि यहाँ पर 1200 मिलीमीटर की बात हम कर रहे हैं। तो आपने ठीक कहा, 12 मीटर यानी इतना पानी यदि जमा हो जाए तो 4 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर होगा। हालांकि इतना पानी वहाँ जमीन पर लगातार जमा नहीं रहता, लेकिन जरा सोचिए बिमलेश जी, आसमान से हर साल करीब 12 मीटर यानी 39 कह लीजिए या तो 40 फीट पानी बरसता है।
1: आपने बड़ी अच्छी तरह से इसकी तुलना की है, अब समझ में आया कि कितना पानी वहाँ बरसता है। तो अब एक और मजेदार सवाल, वहाँ के लोग सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते होंगे, चाय या मौसम का हाल?
0: शायद दोनों ही, लेकिन उनके लिए बारिश कोई खास घटना नहीं है, ये तो उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा है
1: जी। अब कुछ और मजेदार बातें जानते हैं अजीत जी, वहाँ अनाज का भंडारण और कपड़ों को सुखाना तो बहुत बड़ी समस्या होगी, वहाँ ये काम कैसे होते हैं?
0: विमलेश जी, बड़ा अच्छा और उपयोगी प्रश्न आपने पूछा। वहाँ कपड़ों को सुखाने के लिए पारंपरिक रूप से टिन या लोहे की पेटियाँ होती
1: जी,
0: जिन्हें आग जलाकर गर्म रखा जाता है। भीगे कपड़े उन्हीं गर्म पेटियों में सूखते रहते हैं।
1: और अनाज का भंडारण वे धान के पुरालों या पुआलों में रखकर करते होंगे, ये उनके पारंपरिक तरीके हैं
0: जी।
1: तो जी जी, अब बात करते हैं उनके घरों की। घरों को भी भारी बारिश को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। उस इलाके में बहुत से ऐसे घर मिल जाएंगे जो बांस के खम्भों पर टिके हुए हैं। वहाँ रास्तों पर पानी, फिसलन और कभी कभी भूस्खलन भी बहुत बड़ी चुनौती है। बता दें कि खासी जनजाति का मुख्य भोजन चावल है और जादू यहाँ का पारंपरिक व्यंजन है।
0: इंग्लिश जी, मन में एक सवाल और आता है कि वहाँ बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे?
1: अजीत जी, ऐसा नहीं है कि वहाँ बारिश के कारण स्कूल बंद रहते हैं। भूस्खलन और तेज तूफानों के समय विशेष सावधानी बरती जाती है, लेकिन वहाँ बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाते हैं। दिल्ली और NCER शहरों में स्कूल जाते समय बच्चे सोचते हैं आज बारिश होगी तो क्या होगा, जबकि
0: मौसिन राम में बच्चे सोचते होंगे आज कितनी बारिश होगी। विमलेश, इतनी बारिश के बाद वहाँ की प्रकृति कैसी होगी?
1: अद्भुत, चारों तरफ हरियाली, पहाड़, झरने, धुंध और गुफाएं। मानव प्रकृति ने खुद

0: को हरे रंग में रंग दिया हो। एक बात और, वहाँ लगातार होने वाली बारिश के कारण सामान्य पुल बहुत अधिक नहीं टिकते, इसलिए उस क्षेत्र और मेघालय राज्य में पेड़ों की जड़ों से भी पुल बनाए जाते हैं।
1: जी हाँ, इन्हें लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है। यहाँ पेड़ों की जीवित जड़ों को वर्षों तक दिशा देकर मजबूत पुल का रूप दिया जाता है। ये पुल कभी नहीं टूटते
0: जी।
1: यानी विमलेश जी, सब कुछ सुनकर ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग प्रकृति को हराने की कोशिश नहीं करते।
0: जी बिल्कुल सही कहा अजीत जी, वे प्रकृति के साथ जीना सीखते हैं। तो अजीत जी, मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स का ये गांव मौसिनराम हमें क्या सिखाता है?
1: विमलेश जी, ये गांव हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, मनुष्य उनके साथ तालमेल बनाकर जीवन को सुंदर बना सकता है।
0: जी अजीत जी, मेरे मन में एक खूबसूरत वाक्य आ रहा है।
1: भला वो क्या?
0: बारिश कितनी भी हो, जीवन में उमंग की धूप बनी रहनी चाहिए।
1: वाह क्या बात है, बारिश कितनी भी हो,
0: जीवन में उमंग की धूप बनी रहनी चाहिए।
1: जी जी, ये बात है। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी भारत के एक और गांव मौसिनराम के बारे में। ये गांव तो है ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, हमारा प्रश्न है, मौसिनराम और मेघालय खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मौसिनराम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है?
1: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और यदि आपको NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
1: जी, पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF टाइप करें।
0: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो YouTube पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल, विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएंगे।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सबसे पहला हमारा आज का कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में विस्तार से बताया गया है और विशेषकर इसके बनने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई है।
1: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
3: नाना जी, नाना जी।
4: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ आओ, कैसी रही चौपाल?
3: ठीक रही नाना जी, आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
5: बहुत गर्मी पड़ रही है, कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है।
6: नाना जी, इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
3: हाँ हाँ बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
4: बेटा मैं भूगोल पढ़ाता था।
5: ये लो, नानी जी भी आ गई।
7: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
4: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
7: हाँ वो तो है।
3: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
7: अच्छा तो ये बात है, तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
4: अच्छा चलो भाई चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
3: कहाँ से आया है
4: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
3: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
4: बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई, मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
5: पूरी दुनिया में नहीं होता तो फिर?
4: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
3: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
4: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है, ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
3: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
4: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है, वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
3: अच्छा नाना जी।
4: क्योंकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
3: अच्छा।
4: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
3: अब समझ में आया। नाना जी, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
4: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
7: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
4: हाँ।
7: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है।
3: ओ।
7: हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
4: बिल्कुल।
7: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
3: अच्छा।
7: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
3: अच्छी अर्थव्यवस्था।
7: हाँ।
4: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
5: वो कैसे?
7: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है।
3: ओ।
7: अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रानंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
4: भाई, इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए?
5: जी नाना जी।
3: और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
5: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम तुलसी गौड़ा जंगल की इंसाइक्लोपीडिया।
0: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण जनजातीय कार्यकर्त्री तुलसी गौड़ा के जीवन और पर्यावरण संरक्षण में उनकी अहम भूमिका के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
8: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
9: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती।
10: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शीज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा।
8: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
10: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है।
1: ये आकाशवाणी है।

0: प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
0: ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
2: आठ नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं।

0: तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो दो दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए। हाँ।
1: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
0: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
1: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
0: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
0: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
1: अच्छा,
0: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
1: अरे, ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
0: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
2: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
0: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
2: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थीं, वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थीं। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थीं कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
3: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
2: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है, वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
0: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
4: अच्छा।
0: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
4: अच्छा।
0: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
4: अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
0: हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है। ठीक है ना?
4: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत धन्यवाद।
2: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
3: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
5: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम तुलसी गौड़ा जंगल की इंसाइक्लोपीडिया। हमें आशा है कि हमारे आज के कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आए होंगे। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
6: चेतना,
5: जगबंधु
6: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग,
8: उमंग, उमंग। ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। और आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शीला वर्मा और साथियों के स्वर में कुछ उन्हीं के गाए हुए गीत। आइए सुनें।

शीला वर्मा को आप सुन रहे हैं सुगम संगीत में। जो रचना भी आपने सुनी उसे लिखा खुर्शी अजय ने और संगीत स्वयं शीला वर्मा का था। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में ये अगला गीत जिसे लिखा है भीष्म सिंह चौहान ने।

शीला वर्मा के स्वर में आइए सुनते हैं सुगम संगीत की ये अंतिम रचना, जिसे लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने।

शीला वर्मा को अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत में। उनकी सभी रचनाओं में तबले पर साथ दिया उल्लास राजहंस ने और वायलिन पर थे सप्पू खां। सुगम संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से किया गया।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं लोक संगीत। लोक संगीत में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं निमाड़ी लोकगीत। गायक कलाकार हैं बाबूलाल चंपालाल मंसारे और उनकी मंडली। आइए सुने।
1: लियो जी भक्त

लोक संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बाबूलाल चंपालाल मंसारे और मंडली के स्वर में निमाड़ी लोकगीत। लोक संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से किया गया मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब से कुछ ही पलों में समाचार होंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार अभी तक 30 से अधिक देशों के 1300 से अधिक नागरिक लापता हैं। इनमें 288 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। प्रवक्ता ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गए 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है। चीन में फंसे भारतीय नागरिकों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि पेचिंग में भारतीय दूतावास उनकी सुरक्षित निकासी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के साथ देश का संबंध सदैव राष्ट्रहित के अनुरूप होना चाहिए। राष्ट्रपति भवन में आज भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में राष्ट्रपति ने ये बात कही। उन्होंने राजनयिकों से विदेश निवेश, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों पर नजर रखने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी श्रृंखला के युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है।
1: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटीज इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
0: सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रूपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मुकाबला ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन पर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।
3: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह इंदौर केंद्र है। श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारे कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

कल सुबह सभा की शुरुआत करेंगे भक्ति संगीत के प्रातःकालीन आयोजन वंदना से सुबह 6:05 पर। 6:30 पर लेकर आएंगे चिंतन। प्रतिस्पर्धा के युग में मानसिक संतुलन आलेख नीरज सालवी का होगा और वाचक स्वर आसिफ अली का। खेती की बातें करेंगे डॉक्टर के एस किरार से। विषय होगा बारिश में सब्जियों की नर्सरी कैसे तैयार करें। प्रसारण समय सुबह 6:35 और सुबह 6:40 पर कल आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान के प्रसंग।

सुबह 7:20 का समय रहेगा इंदौर परिक्रमा का। प्रस्तुति मुकाम सिंह चौहान की होगी। सुबह 7:35 पर लेकर आएंगे सदाबहार फिल्म संगीत सुनहरे पल।

सुबह 8:30 पर मेज सजेगी और होगी कवि गोष्ठी। शिरकत करेंगे सुंदरलाल जोशी, दिनेश दबे, कैलाश सोनी, हरचरण सिंह चावला, और आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर कविताएं और रचनाएं। सुबह 9 बजे सुनेंगे आप लोक संगीत के अंतर्गत हीरा सिंह बोरलिया और साथियों के स्वर में लोक

गीत और सुगम संगीत में नागेश्वर गाथा को आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:15 पर। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत कल हम आपको सुनवाएंगे श्री वज्रलहवर का गाया राग बसंत मुखारी सुबह 9:30 पर। जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से करेंगे सुबह 10:00। फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से सुबह 10:05 पर। और फोन इन कार्यक्रम फोन करे गीत सुनने का अनुप्रसारण आकाशवाणी की भोपाल केंद्र से होगा सुबह 11:00। महिला कार्यक्रम के अंतर्गत कल दोपहर 1:00 आपको सुनवाएंगे रक्षाबंधन पर्व पर परिवार में भावनात्मक जुड़ाव जरूरी है, इस विषय पर कुछ चर्चाएं। योजनाओं के बारे में जानेंगे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संदर्भ में आधुनिक समाज में रक्षाबंधन का बदलना स्वरूप, इस विषय पर जानकारियां होंगी और कुछ हेल्थ टिप्स के साथ साथ ये कार्यक्रम आप दोपहर 1:00 सुन पाएंगे। शाम की सभाओं में यूथ प्रोग्राम युववाणी का प्रसारण समय शाम 5:00 रहेगा। दिल ने फिर याद किया ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:15 पर। चित्र गीत का प्रसारण समय रहेगा रात 9:15 पर। तो श्रोताओं, ये थी हमारे कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। और अब से कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचारों को हम आकाशवाणी के दिल्ली हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से संवाद, खेलों को विकसित भारत की ताकत बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर में T-72 और T-90 टैंकों के ओवरहॉल की नई सुविधा का भूमि पूजन किया। ओंकारेश्वर में पंचायतन मंदिर का शिलान्यास, एकात्म धाम बनेगा आध्यात्मिक केंद्र। और भारत ने श्रीलंका से टेस्ट सीरीज 1-0 से जीती, दूसरा टेस्ट हुआ ड्रॉ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम के जरिए देशभर के युवाओं से वर्चुअली संवाद किया। उन्होंने महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए कहा कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं बल्कि विकसित भारत की ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को ओलंपिक के ज्यादा से ज्यादा खेलों में भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है और जिलों से नई खेल प्रतिभाएं तलाशनी होंगी।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: वहीं इस मौके पर प्रदेश के 110 से ज्यादा महाविद्यालयों में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भोपाल में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खेलों को सिर्फ पदक जीतने तक सीमित नहीं रखा जा रहा है बल्कि इसे युवा सशक्तिकरण और विकसित भारत 2047 से भी जोड़ा जा रहा है। वहीं इस अवसर पर मंडला, रायसेन, छतरपुर, बालाघाट, मुरैना, दतिया, छिंदवाड़ा, अशोकनगर, बड़वानी और देवास सहित प्रदेश के सभी जिलों में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय स्तर पर युवा खिलाड़ियों ने आकाशवाणी के साथ देश और प्रदेश के बदलते खेल परिदृश्य पर अपने अनुभव साझा किए। जबलपुर में आज T-72 और T-90 टैंकों के ओवरहॉल की नई सुविधा का भूमि पूजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में करीब 472 करोड़ रुपए की इस परियोजना की शुरुआत की। यहां हर साल 80 टैंकों की जांच, बड़ी मरम्मत और तकनीकी अपग्रेड किया जा सकेगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत से देश के रक्षा उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 में करीब 46,000 करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन अब बढ़कर 1,80,000 करोड़ और रक्षा निर्यात 1,000 करोड़ से बढ़कर करीब 39,000 करोड़ का हो गया है। उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी भारत की बढ़ती तकनीकी और औद्योगिक क्षमता को दिखाती है।
2: डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की मजबूत नींव रख रहा है। इन सब अचीवमेंट्स के लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पूरी टीम को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। यह प्रोजेक्ट हमारे उन सैनिकों के लिए एक वरदान सिद्ध होगी जो इन टैंक्स के सहारे दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, यह प्रोजेक्ट जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय लोग, हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे नौजवान, हमारे छोटे उद्यमी के जीवन में
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 29 अगस्त को बालाघाट में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान में शामिल होंगे। रक्षाबंधन के अवकाश के कारण इस बार शनिवार को पूरे प्रदेश में जनविश्वास अभियान आयोजित किया जाएगा। बालाघाट में मुख्यमंत्री जिला स्तरीय समाधान ऑनलाइन में चिन्हित शिकायतकर्ताओं से सीधे उनकी समस्याएं सुनेंगे। इसके साथ ही बैठक और समीक्षा के अलावा मीडिया संवाद तथा उद्योग संवाद भी होगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज ओंकारेश्वर के एकात्म धाम में भव्य पंचायतन मंदिर का शिलान्यास किया। उन्होंने संतों के साथ 45 पवित्र शिलाओं का पूजन कर मंदिर निर्माण की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि एकात्म धाम सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान, आध्यात्मिकता और संस्कृति का बड़ा केंद्र बनेगा।
4: एकात्म धाम में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा जो पंचायतन पूजा पद्धति, जिसके कारण से हमारे समाज की विविधता की व्यवस्था थी, उसमें एक ऐसे कठिन काल में, ये वाकई वो कठिन काल भी था, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरे समूचे भारत की विविधता के बीच एकता का संदेश पंचायत पूजा पद्धति के माध्यम से जो हमने दिया है, हम सबका सौभाग्य है आज इस मानधाता पर्वत के ऊपर जब ये दिव्य धाम का आनंद आएगा।
0: रीवा जिले में भारी बारिश और नदियों के उफान के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल लगातार बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर हालात का जायजा ले रहे हैं। कल उन्होंने लक्ष्मणपुर, मैरहा टोला, लोही भटलो और कोठी सहित आसपास के गांवों में लोगों से मुलाकात कर नुकसान की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में सरकार लोगों के साथ खड़ी हुई है। उज्जैन में रक्षाबंधन का पर्व श्री महाकालेश्वर मंदिर में विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जाएगा। श्रावण पूर्णिमा पर सबसे पहले भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी अर्पित की जाएगी। पुजारी परिवार की महिलाएं करीब 1 सप्ताह से रेशमी कपड़े, रुद्राक्ष, मोरपंख और आभूषणों से यह राखी तैयार कर रही हैं। कल तड़के भस्म आरती के दौरान राखी चढ़ाई जाएगी। इसके बाद महिलाएं अपना व्रत खोलकर भाइयों को राखी बांधेंगी। वहीं रक्षाबंधन के पर्व पर अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने महिलाओं के लिए 48 घंटे मुफ्त इंटरसिटी बस यात्रा की सुविधा शुरू की है। यह सुविधा आज सुबह 6 बजे से 29 अगस्त सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। इसके तहत इंदौर से भोपाल, सागर, रतलाम, नीमच, अशोकनगर, झाबुआ और खरगोन जाने वाली बसों में महिलाएं मुफ्त सफर कर सकेंगी। इसके अलावा भोपाल से उज्जैन और गुना के बीच चलने वाली AICTSL बसों में भी यह सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी ने वर्ष 2026-27 के लिए उर्दू पांडुलिपियों के प्रकाशन और आर्थिक सहायता के लिए आवेदन पत्र मांगे हैं। प्रदेश के साहित्यकार और शायर अपनी उर्दू पांडुलिपियां 25 सितंबर तक भोपाल स्थित उर्दू अकादमी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इसके लिए पांडुलिपि के साथ प्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र देना भी जरूरी है। वहीं नशे पर प्रहार करते हुए प्रदेश पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पिछले 1 सप्ताह में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग अलग जिलों में एमडी ड्रग्स, डोडाचूरा, गांजा, स्मैक और चरस समेत करीब 5,31,00,000 रुपए की संपत्ति जब्त की है। रतलाम में करीब 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति और बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स। वहीं छिंदवाड़ा में 320 किलो से ज्यादा गांजा, पिस्टल और कारतूस समेत करीब 1,10,00,000 की संपत्ति जब्त की गई है। वहीं नीमच, उज्जैन, जबलपुर, बालाघाट, नरसिंहपुर और ग्वालियर समेत कई जिलों में भी नशे के खिलाफ कई कार्रवाइयां की गई हैं। अब बात करते हैं क्रिकेट की। श्रीलंका ने फॉलो ऑन खेलने के बाद भी भारत के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ करा लिया है। इसके साथ ही भारत ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से जीत ली। भारत ने गोल में पहला टेस्ट 165 रनों से जीता था। कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका के सोनल दिनुषा ने दोनों पारियों में शतक लगाकर शानदार प्रदर्शन किया और टेस्ट को ड्रॉ करा लिया। उनके शतक की बदौलत श्रीलंका ने दूसरी पारी में 9 विकेट पर 429 रन बनाए। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी हिस्से के 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है, जबकि 29 और 30 अगस्त को राहत मिलने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ में दुर्घटनाओं और यातायात जाम की समस्या से निपटने के लिए 25 अगस्त से 25 सितंबर तक भारी और भारवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर जिला स्तरीय एक राखी एक संकल्प एक राखी एक रिश्ता कार्यक्रम का आयोजन गुना में किया गया। वहीं रतलाम में रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप को रक्षा सूत्र बांधा। टीकमगढ़ में लगातार बारिश के कारण कलेक्टर ने हीरानगर, बावरी पुल सहित जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा के निर्देश दिए और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में आयोजित संस्कृत सप्ताह का आज समापन हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूँ धान का खेती करता हूँ। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो उससे 1 साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना भी बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, जैसा कि विदित है, हम विगत कई दिनों से आपसे अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, तो आज चर्चाओं के दौर में बातचीत करते हैं कि बरसात में, बारिश के इस खूबसूरत मौसम में कौन कौन से पौधे लगाएं। लेकिन इससे पहले आप और हम इस बरसात को पूरी तरह आनंदित होकर इसका आनंद प्राप्त करें और प्रकृति के साथ जुड़ें, इसके लिए ज़रूरी है कि मन में भी संकल्प करना आवश्यक है कि हम इस बारिश के मौसम में पौधारोपण करें, क्योंकि बरसात का मौसम आते ही चारों ओर हरियाली दिखाई देने लगती है और यही मौसम पौधारोपण के लिए भी सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, और यही आज हमारी चर्चा का विषय है। बरसात में मिट्टी में नमी पर्याप्त रहती है तो पौधों को जड़ जमाने में आसानी होती है। इस मौसम में हम नीम, पीपल, बरगद, अमलतास, गुलमोहर और करंज जैसे छायादार और पर्यावरण के लिए उपयोगी पौधे लगा सकते हैं। घर के आसपास तुलसी, गुड़हल, मोगरा, गेंदा और सदाबहार जैसे पौधे भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि बढ़ते हुए अनेकों प्रदूषणों के चलते रोग भी बढ़ते जा रहे हैं और रोगों को दूर करने का सबसे सरल उपाय है प्रकृति के साथ जुड़ना, पौधारोपण करना

0: और पौधारोपण सिर्फ हमारे स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले भविष्य में बारिश को धरती की तरफ आकर्षित करने के लिए भी है, क्योंकि जब तक पौधारोपण नहीं करेंगे, वृक्ष नहीं पनपेंगे, तो बादल आच्छादित कहाँ से होंगे, है ना। तो इस बात को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन सुनते हैं हम एक संदेश और उसके बाद सुनेंगे एक बेहद ही प्यारा सा लोकगीत।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
4: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
3: क्या, कैसे?
4: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
3: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
4: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
5: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
6: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
5: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
6: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
5: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: श्रोताओं, चर्चाओं का दौर चल रहा था और हम बात कर रहे थे हरियाली को लेकर, पौधारोपण को लेकर। और जैसा कि विदित है कि यह हरियाली उमंग और त्योहारों की खुशियों का भी मौसम है, और कल तो रक्षाबंधन है। पेड़ हमें शुद्ध हवा, छाया, फल और जीवन के लिए ज़रूरी पर्यावरण देते हैं और हमारा हरा भरा भविष्य तैयार भी करते हैं। तो श्रोताओं, इस रक्षाबंधन पर अपनी बहन या भाई को राखी बांधने के साथ साथ एक पौधे को भी राखी बांधिए। वादा करें स्वयं से कि जिस तरह हम अपने रिश्तों की रक्षा करते हैं, उसी तरह प्रकृति की भी रक्षा करेंगे। इस रक्षाबंधन, एक राखी रिश्तों के नाम और एक राखी हरियाली के नाम, आइए मिलकर प्रकृति से अपना रिश्ता मजबूत करें।

0: तो श्रोताओं, हरियाली और रक्षाबंधन के पर्व के इस चर्चा के साथ ही अब लेते हैं इस समय आपसे विदा। फिर कल किसी और चर्चा के साथ हाजिर होंगे। ये चर्चा आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मीडिया वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब से कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैया बहनों को, सभी श्रोताओं को मनोज भैया की दो ही हाथ जोड़े की राम राम पहुंच जाए। और भैया का कैसे हाल चाल है? सावन को महीना चल रहा है, कहीं तेज तो कहीं झमाझम बरसात हो रही है। मनो खेती को काम कहाँ रुकत है? मौसम कैसो ही होए, हालात कैसे ही होए, किसानी के काम कहाँ रुके हैं? यही मारे तो कहते हैं बड़ी बज्जुर है छाती किसान की, खबर नहीं रहे जान की। भैया हरो, मनो आजकल सरकार ने इतनी अच्छी सुविधाएं, इतनी अच्छी योजनाएं दे दी हैं कि किसानी अब आसान हो गई है और फायदे की भी हो गई है। भैया हरो, अगर साचों कहें तो किसानी केवल अनाज उत्पादन तक नहीं है, आज बदलते टेम के साथ साथ खेती के नए नए आयाम सामने आ गए हैं। सब्जी, फल, फूल, मसाले, औषधि और सुगंधित पौधा, उद्यानिकी की जिस सबरी फसलें कम क्षेत्र में ज्यादा

0: से ज्यादा पैदावार और आय दे सकते हैं। और हाँ, इतना ही नहीं, इन फसलों से जुड़ी और भी गतिविधियां हैं जो खेती से आगे बढ़ के हमें प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, वितरण और मूल्य संवर्धन तक रोजगार और स्वरोजगार के कई रास्ता खोल देते हैं। तो चलो, आज हम आपको एक ऐसी बातचीत सुनवा रहे हैं जिसको सुन के आप जान पे हो कि उद्यान की फसलों से किसानों और शिक्षित बेरोजगारों के लाने स्वरोजगार के अवसर कैसे मिल सकते हैं। जो बतकाव करो है उद्यान की विभाग भोपाल के अधिकारियों और लाभार्थियों से अंशु तेलेठे बहन ने सुना थे।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम उद्यानिकी विषय पर और सरकार द्वारा संचालित कौन कौन सी योजनाएं हैं इस विषय में विस्तृत बातचीत करने के लिए आए हैं उद्यानिकी विभाग भोपाल, जिसमें हमने बात करी है सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग श्री राजकुमार सगर जी से। हम जानना चाहेंगे सर, सबसे पहले आपसे कि शिक्षित बेरोजगार और किसानों के लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं।
2: नमस्कार किसान भाइयों, विभाग द्वारा शिक्षित बेरोजगार एवं किसानों के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें मुख्यतः किसानों के लिए जो योजनाएं हैं वो क्षेत्र विस्तार की रहती हैं, जिसमें किसानों को फल बगीचा लगाना, सब्जियों की खेती करना, फूलों की खेती है, मसाले की खेती है, सुगंधित फूलों की खेती है, इस तरह की स्कीमों पर विभाग खेती करने पर अनुदान प्रदान करते हैं, साथ ही बीज, खाद, दवाई एवं तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं। इसके बाद बात आती है संरक्षित खेती की, तो संरक्षित खेती जिसमें पॉली हाउस, सैडनेट हाउस, ड्रिप मल्चिंग आती हैं, इसमें कम जगह में वर्टिकली खेती करके ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। और शिक्षित बेरोजगार किसान न होके व्यक्ति हो सकता है जिसको जमीन की जरूरत नहीं है, उसमें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना है, जिसमें ऐसे पढ़े लिखे बेरोजगार हैं जो अपना स्वयं का कोई बिजनेस करना चाहते हैं
1: जी।
2: उसमें लिमिट है 30 लाख रुपए तक का मशीन उसमें लगा सकते हैं और 35% अनुदान, अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। इसमें आवश्यकता यह है कि फूड प्रोसेसिंग का ही काम करना होगा, अनाज से संबंधित हो, मसाले से संबंधित हो, फूलों से संबंधित हो या सब्जियों का हो, सब्जियों का है आपका, फलों का है, जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, उसमें शासन इसमें अनुदान, साथ ही बैंक लोन में 3% तक का सब्सिडी भी उपलब्ध करवाती है। और एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है, हर साल जिस उसमें आप लॉगिन करके आप देख सकते हैं कि आप किस योजना में पात्र हैं। उस योजना में केवल आपको योजना ही जोड़नी होगी, आपको द्वारा पंजीयन इसमें नहीं करना होगा और आपको ऑनलाइन ही आपको आशय पत्र, ऑनलाइन ही सब्सिडी इसमें उपलब्ध हो जाएगी।
1: इसके लिए सर, जैसा आपने बताया कि क्या हमारे किसान भाई या शिक्षित बेरोजगार स्वयं का अपना व्यवसाय दुकानों के रूप में या किस तरह से संचालित कर सकते हैं।
2: जो मैंने PMFME योजना के बारे में बताया, ये स्कीम बहुत अच्छी है भारत सरकार की, जो पिछले 5 सालों से संचालित है। पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए एक अच्छी सुविधा है कि आपको किसी CA से इसकी रिपोर्ट नहीं बनवानी है, विभाग ने डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन की व्यवस्था करी है जो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेगा, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपके फोटो हो गए, आपकी डिटेल, जमीन जहाँ पे आप दुकान करना चाहते हैं, आपके सारे कोटेशन वगैरह लेगा और उसकी एक DPR तैयार करके ऑनलाइन ही प्रोसेस करेगा और बैंक के लिए भी आपसे बात करेगा, बैंक में भी आपको सहयोग करेगा और साथ ही मशीन लगाने में भी सहयोग करेगा। और बाद में जो आपको अन्य पंजीयन की जरूरत होती है, जिस तरह से FSSAI का रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपको फूड लाइसेंस लेना है, साथ में आपको जो भी इनकम टैक्स वगैरह के लिए जो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने होते हैं वो भी करवाएंगे। और इसके एवज में संबंधित आवेदनकर्ता को इसमें कोई राशि नहीं देनी है, शासन उनको उसमें मदद करेगा, पैसा देगा।
1: संरक्षित खेती के विषय में आपने जिक्र किया, तो इसके अंतर्गत मल्चिंग, नेट हाउस और पॉली हाउस
2: जी,
1: इसका थोड़ा विस्तार से हमारे किसान भाइयों को जानकारी दीजिए।
2: संरक्षित खेती आज के समय की मांग है, क्योंकि कम जगह में अधिक उत्पादन और बेमौसम समय अधिक अच्छा उत्पादन के लिए संरक्षित खेती बहुत अच्छा है। एक सबसे पहले होता है संरक्षित खेती में ड्रिप और मल्चिंग, मल्चिंग में 20,000 रुपए तक का अनुदान देते हैं इसमें। तो नेट हाउस क्या होता है कि नेट का एक स्ट्रक्चर होता है जो आयरन के जो पाइप होते हैं उनसे बना होता है, जो इसमें क्या होता है प्रति वर्ग मीटर 710 रुपए की इसमें लागत है, जिसका 50% 355 रुपए पर प्रति वर्ग मीटर का अनुदान होता है। इसके बाद आता है पॉली हाउस। पॉली हाउस पूर्णतः कंट्रोल कंडीशन में किया जाता है, खेती करने के लिए लगाया जाता है। इसमें जो हमारा छोटे किसानों के लिए है वो 1000 रुपए वर्ग मीटर लागत का 50% है, और जो बड़े हैं जो मतलब 4000 वर्ग मीटर का लगा रहे हैं वो 950 रुपए यानी 475 रुपए पर वर्ग मीटर के हिसाब से इनमें अनुदान रहता है। जो पॉली हाउस हैं उसमें मुख्यतः ऐसी फसलें लगाई जाती हैं जो एक बार लगाने पर 4 से 5 साल तक चलती हैं, जैसे जरबेरा हो गया, गुलाब हो गया, इस तरह की खेती इसमें करते हैं। इसमें स्ट्रक्चर के बाद हम सब्जियां लगाने के लिए और फूल लगाने के लिए भी इसमें अनुदान देते हैं, उसमें 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसमें 50% अनुदान है, और जो फूलों की खेती करते हैं उसको 450 रुपये प्रति वर्ग मीटर और उसका 50% तक का अनुदान होता है। ये अनुदान मिलाकर लगभग अगर पॉली हाउस में जोड़ें तो 4000 पे 20 लाख तक का अनुदान है, और आपका सब फूलों में जोड़ें तो इसमें 10 से 12 लाख रुपए तक का अनुदान है।
1: जी सर, अभी हम देखते हैं कि बेमौसम हमें सारी सब्जियां उपलब्ध होती हैं बाजार में, तो निश्चित ही हमें इसका स्टोरेज करना पड़ता है, तो इस विषय में आप हमारे किसान भाइयों को और हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देना चाहेंगे?
2: दो तरीके हैं, एक तो इसमें शासन दो तरीके करता है, एक तो आप जो फसल आप तोड़ें,
1: जी
2: तोड़ने के बाद उसको उसकी सेल्फ लाइफ ज्यादा बढ़े इसके लिए हम पैक हाउस का निर्माण के लिए शासन अनुदान देता है। इसमें पैक हाउस का उद्देश्य ये है कि ये आप जो फसल किसान तोड़ेगा उसको तत्काल नॉर्मल टेम्परेचर पर लाके उसको रखेगा तो उसको जो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ेगी वो ज्यादा देर तक रह पाएगा आपका फ्रेश, और उसके बाद उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमारे पास रेफ्रिजरेटर वैन है तो उसमें भी 35% तक का अनुदान है, और उसके बाद कोल्ड स्टोरेज है उसमें 35% तक का अनुदान है। इसके बाद जो आप प्राकृतिक तरीके से उसको पकाने की बात कर रहे थे तो उसमें एक राइपनिंग चैम्बर करके जिसमें क्या होता है कि इथिलीन गैस का उपयोग करके जो प्राकृतिक रूप से फसलों को फलों को पकाने का काम करते हैं उसमें अनुदान का इसमें दिया जाता है। तो जो व्यापारी भाई हैं जो मंडियों के पास इनके पास ज़मीनें हैं या बाजार में ज़मीन है तो वो कोल्ड स्टोरेज और राइपनिंग चैम्बर का काम इसमें कर सकते हैं और अच्छी आय कमा सकते हैं।
3: अभी हमने सुना सहायक संचालक श्री राजकुमार सागर जी को।
1: उद्यानिकी फसलों से किसानों एवं शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार के अवसर, इस विषय पर हमने उद्यान विकास अधिकारी LC भकोरिया जी से बातचीत की, जिसके अंश हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो हमारा आपसे यही है कि हमारे किसान भाई जो पारंपरिक खेती करते हैं उनको उद्यानिकी विभाग क्या सहयोग करता है?
4: पारंपरिक खेती के साथ साथ यदि आप उद्यान की फसलें लगाते हैं तो अपनी आय को दोगुना नहीं चार गुना कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये मौसम बरसात का है, आप हमारे विभाग से ऑनलाइन पंजीयन के माध्यम से आपको सबसे पहले उद्यान की विभाग की योजना का लाभ लेना है तो आपको पहले पंजीयन करना होगा MPF STS पर। आप पंजीयन करने के पश्चात उद्यान की विभाग से जो फल क्षेत्र विस्तार योजना है उस योजना से पंजीयन को जोड़ना पड़ेगा। जब आप उसको जोड़ देंगे तो हमारे विभाग से एक आपको आश्रय पत्र जारी होगा। उस आश्रय पत्र जारी होने के पश्चात यदि किसान भाई अमरूद का बगीचा लगाता है और स्वयं के वे पर लगाता है तो किसान भाई 1 हेक्टर में 555 अमरूद के पौधे लगाएंगे, और लगाने के पश्चात विभाग से उनको जो सहायता राशि मिलेगी उसके लिए किसान को 95% पौधे जिंदा रखना होगा। तो विभाग 1,80,000 रुपए 2 वर्षों में हम किसान भाई को उसकी सहायता राशि देंगे। इस प्रकार का बगीचा लगा के अपनी उद्यान की फसलों के अंतर्गत जो जगह खाली होती है उस खाली जगह में अंतर्वर्षीय फसल जैसे सब्जी
1: जी,
4: फूलों की खेती
1: जी,
4: इस प्रकार की खेती लगाकर हमारा किसान डेली पैसा कमाकर आत्मनिर्भर बनेगा।
1: सर, जैसे आपने कहा कि बगीचा लगाए हमारे किसान भाई, तो सर एक समस्या किसान भाइयों को देखने को मिलती है कि अपन ने फल का बगीचा लगाया मान लीजिए, तो फिर उसका उपज फल हमको एक दो साल बाद प्राप्त होगा, है ना, जो जिसकी सीमा

0: जी,
1: तो उस बीच हमारा किसान भाई क्या करे?
0: बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैडम आपने
1: जी,
0: कि हमारा किसान भाई यदि बगीचा लगा लेता है जो बीज की जो जगह बचती है, तो मैंने आपको बताया है कि विभाग की तरफ से योजना है हमारे यहाँ, सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना भी है और पुष्प क्षेत्र विस्तार योजना है
1: जी।
0: हमारे किसान भाई यदि बगीचा लगाता है खाली जगह में, उसको हम बोलते हैं अंतरवर्षीय फसल
1: जी।
0: सब्जी क्षेत्र विस्तार में सब्जी लगा सकते हैं, फूलों पे आए तो हमारा किसान भाई गेंदा लगा सकता है। इस प्रकार की फसल लगा के हमारा किसान भाई डेली पैसा कमा के आत्मनिर्भर बनेगा और अपनी आय को दोगुना नहीं चार गुना करेगा। इसके पश्चात 2 साल बाद हमारे किसान भाई की जो फसल आएगी उससे वो अच्छी आय प्राप्त कर सकता है। हमारे किसान भाई यदि अमरूद का बगीचा लगा के फसल जो आती है, जब उसको अच्छा पैसा मिले तो मार्केट में हम उसको बेच सकते हैं, और जब अमरूद का रेट कम होगा तो हमारा किसान भाई खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाकर उस पर भी हमारे किसान भाइयों को सहायता राशि है। इस खाद्य प्रसंस्करण यूनिट पर उनको जैसे लोन वगैरह लेता है बैंक से, तो हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन विभाग से नियुक्त किए गए हैं भाई। उनकी DPR बनाएंगे, कौन कौन सी मशीन उसमें लेंगी वो भी हम उसको प्रोवाइड कराएंगे और उनका एक खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाएंगे। उस पर 35% अनुदान है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से उनको 3% ब्याज दर में छूट भी है। इस प्रकार किसान भाई को इसमें 10% अपनी मार्जिन मनी लगाना होगी और PMAP योजना पर किसान भाइयों को 3% ब्याज दर में छूट भी है। हमारा किसान भाई यदि इस प्रकार का खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाकर, जैसे अमरूद के बारे में बात बताई है मैंने, तो जब अमरूद हमारा सस्ता होता है तो मार्केट से अमरूद को खरीद लेंगे, जो 1-2 रुपए किलो बिकता है, 3 रुपए किलो बिकता है, उससे हम क्या करेगा किसान भाई, जैम है, जूस है, जेली है, इस प्रकार के प्रोडक्ट बना के हम उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं
1: जी।
0: और एक समय उसको रख के मार्केट में उसको बेच के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस प्रकार से हमारा किसान भाई उद्यमी बनेगा, इस प्रकार की योजना का लाभ हमारा किसान भाई लेके आत्मनिर्भर हो।
1: उद्यान की विभाग द्वारा बरसात के मौसम में पेड़ पौधों को क्या सहायता राशि दी जाती है?
0: हमारे किसान भाई ने जो बगीचा लगाया, बगीचा लगाने के पश्चात यदि विभाग से हमारा किसान भाई पौधे लेगा, तो किसान भाई उस पौधे की अनुरक्षण राशि जो होती है, अनुरक्षण राशि हमारे किसान भाई को DBT के माध्यम से उनके खातों में दी जाएगी। और यदि किसान भाई विभाग से पौधे लेंगे कि अपने खेत में लगाते हैं, यदि हमारा किसान भाई 95% पौधे जीवित रखते हैं, तो उनके लिए जो सहायता राशि है 2 किस्तों में 2 ईयर में उनको दी जाती है 1,80,000 रूपए। तो किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरा 1 एकड़ में आप पॉली हाउस लगाइए, आप 1/2 एकड़ में पॉली हाउस लगाइए, इसकी जो इकाई लागत है वो है 1,000 रूपए प्रति स्क्वायर मीटर। इसका 50% अनुदान हम किसान भाइयों को देते हैं और साथ में प्लांटिंग मटेरियल का भी अनुदान किसान भाइयों को देते हैं। तो किसान भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है खेती का परिवर्तन का, तो हमारे किसान भाइयों को अब हाईटेक संरक्षित खेती पे जाना होगा, अपनी आय को दोगुना नहीं चार गुना करें, आत्मनिर्भर बने और अपने सपनों को पूरा करें। धन्यवाद।
2: अभी हमने विकास खंड अधिकारी भकोरिया जी को सुना।
3: क्या बात है भैया, इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हमने आज जब बातचीत में सुनी है, और हम सोच रहे हैं कि जो हितग्राही जनों से हमारी अंशु बहन ने बात करी है, वहाँ हम आपको थोड़ी देर बाद सुने हैं। पहले एक गीत सुन लेते हैं, थोड़ा मनोरंजन भी तो हो जाए। भैया बुंदेलखंड में सावन के महीना में ढेर सारे गीत गाए जाते हैं, जैसे कजरी, सेहरा, झूला। इतने सब गीतों के बीच में एक गीत और बुंदेलखंड में गाओ जाते हैं, वो खास सावन के महीना में गाओ जाते हैं, बुंदेलखंड की वीर भूमि के वीरों की गाथा आल्हा, है ना। आज हम आपके लाने एक आल्हा सुनवा रहे हैं, गाओ है हरचरण सिंह नरवरिया और साथियों ने, आनंद लेते हैं।
4: सुमरन करके रामचंद्र को और ले बज

0: भैया अब आपने हरचरण सिंह नरवरिया और साथियों के सुरों में आपने जो आला गीत सुनो, अब हम आपके लाने फिर ले चलते हैं भाई। जहां हम बात कर रहे थे उद्यानिकी फसलों से किसानों एवं शिक्षित बेरोजगारों के लाने स्वरोजगार के अवसर कैसे मिल सकते हैं, उद्यानिकी विभाग की योजनाओं को लाभ लेवे वाले कछु हितग्राहियों से अंशु बहन ने बात करी है, बावी सुनत है।
1: और हम अब चलते हैं योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की तरफ। और सबसे पहले हमने बात की पॉली हाउस में पालक का उत्पादन कर रहे श्याम सिंह कुशवाहा जी से। आइए सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी।
2: सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं 2015 से उद्यानिकी के साथ मिलकर अपने खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 2.5 एकड़ में अमरूद का बगीचा लगाया, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा प्राप्त हुआ। उसके साथ साथ मैंने 2016 में 4000 वर्ग मीटर का पॉली हाउस बनाया, जिसमें लागत 33,76,000 रुपए आई। अनुदान राशि उद्यानिकी विभाग के द्वारा 16,88,000 रुपए हमें प्राप्त हुए। मैंने सबसे पहले शिमला मिर्च लगाई, उसमें भी अच्छा मुनाफा हुआ। लेकिन मैंने बाजार की मांग को देखते हुए हमने पालक जो अच्छा मुनाफा प्राप्त हुआ। उसके साथ साथ मैंने 2016 में 4000 वर्ग मीटर का पॉली हाउस बनाया, जिसमें लागत 33,76,000 रुपए आई। अनुदान राशि उद्यानिकी विभाग के द्वारा 16,88,000 रुपए हमें प्राप्त हुए। मैंने सबसे पहले शिमला मिर्च लगाई, उसमें भी अच्छा मुनाफा हुआ। लेकिन मैंने बाजार की मांग को देखते हुए हमने पालक लगाना शुरू किया, जो कि बहुत लाभदायक फसल एवं बिना मौसम में अच्छे रेट में कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने वाली फसल है पालक। मैं करीबन 8 से 9 साल से पालक की खेती कर रहा हूँ पॉली हाउस के अंदर, जिसमें कि बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है। और मैं इसी के साथ सभी किसान भाइयों से, युवा किसानों से खास तौर से कहना चाहता हूँ कि अपनी खेती का तरीका, तकनीक चेंज करें, परिवर्तन करें और खेती को लाभ का धंधा बनाएं। उद्यानिकी के साथ जुड़कर कम जगह

0: को एक बिजनेस मॉडल की तरह काम करें, प्लानिंग के साथ काम करें और खेती से अच्छा मुनाफा प्राप्त करें। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय श्री राम।
1: अभी हमने श्याम सिंह कुशवाहा जी को सुना और उनकी सफलता की कहानी जानी। हम एक और हितग्राही किसान भाई से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से उद्यानिकी विभाग की योजनाओं का लाभ लेकर खुद को स्थापित किया। हमारे साथ हैं हेमंत कुशवाहा जी।
2: नमस्कार, मैं उद्यानिकी विभाग की योजना के तहत सब्सिडी का लाभ लेकर हमने जे नर्सरी प्लांट की शुरुआत की। हमारा उद्देश्य किसानों को अच्छी गुणवत्ता के सब्जी के पौधे उपलब्ध कराने के साथ साथ पॉलीहाउस की खेती के लिए मार्गदर्शन करते हैं। हमने 20x20 के एरिया में 5000 पौधों की शुरुआत की। इसके बाद हमने 30x90 का स्ट्रक्चर तैयार किया जिसमें लगभग 1,00,000 पौधे तैयार किए। किसानों की मांग लगातार बढ़ती गई तो हमने पॉलीहाउस की ओर कदम बढ़ाया। उद्यानिकी विभाग की योजना के माध्यम से हमें सब्सिडी का लाभ मिला और धीरे धीरे हमने अपनी नर्सरी का विस्तार लगभग 2 एकड़ तक कर लिया। धन्यवाद
1: किसान भाइयों। ये थी हमारी आज की स्थल रिकॉर्डिंग जिसका विषय था उद्यानिकी फसलों से किसानों एवं शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार के अवसर। धन्यवाद।
3: क्या बात है भैया, मजा आ गयो। जिस सब किसान भैया जो है ना, इन सब ने उद्यानिकी विभाग की योजनाओं को अपनाओ और आज लाभान्वित हो रहे हैं। ये कार्यक्रम को उद्देश्य भी जो ही है कि हम आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाएं जिन्हें अपना के आप बन सकते हैं एक सफल कृषक। भैया कार्यक्रम में हम अब आपके लाने जानकारी लेके आए हैं मंडी के भाव की। जे भाव हम आपका बता रहे हैं 25 अगस्त 2026 के, माने कल छुट्टी है थी, उससे पहले जब मंडी बंद भई तो वे भाव हम आपको लेके आए हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख मंडी इंदौर में गेहूं को अधिकतम भाव तो 3,140 रुपया प्रति क्विंटल, देसी चना को भाव तो 6,195 रुपया प्रति क्विंटल, डालर चना को भाव तो अधिकतम 9,000 रुपया प्रति क्विंटल, मक्का को अधिकतम भाव दर्ज भाव 2,572 रुपया प्रति क्विंटल, पीलो सोयाबीन को इंदौर मंडी में 6,130 रुपया प्रति क्विंटल अधिकतम भाव। वहीं उड़द की बात करें तो इंदौर मंडी में उड़द को अधिकतम भाव रहो 9,000 रुपया प्रति क्विंटल, मूंग बिकी 6,800 रुपया प्रति क्विंटल अधिकतम भाव से और मसूर को अधिकतम भाव 6,050 रुपया प्रति क्विंटल दर्ज करोगा। भैया मक्का उत्पादक किसानों के लाने एक अच्छी खबर है, एक अच्छा संकेत है कि मक्का को मध्य प्रदेश में पिछले 7 दिनों में जो औसत भाव रहो है वो सर्वाधिक 2,132 रुपया प्रति क्विंटल मध्य प्रदेश को राज्य स्तर को भाव है, जिसमें न्यूनतम भाव 1,240 रुपया, अधिकतम 2,572 रुपया प्रति क्विंटल दर्ज भाव। जहाँ में खासियत बात जा है कि पिछले 7 दिनों में 11.11% यानी 213 रुपया ऊपर बढ़ के जो भाव दर्ज भाव है, यानी आवे वाले दिनों में मक्का के भाव में बढ़ोतरी की संभावना है। भैया अब बात मौसम की कर लेवे। विभिन्न क्षेत्रों में मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी करो गए है कि कहीं तेज तो कहीं मध्यम वर्षा हो सकत है। ऐसे में सबरे किसान भैया ध्यान दें, खेतों में जल भराव की स्थिति को रोकें, मतलब खेतों में जल निकास की नालियां जरूर बना दें। हाँ, सोयाबीन उत्पादक किसान भाइयों को हम बता दें, सोयाबीन में पीला मोजेक की समस्या बहुत ज्यादा होत है, जा बीमारी फैलत है सफेद मक्खी से। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर के अनुसार सलाह दी गई है कि सोयाबीन में पीला मोजेक अगर दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में पीले रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ के खेत से बाहर कहीं मिट्टी में गड़ा दे दें के फिर जला दे दें और रासायनिक नियंत्रण के लाने थायोमेथोक्सिम 25WG दवा प्रति 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पे छिड़काव करें तो आप येलो मोजेक से अपनी फसल को बचा सकते हैं। भैया खेती किसानी काम ही ऐसा है कि जहाँ में आपके लाने पूरी जुगत तो लगानी पड़ते, सही टाइम पे सही काम भी करने पड़ते। अगर सही टाइम पे हम खेती को काम करें तो हमें मुनाफा निश्चित मिलने हैं और बम्पर पैदावार भी मिलने हैं। यही लाजे तो कहते हैं, खेती उत्तम काज है, ईसम और ना होए, खाबे खा सबको मिले, खेती की जो सोए। जय उम्मीद के साथ आपसे ले रहे हैं विदा। स्वीकार करो मनोज भैया की दो ही हाथ जोड़े की राम राम।
4: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
5: उतना बोल रहे
4: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाए?
5: मतलब
4: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो तो उपज कैसे सेहतमंद होगी।
6: अरे

0: पहले ऐसा नहीं था। उसना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, हाँ माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
1: पर हम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसानवाणी खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम किसानवाणी।
1: किसान साथियों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए खेलो इंडिया संवाद, भारत की खेल क्षमता के प्रोत्साहन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं खेल विश्लेषक मलय नीरव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अर्जुन जे चौधरी।
3: मलय नीरव जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
4: धन्यवाद
3: मलय जी। हमारे जो आकाशवाणी में जो चर्चा सुनते हैं वो जानना चाहते हैं कि खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या है, ये इनिशिएटिव क्या है और आज के युवा के साथ इसका क्या लिंकेज है।
4: देखिए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया कार्यक्रम की घोषणा की तब से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट थी कि उनका जो विजन था, उन्होंने देश के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए, देश में खेलों के विकास के लिए जो सपना देखा और दिखाया वो उसकी एक रचनात्मक भूमिका थी इस देश के निर्माण में, एक विकसित भारत के निर्माण में। क्योंकि इस देश में खेल संस्कृति का अभाव था, खेल संस्कृति के अभाव में ये देश खेलों में उस तरह का विकास नहीं कर पा रहा था जिस तरह का विकास हमने अन्य देशों में देखा जो कुछ दिनों पहले तक विकासशील देश थे और कुछ आज भी हैं, मगर खेलों में वो विकसित देशों के बराबरी पे आ गए हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जाए जिसमें हर गांव, हर कस्बे, हर शहर, हर जिले, हर राज्य के बच्चों का हम उनकी प्रतिभाओं को पहचान कर, उनकी प्रतिभाओं को तराश कर और फिर ये देखें कि उनमें से पदक प्राप्त करने वाला और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पहुंचने वाला बच्चा कौन सा हो सकता है। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने की बात ही उन्होंने नहीं सोची, उन्होंने ये भी सोचा कि जो बच्चा खेलों में अपना ध्यान लगाता है, जो युवा खेलों को अपने जीवन यापन के लिए अपनाना चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ दिनों बाद उसे भूखमरी की डर खेलों के मैदान से दूर ले जाए। तो इस तरह से उन्होंने खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया और आपको जानकर, हमारे पूरे देश को जानकर ये प्रसन्नता होती रही है कि खेलो इंडिया से निकले खिलाड़ी, मनुभाकर जैसे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतते रहे। और खेलो इंडिया का जो और भी उसके जो विभिन्न अंश और कह लीजिए कि एक नए आयाम के साथ खेलो इंडिया के विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए, जो समुद्र के किनारे होने वाले खेल थे या जो बर्फीली पहाड़ियों पर होने वाले खेल थे, जो विंटर खेलो इंडिया था उनको, बीच खेलो इंडिया, उन खेलों को जिस तरह का प्रोत्साहन मिला प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से, तो ऐसी जगहों पे जहां खेलों में रुचि लेने वालों को कोई पहचानता भी नहीं था, वहां से युवा शक्ति जो निकली, जो उदीयमान सितारे जगमगाए, उन जगमगाते सितारों को देखकर प्रधानमंत्री को ये लगा कि ये झुकनुओं की चमक नहीं है, ये तो चांदनी है और इस चांदनी को जैसे जैसे तराशा जाएगा ये और निखरेगी, झुकनुओं की तरह बिल्कुल झिलमिलाकर बुझ जाने वाली चीज नहीं है। उन्होंने इस बात को समझा, देखा, जाना और फिर ये भी जानने की कोशिश की कि किन को किस तरह से यहाँ खेलों के मैदान में लाकर बनाए रखा जाए, ऐसा ना हो कि आज खेलें, कल खेलें और परसों उसके बाद वो अपने दाल रोटी की चिंता और फिक्र में, अपने परिवार को पालने की फिक्र में खेल के मैदान को छोड़कर चले जाएं। तो उन्हें एक तरह का आश्वासन मिला कि अगर आप खेल रहे हैं तो जो पुरानी कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, वो कहावत चरितार्थ अब नहीं हो सकती, अब वो गलत साबित हो चुकी है। क्योंकि आप अगर खेलोगे कूदोगे तो आपको हर तरह की सुविधा राज्य की ओर से, राष्ट्र की ओर से आपको प्रदान की जाएगी और ये हमारे प्रधानमंत्री का सपना था।
3: आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खेलो इंडिया संबोधन में भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के बारे में क्या कहा।
5: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
3: पैरा एथलीट्स ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है एशियन गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में, और जो एबल्ड एथलीट्स हैं उन्होंने भी अभी अपना जो है प्रदर्शन दिखाया, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर हम वेट लिफ्टर्स की बात करें। ये जो स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स हैं, एक्सेलेंस हैं एथलीट्स की, इसके साथ अर्थशास्त्र भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि खेलो इंडिया को लॉन्च करने के लिए, उसको होस्ट करने के लिए भी कई जो राज्य हैं वो चाहते हैं कि उनके यहाँ पे वेन्यू चुना जाए, उनको फंडिंग मिले सेंटर से, और एक तरीके से स्पोर्ट्स का विकास उनके राज्य तक पहुंचे।
4: जब एक खेल का आयोजन होता है तो अर्थव्यवस्था को एक नया बूस्ट मिलता है, उसको एक नई गति मिलती है, पर्यटन का विकास होता है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, सड़कों का विकास होता है, हवाई अड्डों का विकास होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, रोजगार के नए अवसर आते हैं। तो खेलों के साथ साथ इन सब के विकास से जो भारत की युवा शक्ति है, जो अभी आप देखें जनसंख्या के आधार पर तो भारत में युवाओं का जो बाहुल है, उसको रोजगार के अवसर दिलाने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इस भूमिका की बात आज डायलॉग में भी प्रधानमंत्री ने की है। उन्होंने कहा है कि भारत की युवा शक्ति को विकसित भारत का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए 2027 तक खेलों के माध्यम से उनको वहां पहुंचाया जाए जहां भारत विकास के चरम पर पहुंचे, विकास की पराकाष्ठा पर पहुंचे। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है, और जो उनका राष्ट्र के साथ आज संवाद हुआ है, डायलॉग जो हुआ है, जिसमें 1500 करीब शिक्षण संस्थानों ने और उनके छात्रों ने हिस्सा लिया, हर जिले के कम से कम 2 संस्थान ऐसे थे जिन्होंने हिस्सा लिया, तो उसमें भी उन्होंने यही संवाद दिया है। उन्होंने संवाद दिया है कि प्रतियोगिता पदक जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्वस्थ प्रतियोगिता, हेल्दी कॉम्पिटिशन, क्योंकि इससे आपको तरह तरह प्रेरणाएं मिलती हैं, शिक्षा मिलती है। जब आप गिरते हैं तो आप उठना सीखते हैं, जब आप उठते हैं तो गिरने का भय आपके मन से निकलता है। इसी धरती पर बहुत, मैं कहता हूँ दावे के साथ, कि 6-7 वर्ष पहले तक कोई नहीं कह सकता था कि एथलेटिक्स में, वो भी भाला फेंक में, जैवलिन थ्रो में, भारत को स्वर्ण पदक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ओलंपिक्स और विश्व स्तर पर मिलेगा, ये कोई नहीं कह सकता था। इसी तरह से मीराबाई चानू का एक ऐसा केस है जिसको प्रधानमंत्री ने पहचाना, जाना, उनके टैलेंट को देखा, और उनको स्वास्थ्य लाभ की जरूरत थी तो उन्होंने उनको सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं प्रदान की, और प्रदान करने के साथ साथ अच्छे प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की। तो खिलाड़ियों के न्यूट्रिशन, उनके मनस्थिति जो उनकी होती है, उनको मनोवैज्ञानिक रूप से प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना, बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना, ये जो काम होते हैं, और भी हर तरह की चीजें, हर तरह की सुविधाएं जो उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो खेल में पदक लाकर कहें कि हम पदक विजेता हूं, वो इसलिए कि युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत वो बने, और युवाओं के लिए उनके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त हो, उनको लगे कि ये भी एक चीज है जो करके हम अपने पोटेंशियल को, जो हमारी अभिप्सा है, जो हमारी

0: चाहत है उसको हम और विकसित कर सकते हैं, उसको हम एक अंजाम दे सकते हैं।
1: मलय जी, युवा की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले ही की थी खेलो इंडिया के माध्यम से। आपके जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, एक तरीके से युवा को ही टारगेट किया जा रहा है और आज उससे जुड़ा हुआ यूथ लीडरशिप की बात की जा रही है और नशा मुक्त युवा मूवमेंट जैसी बातें भी की जा रही है ताकि उनके साथ जो भी समस्याएं हो उसका एक हल निकाल सके। तो युवा हमेशा एक सेंट्रिक थीम रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी कार्यक्रम में।
0: युवाओं के सशक्तिकरण में खेलों की भूमिका और खेलों से जुड़े जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, उन नैतिक मूल्यों की भूमिका को आज उन्होंने रेखांकित किया अपने संवाद में। वो इस तरह से कि जो आपने नशा मुक्ति की बात की, जब युवा को कोई ऐसा प्रयोजन उसके सामने रहेगा जिसमें उसका ध्यान लगातार लगा रहेगा और उसको अपने आगे के भविष्य की चिंता कम होगी तो वो नशे जैसी चीजों से दूर रहेगा क्योंकि उसको एक रचनात्मक भूमिका दी जा रही है देश के विकास में। तो इस रचनात्मक भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं के लिए एक संदेश भी उन्होंने दिया कि अगर आपको विफलता मिलती है, असफलता मिलती है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके लिए जो आगे का मार्ग है वो बंद हो गया हो। इसका अर्थ ये है कि अगर आप गिरे हैं तो आप उठेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और प्रतियोगिता की जो क्षमता है और प्रतियोगिता की जो आवश्यकता है देश के विकास में, युवाओं के विकास में, उस पर भी उन्होंने बल दिया। तो इस तरह से आज का संवाद सिर्फ खेलों या खेलो इंडिया से जुड़ा नहीं था। आज का संवाद देश में युवाओं के सशक्तिकरण, युवाओं की रचनात्मक भूमिका, युवाओं की जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में लगाने के लिए सही कदम कैसे उठाए जाएं, इन सब को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज का संबोधन किया है। और उन्होंने अपने साथ साथ ऐसे खिलाड़ियों को वहां रखा, मैरी कॉम जैसे खिलाड़ियों को जिन्होंने छोटी जगह से निकलकर और स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विश्व चैंपियन बनकर दुनिया के सामने ये दिखाया कि आप चाहे कहीं से भी हों, छोटी से छोटी जगह से भी हों, अगर आप में प्रतिभा है और आपकी प्रतिभा को ठीक तरह से तराशा जाता है तो कोई भी पदक का मंच आपसे दूर नहीं रह सकता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने और उनकी प्रतिभा को निखारने की बात कही। आइए सुनते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा।
2: जब हम 2036 ओलंपिक्स की तैयारी की बात करते हैं तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें आज से ही वो खिलाड़ी तैयार करने हैं जो 2036 में अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई और कम्पीट करेंगे। और इसलिए लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया। और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
1: खेलो इंडिया के संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी मेजर ध्यानचंद को सम्मान देके और उन्होंने उदाहरण ये भी दिया कि अभी नेशनल स्पोर्ट्स डे आने वाला है 29 अगस्त में, एक भेंट दिया। नेशनल स्पोर्ट्स डे का महत्व क्या है?
0: हमारे यहाँ खेलों की जो परंपरा रही है, जिस परंपरा में जीत हॉकी जैसे खेलों में हमें बहुत आसानी से मिलती रही है, उस परंपरा में जो बीच में एक थोड़े दिनों के लिए एक कमी आ गई थी, वो परंपरा फल फूल नहीं पा रही थी, उसको पुनर्जीवित करने के लिए और हॉकी के साथ साथ अन्य खेलों की भी बात प्रधानमंत्री ने की है। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि आज 13 खेलों में हमने हिस्सा लिया राष्ट्रमंडल खेलों में, और ऐसे कई खेल हैं जिसमें हमारे खिलाड़ी न खेलते हैं न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। तो वैसे में हम परंपरागत खेलों के अलावा जो आधुनिक खेल हैं उनमें भी अगर हम हिस्सा लें तो मेजर ध्यानचंद जैसा हॉकी का खिलाड़ी हमने जब दिया, नीरज चोपड़ा जैसा एथलीट जब हमने दिया, तो अभी हमारे पास और भी ऐसे टैलेंट हैं जिनको हम उन खेलों में नेटबॉल, हैंडबॉल, रोइंग और स्कीइंग इन जैसे खेलों में भी हम अच्छा कर सकते हैं। तो मेजर ध्यानचंद का एक प्रतीकात्मक महत्व है कि एक छोटी जगह से निकला हुआ एक आदमी जिसके पास ढंग के जूते, ढंग के कपड़े भी ना हो, हॉकी खेलने के लिए

0: वो जरूरत की चीजें हैं वो भी ना हो। और वो आज भी आप देखेंगे, छोटा नागपुर चले जाइए जहां से बच्चे निकलते हैं हॉकी खेलने वाले, और एक पेड़ की छोटी सी डाली को तोड़कर हॉकी स्टिक बनाकर जो ड्रिबलिंग करते हैं, तो देखकर ऐसा लगता है कि कितनी प्रतिभाएं हमारे यहाँ छिपी हुई हैं। और उन्हीं प्रतिभाओं को 5 वर्ष से 15 वर्ष की उम्र वाले प्रतिभाओं को पहचान कर सामने लाने की बात प्रधानमंत्री ने की है। तो मेजर ध्यानचंद जैसे लोग प्रेरणा के स्रोत ही नहीं है, एक प्रतीकात्मक उनका अपना मूल्य है, एक उनकी अपनी जगह है लोगों के दिमाग में उसको बिठाने के लिए, जो लोग भूल चुके हैं आखिर क्यों उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, आखिर क्या कहा था हिटलर ने उनसे। इन सब बातों की ओर जब हम ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि भारतीय खेल इतिहास के जो स्वर्णिम पन्ने थे उन पन्नों में कुछ और नए पन्ने जोड़ने की जरूरत है, और बीच में जो खाली रह गए अध्याय उन अध्यायों को भूलकर अब आगे के अध्याय में जितने स्वर्णिम पन्ने हम और जोड़ पाएंगे भारत में खेलों का विकास उतना ही होगा। और यही प्रधानमंत्री का संदेश है जो हर युवा को एक नई शक्ति प्रदान करता है।
1: मलय नीरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खेल और खेल के विकास को लेकर विस्तार में चर्चा की, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे खेलो इंडिया संवाद, भारत की खेल क्षमता के प्रोत्साहन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे खेल विश्लेषक मलय नीरव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अर्जुन जे चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में
3: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर का प्रसारण। दिल ने फिर याद किया, यह कार्यक्रम लेकर बस अभी हाजिर होते हैं।

कभी आपने सोचा है कि प्यार की सबसे खूबसूरत परिभाषा क्या हो सकती है? प्रेम, जिसका मतलब है किसी का हाथ पकड़कर जिंदगी भर साथ चलना, या फिर प्रेम जिसका अर्थ है किसी को इतना अधिक चाहना कि उसकी खुशी अपनी खुशी से भी ज़्यादा ज़रूरी लगने लगे। आज की कहानी ऐसे ही प्यार की है, एक ऐसे प्रेम की जिसमें कोई वादा, कोई अधिकार, कोई शिकायत नहीं है, बस एक छोटी सी दुआ, तुम जहां रहो खुश रहो। कहानी के साथ कार्यक्रम सुनने वालों को मनीष कुमार सोनी का प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की, जिसका नाम है दिल ने फिर याद किया। ये कहानी है आरव और नंदिनी की। दोनों की मुलाकातें एक कॉलेज के कल्चरल प्रोग्राम में हुई थी। आरव मंच के पीछे भाग दौड़ में लगा था और नंदिनी हाथों में अपनी कविता लिए परेशान घूम रही थी। अचानक उसकी कविता के पन्ने हवा में उड़ गए। आरव ने दौड़कर सारे पन्ने पकड़ लिए। एक पन्ना उसके हाथ में आया तो उसने पढ़ लिया। उस पर लिखा था, कुछ लोग जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हमें खुद से मिलवा सके। आरव ने पन्ना नंदिनी को देते हुए कहा, आपकी कविता अच्छी है लेकिन जिंदगी में ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए बोला, मिलते हैं, बस पहचानने में देर लगती है। आरव ने उसी वक्त मजाक में कहा, तो पहचान लीजिएगा, मैं आसपास ही रहूंगा। दोनों हंस पड़े। उन्हें क्या पता था कि ये मजाक एक दिन उनकी जिंदगी का सबसे सच्चा एहसास बन जाएगा।

कॉलेज के दिनों में आरव और नंदिनी की दोस्ती कुछ ऐसी थी कि पूरा कॉलेज उन्हें देखकर मुस्कुराता था। आरव को नंदिनी की चाय पसंद थी, जबकि नंदिनी को आरव की बनाई हुई बेस्वाद कॉफी। और ये सिलसिला चल पड़ा, कहानी चल पड़ी।

एक दिन नंदिनी ने कॉफी पी और मुंह बना के बोली, तुम्हें कॉफी बनाना आती है? आरव ने कहा, नहीं।

नंदिनी ने पूछा, तो फिर बनाते क्यों? आरव ने हंसकर कहा, क्योंकि तुम पीती हो इसलिए मैं कॉफी बना देता हूं। नंदिनी ने कहा, अगर मैं चाय पीने लगूं तो? आरव बोला, तो मैं चाय बनाना सीख लूंगा। उस दिन नंदिनी बहुत देर तक हंसती रही। शायद प्रेम हमेशा किसी बड़े इजहार से शुरू नहीं होता, कभी-कभी वो किसी की पसंद के साथ खुद को बदलने की कोशिश से ही शुरू होता है। समय बीता गया, दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। आंखों में कई प्रश्न थे जिनके उत्तर शायद आगे मिलते या नहीं मिलते, लेकिन हाँ, अदाओं का सागर चल पड़ा था, जो बदस्तूर आगे इस कहानी में दिखने लगेगा।

बातों का दौर जारी रहेगा। श्रोताओं, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर, मेरे यानी मनीष कुमार सोनी के साथ। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, फिर लौटते हैं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है श्रोताओं, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कहानी अपने मोड़ पर आगे बढ़ रही है। एक शाम नदी के किनारे बैठे हुए नंदिनी ने आरव से पूछा, अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो क्या तुम दे पाओगे? आरव ने कहा, पहले मांगो तो सही। नंदिनी ने कहा, अगर कभी मुझे अपने सपने पूरे करने के लिए तुमसे दूर जाना पड़े तो। आरव ने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, ज्यादा कुछ सुना नहीं और कहा, चले जाना? नंदिनी ने हैरानी से पूछा, इतनी आसानी से? आरव मुस्कुराया और कहने लगा कि तुम्हारे सपने अगर मेरे पास रहकर पूरे नहीं हो सकते तो मेरे पास रहने का फायदा ही क्या? अपनी जिंदगी में सपनों को पूरा करना भी तो जरूरी है ना। नंदिनी की आंखें नम हो गई। उसने बड़े हौले हौले कहा, और अगर मैं वापस नहीं आई? आरव ने नदी की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं होगी, बस खुश रहना। यही वो पल था जब नंदिनी को समझ आया कि आरव उससे कितना ज्यादा प्रेम करता है, क्योंकि उसने उसे पाने की नहीं, उसे उड़ने की इजाजत दी थी। देखते हैं कि कहानी आगे क्या क्या रंग दिखाती है और कितनी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ती है।

आरव और नंदिनी की कहानी बदस्तूर जारी रही। कुछ दिनों के बाद समा बदला और नंदिनी को विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली। घर में खुशी थी, आरव भी खुश था, लेकिन उसके भीतर कहीं एक खालीपन पैदा हो गया था। नंदिनी ने जाते वक्त आरव से पूछा था कि तुम मुझे याद करोगे? आरव ने कहा बहुत। नंदिनी ने पूछा फोन करूं तो? आरव ने कहा बिल्कुल उठाऊंगा। नंदिनी हंसी और बोली और यदि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई तो? आरव ने कहा तब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। नंदिनी ने फिर पूछा और अगर मैं बदल गई? आरव ने कहा तुम्हें बदलने का हक है। नंदिनी की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा तुम इतने अच्छे क्यों हो? आरव ने मुस्कुराकर कहा क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में आई हो। पहले रोज फोन, फिर दो दिन में, फिर हफ्तों में, फिर कभी कभी। नंदिनी अपने सपनों की दुनिया में आगे बढ़ती चली गई। आरव अपनी जिंदगी में बढ़ता रहा, लेकिन हर बार जब नंदिनी कोई सफलता हासिल करती तो सबसे पहले फोन आरव को ही करती। आरव मेरी नौकरी लग गई, आरव मेरी पहली किताब छपने वाली है। और हर बार आरव का जवाब होता मुझे पता था तुम जरूर कर पाओगी ये सब। यही तो था नंदिनी और आरव का वो प्रेम, चलता रहा और गल्ला करता रहा। एक दिन नंदिनी ने फोन पर कहा आरव आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। आरव ने पूछा क्यों? उसने कहा मेरी किताब को पुरस्कार मिला है। आरव कुछ पल चुप रहा, लेकिन पास ही रखा हुआ रेडियो सेट कुछ और ही बोलता जा रहा था। फोन काट दिया आरव ने।

नंदिनी कई साल के बाद अपने शहर वापस लौटी। हाथों में वही पुरानी डायरी थी जो उसने जाते समय आरव को दी थी। वो सीधे उसी लाइब्रेरी में पहुंची और दरवाजा नॉक किया। आरव बच्चों को किताबें पढ़ा रहा था। नंदिनी दरवाजे पर खड़ी रही। आरव की नजर उस पर पड़ी तो कुछ पल के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। इतने सालों के बाद की दूरी जैसे कुछ सेकंड्स में ही सिमट गई। आरव की आंखें भर आई। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस देखता रहा। आरव मुस्कुराया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने नंदिनी से कहा कि कभी उसने उसका इंतजार नहीं किया, क्योंकि इंतजार में उम्मीद होती है और उसके प्यार में कोई उम्मीद नहीं थी। उसने बस उसके लिए अपने दिल में एक जगह बचाकर रखी थी। नंदिनी की आंखों में भी आंसू से निकल आए थे। दोनों हंसते हुए बस रोते रोते आपस में एक दूसरे को देख रहे थे। श्रोताओं, शायद यही बिना शर्त का वो प्रेम था। किसी को अपनी जिंदगी में रोक कर रखना नहीं, बल्कि उसकी खुशी के लिए उसे उड़ने देना। उसकी सफलता को अपनी हार न मानना, बल्कि उसकी मुस्कान को अपनी जीत मानना। और शायद आरव और नंदिनी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। दोनों ने एक दूसरे को कभी खोया ही नहीं था, क्योंकि सच्चे प्यार में, प्रेम में दूरी कहीं नहीं होती, दिलों के बीच में भी नहीं। तो शायद इस कहानी की खूबसूरत बात यही थी कि नंदिनी जब वापस आई तो आरव ने उससे ये नहीं पूछा, तुम इतने साल बाद क्यों आई। उसने बस इतना ही कहा, तुम आ गई, अब कॉफी बनाओ। नंदिनी हंसी और बोली, कॉफी अब भी बेस्वाद होगी। आरव ने कहा, कुछ चीजें बदलनी नहीं चाहिए। दोनों हंस पड़े और उस हंसी में बरसों की दूरी पिघल गई।

कुछ रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, कुछ रिश्ते वक्त से बिछड़ते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते दिल में इतने गहरे उतर जाते हैं कि दूरी भी उन्हें अलग नहीं कर पाती। और शायद प्यार की सबसे खूबसूरत मंजिल भी यही है, जिसके लिए आपने कुछ मांगा नहीं, एक दिन वही मुस्कुराकर कहे, अब मेरी बारी है तुम्हें खुश रखने की। तो ये थी आरव और नंदिनी की कहानी, जिसे दिल ने आज फिर याद किया। उम्मीद करते हैं श्रोताओं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जुड़े रहिए मालवा की शान आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से, और दीजिए इजाजत मनीष कुमार सोनी को। नमस्कार।

दिल ने फिर याद किया। ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब से कुछ ही पलों में समाचार संध्या को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय, मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ, भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से 9111238817 पर संपर्क किया जा सकता है। व्हाट्सएप कॉल और संदेश के लिए 9199681988 नंबर जारी किया गया है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए 9775131 6870 977 910 7570 और 9779801032611 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों

0: की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों की 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। नेपाल में छोछेन खोला और पुरेपू स्वांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार झील में अगले 3 दिन में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की।
1: बिहार जल संसाधन विभाग के अनुसार गंडक बैराज पर जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि नेपाल के देवघाट क्षेत्र में बारिश के कारण नदी के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि
2: नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है, सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान हो रही है।
1: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार में एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि अतिरिक्त बचाव दल की 4 टीमें तैयार रखी गई हैं। इधर पड़ोसी देश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने समस्तीपुर रेल मंडल में अलर्ट जारी किया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरूआती सहायता दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेफ के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
4: Discussions are expected.
5: दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। इसमें व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क शामिल है। ये बातचीत भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करेगी।
4: स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल रिलेशनशिप।
0: ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादो जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत विनिर्माण, नवाचार और निर्यात के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कनाडा के निवेशकों से भारत की बढ़ती क्षमता का लाभ उठाकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतें पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुधारों के जरिए हो रहे बदलाव और मजबूत आर्थिक वृद्धि से भारत कनाडा के बीच अधिक मजबूत और निवेश आधारित आर्थिक साझेदारी के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार का वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य है।
6: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल विजन में जबलपुर जैसी फैसिलिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी।

0: जो महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप हैं।
1: पूज्य बापू का विचार था कि स्वाधीनता तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय न हो, अपना न हो। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति से हम बंधे हुए नहीं हैं तो स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं। और मन में स्वराज की ये परिकल्पना को अनेक प्रयोगों से जमीन पर उतारने का काम किया।
0: श्री शाह ने वर्ष 2047 तक सभी क्षेत्रों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर बल दिया। अहमदाबाद में फार्मा इनोवा अवार्ड्स 2026 में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
2: रजनी भाई ने शुरुआत की और आज ये परंपरा ढेर सारे लोगों में रिसर्च के फील्ड में काम करने के लिए न केवल अनुकूलता बनी, आर्थिक मदद भी हुई। एक प्रकार से ये अवार्ड उनको एक्नोलेज करता है सोसाइटी में और इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने में। ये बहुत बड़ी बात है जो रजनी भाई ने उस जमाने में सोची।
0: गृह मंत्री ने अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है।
4: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खेलों को विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए सभी से सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। खेल दिवस के अवसर पर आज IFLU विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की पहल से देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक पदक जीत रहा है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रूपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। श्रीमती निधि खरे ने कहा कि सरकार हर वर्ष ये सुनिश्चित करती है कि कीमतों में बढ़ोतरी होने पर रियायती दर पर प्याज उपलब्ध हो।
5: हर वर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कि प्याज में अगर कोई कीमतों की बढ़ोतरी होती है तो उसमें रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से सब्सिडाइज दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्याज की जो प्रोडक्शन है या अवेलेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। एक्सपोर्ट को भी देखें तो वो पिछले वर्ष के मुकाबले भी सामान्य है।
0: मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में भारत के लिए इश्का ने 1 और नवनीत कौर ने 2 गोल किए। जर्मनी के लिए एकमात्र गोल लेन क्रिंक्स ने किया।

ये रात फिर ना आएगी। इस फिल्म के लिए सुनते हैं कश्मीरी के लिखे बोल ओपी नैयर के संगीत में, आशा भोसले और मीनू की आवाज में ये नगमा।

मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे बोल हैं, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। फिल्म काना पानी का ये गीत है।

0: देखो दिल न तोड़ो
1: और छोड़ो हाथ छोड़ो
0: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे
1: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चल कदम भी चल सकोगे समझे।

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के।

चित्रगीत कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म आर पार से हैं, शमशाद बेगम की आवाज़ें हैं, मजरू सुल्तानपुरी की गीत रचना है और धुन तैयार की है ओपी नैयर ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर।

सुन रहे हैं श्रोताओं आप मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। कार्यक्रम मन भावन लेकर बस अभी हाजिर होते हैं।

मन भावन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त मनीष कुमार सोनी का प्यार भरा नमस्कार। कहानी सिर्फ अल्फाजों से नहीं बनती, कुछ किरदार उसमें जान डाल देते हैं। कोई हंसाकर याद रह जाता है तो कोई खामोश रहकर दिल में उतर जाता है। एक ऐसा खास कार्यक्रम जहां आपके पत्रों के साथ बातचीत होती है, कागज पर आपके प्यार, आपकी सौगातें हम तक पहुंचती है। आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है आप ही के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन भावन में। इससे पहले कि हम पत्रों को शामिल करें, पहले सुनते हैं ये गीत।

बरसात फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत था, आवाज़ें थी कुमार शानू और साधना सरगम की। 1996 में बनी इस फिल्म के लिए, इस गीत के लिए फरमाइश भेजी आप सभी ने। कुशेश्वर कांति गुप्ता, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि सिद्धि ने हमें लिखा राजनगर मधुबनी से। ऐशबाग पीली कॉलोनी से चिट्ठी आई लखनऊ से मुकेश रानी, कुसुम, पलक और पंखुड़ी की। राजनगर गांधी चौक से भी हमें लिखा है कांति निकेतन से मंजीत गुप्ता, सोनाली, सूर्यांशी, कोमल, मेनका, माधवी, साध्वी, एम के गुप्ता, राजू गुप्ता और विनीता गुप्ता ने। बोरखेड़ा शिप्रा मल जला उज्जैन से चिट्ठी आई विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूणत और उनके सभी परिवार के सदस्यों की। ख्वाहिशमंद थे आप सभी इसी गीत के लिए। इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूर जहां, डब्लू नूर जहां, सईद नूर जहां, वसीम नूर जहां, वलीउल्लाह, बुलंदशहर से बदरू वली, फर्जो वली और फर्जी वली। लुधियाना पंजाब से भी हमें लिखा अमरजीत सोनम कौर और परमजीत आदिबा कौर ने। गौरीनगर इंदौर से भी इसी गीत को पसंद किया था आप सभी ने। आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले ने। औरंगाबाद से पत्र आया है राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजेश, राजदीप और राशि राजेश का। सहारनपुर से बड़ी ही सुंदर अक्षरों में चिट्ठी भेजी है सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली, पथिक और कृषिव ने। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां ने हमें लिखा आजान नगर लक्सर हरिद्वार से। आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनाया हमने बरसात फिल्म का ये गीत और अब आगे की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं।

राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। अलका याग्निक की आवाज़ थी, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत और पसंद थी आप सभी की। पुणे से पंकज वाड़ोदे, आर्या, प्रियंका और बीटी वाड़ोदे ने हमें लिखा। देवास से एक चिट्ठी आई, मनु ठाकुर, कृष्णा वैद्य, नेत्रा रावणकर, योगेंद्र सिसोदिया, जाकिर हुसैन, नजमी, बजरंग नगर देवास से सभी ने लिखा हमें। महादेव घाट अमलेश्वर से चिट्ठी आई है, डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति और बाबू के साथ साथ रियांश ठाकुर की भी। रिधोरा से हमें लिखा है बाबूलाल बोराखड़े, गोकुला बोराखड़े और मंगेश बोराखड़े ने। सनाबद से हमें लिखने वाले हैं इस गीत के लिए हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक सचिन कटारिया, प्रभा कटारिया, कृष्णा, विराज, अर्णव और काव्यांशी कटारिया। घंटाघर चौक खंडवा से भी पत्र आया है, संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया का। साथ ही साथ एक और पत्र जो हमें लिखा है वो आया है कंवर कॉलोनी बड़वा, जिला खरगोन मध्य प्रदेश से ही। लिखने वाले हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी, रति और मीनूराज श्रीमाली। यवतमाल से चिट्ठी आई है, जयराम सिंगणकर, देशांत कुमार सिंगणकर, वंदना धुड़े, अर्पिता और उनके परिवार के सभी सदस्यों की। परमेश करता थे इसी गीत के लिए इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। पालदाना का इंदौर से भी इसी गीत को सुनना चाहा हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी ने। महाराष्ट्र से एक और पत्र आया था, इसी गीत को पसंद किया था आप सबने। रामचंद्र धोंडीबा इंगोले, सिद्धांत, टिंकू, रमाबाई, मयूरी, सुरभि, मंजूषा, नामदेव राव शिंदे, मास्टर विलास, सुनील जबड़े, इन सभी ने। साथ ही साथ पसंद किया दीपाली राजू, पार्वती सखाराम, रोहित, सोनू और मोनू ने। झुमरी तलैया से पसंद करने वाले थे छंकुली देव, छोटू और रामचंद्र इंगोले के साथ साथ पसंद किया महेंद्र चौरसिया ने। तो गीतों की ये जोरदार माला पिरोते रह रहे हैं हम अलग अलग मोतियों से। सुनते रहिए कार्यक्रम मनभावन, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर और न्यूज ऑन AIR ऐप एंड्रॉयड मोबाइल पर भी। आइए सुनते हैं अगला नगमा।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में सुना आपने ये गीत फिल्म 1995 में बनी राजा से। समीर के बोल थे और नदीम

इसके लिए राधेश्याम यादव, प्रभा यादव, भारती शालिनी और कामेश यादव की। बुलंदशहर से खत आया है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन और उनके परिवार के सदस्यों का। शास्त्री नगर खंडवा से भी हमें लिखा है, ख्वाहिशमंद हैं आप सभी, रमेश पंचोली, बीनू देवी, प्रकाश, उर्मिला, दीपक, दीपिका, नंदनी, निखिल और गौरांज। बड़ा आभार से लिखने वाले हैं तेजल नीलकंठ, मीरा देवी, शिवानी, पिंकी और राधा बेन। मालेगांव से चिट्ठी आई है दत्ता घायाल, सुनीता बाई घायाल, सानिका और गजानन की। वाशिम से इस गीत को सुनना पसंद किया था अशोक चुंबड़े, दिनेश, रूपेश, लीलाबाई, चैताली, प्रीति और उनके सभी संगी साथियों ने। लाबरिया भैरू इंदौर से भी इसी गीत को पसंद किया अनिल बामनिया, प्रमीला बामनिया, नंदनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कुणाल, केतन और उनके समस्त परिवार के सदस्यों ने। और इसी बीच एक और चिट्ठी जो इसी गीत के लिए आई थी वो भेजी है हमें जसपुर उत्तराखंड से, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, रानी, तबस्सुम, रुखसार और मोहम्मद आशिफ ने। तो आप सभी की फरमाइशों पर हम आपको गीत सुनवाते जा रहे हैं। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, फिर लौटेंगे कुछ और नगमों के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर मालवा की शान, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR एंड्रॉयड पर भी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।

अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम मन भावन में, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से, मालवा की शान से। और अब आ लेते हैं वो गीत जिसे चुना है आप सभी श्रोताओं ने फिल्म बाजीगर से। विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं। जमीर काजमी ने इस गीत को लिखा है और अनु मलिक ने धुन तैयार की है और पसंद किया आप सभी ने। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से लिखने वाले हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया, अस्मा, सालिया, शोएब, मुस्तबा, राउफ और शाहिद रे। गांधीबाग अकोला से लिखा हमें रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने। ग्राम पंचायत बठेना से लिखा है बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, रेखा, धनेश्वरी वर्मा ने। चटौदा सारा गांव से चिट्ठी आई है सुजान वर्मा, सोहद्रा, आयुषी और कृत वर्मा की। सर्वानिया महाराज नीमच मध्य प्रदेश से लिखा है गोविंद पाटीदार, ममता, पूजा, मधुसूदन, यशस्वी और हंसवी पाटीदार ने। मुकाम पोस्ट मामूलवाड़ी नांदुरा से लिखा है सोपान तायड़े, विजया तायड़े, अमोल आणी और सरिता तायड़े ने। जिंगाओ नांदुरा से ही एक और चिट्ठी आई है वसंतराव भोजने, सुनंदा भोजने, राजू भोजने और सोनू भोजने की। इंदौर से एक चिट्ठी आई आड़ा बाजार से, लिखने वाले हैं आप सभी प्रतिभा पांचरे, नेहा बल्लू, मनीष शर्मा, भावना राशि, आशीष जाधव और दिनेश पांजरे। मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफाबाद जालना से चिट्ठी

आई है सुधाकर जाधव, प्रशांत, प्रणव, संचित, जगुताई, स्वातिताई, वर्षाताई, पूजाताई, प्रणाली, ऋतुजा और उनके समस्त देशमुख परिवार के सदस्यों की। अनिल कवचाले, सबीहा, सुषमा, सीमा, श्वेता, पूजा और मीनू ने हमें लिखा है गुमाश्ता नगर इंदौर से। और ग्राम लोहारी से यानी खंडवा से पत्र आया है राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला और गायत्री धनजे का। मानपुर से लिखा है हमें विजय वैद, रानी वैद, महिमा और नीतू वैद ने। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए हाजिर है आपकी पसंद का ये गीत।

गीतों का दौर जारी है, बहुत से मोती हैं जो आपके पत्रों के माध्यम से आते हैं और यहाँ से हम उन्हें आप तक पहुँचाते हैं। तो लेते हैं अब अगला गीत जिसके लिए फरमाइश की है, लेकिन गीत कौन सा है पहले ये तो जान लें। गीत है फिल्म धड़कन का, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं, समीर की बोल हैं। फरमाइश करता है आप सभी, नांदेड़ से प्रभाकर जोंधड़े और

सती जोंधले ने हमें लिखा है। खंडवा से एक चिट्ठी आई है अशोक वंदना भूपेंद्र झवर तनुश्री आरोही और कान्हा की। तुषार कुरुणे प्रसिक कामले एकता कामले मेघना कुरुणे उत्कर्षा कामले अरुण यलगुणकर ने लिखा है हमें कोल्हापुर महाराष्ट्र से। और कोल्हापुर से एक और पत्र आया है अतुल गौतमी धम्मदिना अरुण काले और एडी कामले का। गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से हमें लिखा है रेखा संतोष रघुवंशी शोभा भूपेंद्र बबीता सुरेंद्र पूजा विकी स्वाति प्रयाग चौधरी मालती गणेश कार्तिक खर्चे संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे ने। पलसीकर कॉलोनी इंदौर से लिखने वाले हैं धनेश मटाई राकेश मटाई उमेश सहजवाबी हनी जिम्मी अमिता दियाना और जियांश मटाई ने इस गीत को पसंद किया है। और अगला पत्र जो हमारे हाथों में है वो है ये भेजा है हमें सुरेश और आशु के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों ने। इन्होंने अपने स्थान का नाम इसमें शामिल नहीं किया है तो हमारा अनुरोध है कि आप स्थान का नाम अवश्य शामिल करें। और एक और खत जो आया है वो है महाराष्ट्र से अभिजीत सरिता प्रिंस एकांश सिद्धांत प्रणीता वैशाली श्वेता ध्वनि और लाडले टुकटुक की। और इंदौर से ही एक और खत हमें मिला है रवि ईश्वरी आदित्य रोशनी और कीर्तिमान का। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

अब बढ़ते हैं उस गीत की तरफ जिसे पसंद किया है आप सभी ने, लेकिन फिल्म का नाम सबसे पहले आपको बता दें, फिल्म है मेरे बाप पहले आप, उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ें हैं। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है विद्यासागर ने और पसंद किया है आप सभी ने। कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से लिखा है नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो, उबैद रजिया, जुनेदा अलीदा, आयत मुआज, नसरीन जहां ने। करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से चिट्ठी आई है गोपाल कानुगुला, महेश्वरी, प्रवालिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश की। देवास बड़ा बाजार से लिखने वाले हैं जाकिर तस्नीम, आन मोहम्मद नजमी और जमीला नजमी ने हमें लिखा है। अनुरोध करता है इस गीत के लिए प्रमेंद्र कुशवाहा, कैलाश, रमेश, कामिनी चौहान, मंजू चौहान, सिद्दीकी, गौरव, सिद्धार्थ, इन सभी ने लिखा है हमें मालवा मिल कंपाउंड इंदौर से। हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर बाई और प्रभुलाल बागरी ने हमें लिखा है सुदामा नगर झालावाड़ राजस्थान से। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से चिट्ठी आई है राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजबिये की। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से भी एक खत आया है रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल का। बेरड़ी से सुनना चाहते हैं राजेश सोनी, कंचन, गायत्री वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज सब्बास सेरे। पसंद करता है आप सब भी ग्राम गुरावा तहसील हरसूद जिला खंडवा से नंदलाल राजपूत, राजू मनुक्का बाई और नंदिनी बाई राजपूत। ग्राम बालोदा लखा उज्जैन से लिखा है कन्हैयालाल प्रजापति, कैलाश प्रजापति, कुंदन, गणेश, मीनाक्षी और भगवंता बाई। कुप्टी महाराष्ट्र से बंडू लोहार, माया, शिवांश, चंद्रकला, देवीदास पोपलघट और श्रीरामपुर भूकर से हरिभाव बिड़वे, श्रावण और अनिता बिड़वे। बुड़गहन से छत्तीसगढ़ से चिट्ठी आई है राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता और उनके परिवार के सदस्यों की। और एक और खत है जो महाराष्ट्र से आया है बाबा साहब बाड़ोदे, मीनाक्षी, रजनी और कार्तिक के साथ साथ लिखा है युवराज ने। महाराष्ट्र से एक और पत्र है इसी गीत के लिए, सुनना चाहते हैं आप सभी। हिंगोली से है शाहजी, नंदा, हनुमान, सारिका, सुरेखा, आरवी, उत्तम और स्वराज जमदाड़े। तो लीजिए नजर है आपके लिए ये गीत।

और अब चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की तरफ, जिसे पसंद किया है आप सभी ने। जसवाड़ी से चिट्ठी आई है दुर्गेश नागनपुरे, राधे श्याम, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे की चिट्ठी आई है। गुल बालोद तहसील आलोट से, रतलाम से, यानी विनायक विक्रम मालवीय, रचनाबाई, कमलाबाई, वनदेवी, आकाश माहेश्वरी, विनायक, नमन और उनके समस्त परिवार के सदस्यों की। रंथ भवर से मोहम्मद यूनुस मंसूरी, मुकेश नारोलिया, अकबर, दिनेश कुमकार, हसन भाई, जानकी लाल वर्मा, न्याज भाटिया ने हमें लिखा है। प्रणाम सिटी खंडवा से चिट्ठी आई है यथार्थ कुमार खंडागले, सुभाष मंदा, संदीप कुमार, माधुरी, पिंटू कुमार और जयश्री खंडागले की। बक्सर से लिखने वाले हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य के साथ साथ पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। छत्रपति संभाजी नगर से चिट्ठी आई है राजेश सावले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि, राजेश और उनके परिवार के सदस्यों की। एक और चिट्ठी जो लिखी है हमें राजस्थान के जिला बारा से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव ने। ख्वाहिशमंद हैं आप सभी भिवानी से भी कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। चीपा कॉलोनी खंडवा से सुनना चाहते थे इसी गीत को यूनुस खत्री, सादिक और अय्यूब खत्री। और पंधाना से ख्वाहिशमंद है संतोष भाई जायसवाल और श्रीमती मधु जायसवाल। बामली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले और अकोला से पसंद किया है बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर ने। और राजकोट जयराज प्लॉट से लिखा है हमें मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट ने। आप सभी ने पसंद किया है 2006 में बनी फिल्म डॉन का वो गीत जिसे गाया है अलीशा चिनॉय, महालक्ष्मी, सोनू निगम। आप सभी ने, जावेद अख्तर ने बोल लिखे हैं और शंकर एहसान लॉय का संगीत है।

तो इजाजत दीजिए इस सुरीली महफिल से, मुस्कुराइए और जुड़े रहिए संगीत के सिलसिले से। आप सुनते रहिए, हम गीत सजाते रहेंगे, फिर मिलेंगे एक नई शाम नई फरमाइशों के साथ। लिखते रहिए खत, पता नोट कीजिए, कार्यक्रम मन भावन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मालवा हाउस इंदौर, इंदौर का पिन कोड है 452001 यानी 452001। हमें रहेगा आपके खतों का इंतजार। दीजिए इजाजत मनीष कुमार सोनी को, नमस्कार।

मन भवन, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं अब शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सुलभा चौरसिया सराफ का गाया राग बिहाग। आइए सुनें।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुलभा चौरसिया सराफ का गाया, ध्रुपद धमार गायन के अंतर्गत राग विहाग, रचना धमार ताल में निबद्ध थी। शास्त्रीय संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से किया गया। और अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर।

0: भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से +9111230888718 और +9111230888719 पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851316807 और +9779801316117 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरूआती सहायता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।